श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लीजिए श्रोताओं, आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। छह बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। पेशकश होगी रविंद्र सिंह की। सात बजकर पांच मिनट पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, निशा तंवर के साथ आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। और आठ बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रविंद्र सिंह के साथ। और नौ बजे होगा कार्यक्रम दिल की तराने, गाने नए पुराने। पेशकश होगी निशा तंवर की।

हमारे श्रोता आनंद लेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का। 10:05 पर आपके साथ होंगे ऐशानी मित्तल और बबीता त्रिपाठी लेकर आएंगी कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स 11:05 पर। इसके बाद आप सुनेंगे 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन बबीता त्रिपाठी के साथ। आशियाना कार्यक्रम होगा 2 बजे, प्रस्तुति स्वाति गुप्ता की होगी। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम होगा 3 बजे, सृजन राजपूत के साथ आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। और स्वाति गुप्ता के साथ आप सुनेंगे 4:05 पर कार्यक्रम अल्फा जैन। और सिटी लाइट होगा 5:05 पर।

6:05 पर आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स निर्जा चतुर्वेदी के साथ। पूजा आनंद लेकर आएंगी 7:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक, और इसके बाद आप सुनेंगे 8:00 म्यूजिक मस्ती, 9:00 आप सुनेंगे आपकी याद आती रही रेखा चौधरी के साथ। दस बजकर 5 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक और 11:05 आप सुनेंगे रंगी महफिल। श्रोताओं, ये थे कुछ कार्यक्रम हमारे आज सभा में प्रसारित होने वाले। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों

की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है एफएम रेनबो के सभी प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम सुप्रभात में मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा मोटिवेशनल प्रोग्राम, जिसमें आज का विषय है सोशल मीडिया के दौर में खुद को कैसे करें फोकस। तो भाई, आज आम इंसान की जिंदगी में एक बड़ा सवाल ये बन गया है कि वो कैसे खुद को फोकस रख सकता है, खासकर तब जब आज का हर युवा, हर स्टूडेंट और हर प्रोफेशनल के लिए सोशल मीडिया उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हो। हाथ में थोड़ी देर के लिए उठाया गया मोबाइल कब हमारे घंटे खा जाता है पता ही नहीं चलता, और थोड़ी देर की स्क्रोलिंग घंटों में बदल जाती है। बस यहीं से शुरू होती है दिमागी कसरत, और यहीं से शुरू होती है तेरी मेरी कहानी। अब ये कहानी तभी जुड़ती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। कार्यक्रम सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय पर, क्योंकि समस्या सबके साथ है, लेकिन समस्या में ही छुपा है समाधान।

कहानी तो हमारी और आपकी कुछ ऐसी है, और इश्क बनके तो नहीं हाँ, लेकिन माताश्री पिताश्री के कुछ सर पे और पीठ पे ऐसे बरसते हैं ना, जब हम सोशल मीडिया के क्लोज जाते हैं तो बस पूछिए मत क्या बारिश होती है। आ हा हा हा, दो चार दिन तो उस बारिश से हमें आराम नहीं मिलता। आपके साथ अगर आगे आप अपने बचपन में हैं या आपने स्कूलिंग कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें तो आम होंगी आपके जीवन में। वैसे कहते हैं कि किस्से हों, कहानियां हों, न्यूज़ हो या व्यूज़ हो या ज़रूरी जानकारी, बस एक क्लिक और स्क्रॉल पर सब कुछ बैठे बैठे देखा जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ही उठता कि भाई क्या सोशल मीडिया ज़रूरी है? तो जवाब है हाँ है भाई। अब दूसरा सवाल है क्या सोशल मीडिया नुकसानदायक है? तो जवाब है किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, यानी अगर खुद पर कंट्रोल नहीं रखा तो वाकई ये सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है और ये वाकई नुकसानदायक हो सकता है ना। और जब हमें समझाया जाता है, हमें इसकी लत लग जाती है, हमें इसकी आदत लग जाती है, तो फिर हानिकारक होना तो ज़रूरी है, लेकिन जब उधर से धुलाई शुरू होती है, आलोचना शुरू होती है, कुछ बातें ऐसी शुरू होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो फिर मुश्किल हालात पैदा होते हैं और ख़ुद को फिर इससे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हमारे बापू कुछ कहते हैं सही बात, तो क्या होता है,

0: बापू करते करते जो उसके बाद बात होती है, फिर कहने क्या क्या मुलाकात होती है, फिर जो डिशुमडाएं होती है बस वो याद करते हैं। तो फिलहाल आप सुन रहे हैं,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: तो बस यूं ही सफर चलता रहेगा, हमारा चट्टा चट्टा ब्रेक भी होता रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि आराम थोड़ा बहुत बहुत जरूरी है अगर सफर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सफर पता ही नहीं लगता है जब आपसे बातचीत होती है और आपके विचार जानते हैं और किसी ऐसे विषय पर बात होती जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ होता है, बात सोशल मीडिया की। तो भैया सोशल मीडिया तो बस मीठी गोली की तरह काम करता है, देखते देखते हमें नहीं पता चलता कि कब हमें उसकी लत लग जाती है। 10 मिनट ही कोई व्यक्ति पढ़ पाता है, कोई स्टूडेंट पढ़ पाता है, तभी उसे नोटिफिकेशन दिखाई देता है। नोटिफिकेशन देखा तो सामने आ गई रील, और रील चाहे सिनेमा की हो या पतंग की, भाई साहब होती बहुत लंबी है। चरखी की रील पतंग को आसमान में उड़ा देती है और सोशल मीडिया की रील ख्यालों के आसमान में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फिर तो बाबू मोशाए, खुद को संभालिए नहीं तो। सफर गीतों का हो बात काम की हो तो सब कुछ दिल में उतरता है, बस सामने वाला अपना होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है आपका पसंदीदा और बातें काम की।

लेन दे, और लेकिन थकेंगे तब जब सोशल मीडिया से आपका ध्यान हटेगा, आपका फोकस आपके लक्ष्य के ऊपर रहेगा, तभी तो जिंदगी का सफर सुहाना होगा और आप थोड़ा सा आगे बढ़कर जा सकेंगे। और सुबह सुबह कुछ बात होती है काम की, तो कहते हैं ना कि हम सपने देख रहे होते हैं और अचानक से कोई उठा दे तो वो सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन भाई साहब, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें जागना पड़ता है। कहते ना कि सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत ही वो रोशनी है जो मंजिल दिखाएगी। इतनी चीजों को हमें ध्यान रखना, और हम अक्सर मेहनत से हट जाते हैं, फोकस हमारा हट जाता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर अपना वक्त ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा बिताते चले जाते हैं कि हमारे लिए खुद के लिए परेशानी हो जाती है कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए। और इसका असर एक स्टूडेंट के लिए तो यही होता है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ना काम में। कंपेरिजन सिंड्रोम से जूझने लगते हैं लोग कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, तो भाई उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास क्यों नहीं। और धीमे धीमे यही चीजें मानसिक तनाव का कारण बनती है, और फिर खड़ी होती है चीजें भूलने की आदत, और हम जिंदगी से सवाल करने लगते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या बात है जो वो कर सकता है हम नहीं कर सकते, और ये और वो में जिंदगी हमारी गुजरने लगती है। फिर जरूरी क्या है? जरूरी सिर्फ इस बात के है कि जब आप अपनी ड्राइविंग सीट पे हैं तो आपको अपनी गाड़ी ध्यान से चलानी है, बस यही जिंदगी है। तो हम अगर अपनी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब कोई सुविधा कोई संसाधन हमें मिलता है और उसके अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं तो हमेशा परेशानी खड़ी होती है, और फिर इतने सवाल खड़े होते हैं कि हमारा खुद से भरोसा उठता है और हम जिंदगी से ही सवाल करने लगते हैं।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और ये बेसब्रियाँ ही तो है भाई साहब, बेसब्रियाँ ही है जो बहुत कुछ बदल देती है। होना चाहिए, थोड़ी सी बेसब्री होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त होना चाहिए। कभी कभी हमें यह एहसास होता कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, तो जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सम्मान दे दे। आपकी जिंदगी में यही आपका सबसे बड़ा धन है, ठीक। और सम्मान किसको देना है, संसाधन को या समय को? समय को सम्मान देंगे तो बना देगा। और इसीलिए सोशल मीडिया पर जब समय जाया होता है तो कुछ खास हासिल नहीं होता सिवाय वक्त जाया करने के। बात यहां सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बात हर उस चीज की है जो आपको डिस्ट्रक्ट करती है, आपको आपके फोकस से भटका देती है, हटा देती है, आपको लक्ष्य से दूर कर देती है, बल्कि आपको आपसे ही दूर कर देती है। कई शख्सियत हैं इस दुनिया में जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। एक छोटी सी कहानी पर बात करते हैं। एक बच्चा था जिसका बचपन पिता के अलगाव से शुरू हुआ, मतलब पिता बचपन में ही उससे अलग हो गए। पिता से अलगाव ने उस बच्चे को दिशाहीन कर दिया। कोई गाइडेंस नहीं, कोई अच्छे या बुरे की सीख देने वाला नहीं था, कोई नहीं था उसके साथ जो उसके सर पर हाथ रखकर कहे कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। यहां तक कि जब वो मेहनत से पढ़ाई कर कॉलेज में पहुंचा तो उसे खुद नहीं पता था कि उसे अब आगे करना क्या है, जीवन में क्या बनना है। हर कदम पर सिर्फ सिर्फ संघर्ष और भटकाव के ख्याल। कई बार की असफलता ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने सोचा क्यों ना राजनीति में उतरा जाए, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई राजनीति उसके बस की बात नहीं। उस शख्स ने हार नहीं मानी, अपने अंदर कुछ करने का जज्बा कायम रखा। उसने समाज में लोगों की सेवा शुरू की और उसे सुकून मिलने लगा, और यही काम धीमे धीमे उसकी पहचान बनने लगा। इस शख्स ने अनुशासन पर काम किया, पढ़ाई और समाज सेवा पर फोकस बढ़ाया, और जो अनावश्यक चीजों और जो डिस्ट्रक्शन था उससे दूरी बनाई। कड़ी मेहनत के बाद यही शख्स आगे चलकर अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति बना। ये कोई और नहीं, इसका

नाम है बराक ओबामा, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए और आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, जब हमारे पास किसी का साथ नहीं होता, गाइडेंस नहीं होता, हमें नहीं समझ में आता कि हम करें तो क्या करें। उस वक्त अगर सबसे बड़ी कोई चीज होती है तो वो है खुद पर भरोसा, खुद का जज्बा, कुछ करने का जुनून। और यही चीजें आपको डिस्ट्रक्शन से दूर करती है, क्योंकि आप में जुनून होता है अपनी मंजिल को पाने का। बस उस जज्बे की मशाल को जलाए रखिए। बाधाएं कितनी भी आए, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। ध्यान रखिए इन शब्दों, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए तब तक जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए।

तो बस जज्बा जगाना है भाई साहब, जज्बा ही जगाना है और अपने अंदर का जुनून जोश सब आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। बातें हुई हैं सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें, खुद को फोकस कैसे करें, और ये फोकस है ना, टॉर्च का भी अगर फोकस ना हो तो आगे रास्ता नज़र नहीं आता है। इसलिए अपने जिंदगी के रास्तों में आगे बढ़ने के लिए खुद का फोकस बरकरार रखना ही पड़ता है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, कई बार हम कोशिश करते लेकिन असफल हो जाते हैं, तो इसको याद रखें कि असफलता तो स्थायी नहीं होती। आपका फोकस और अनुशासन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए कि पहचान समय और मेहनत से बनती है। अब आपको क्या चुनना है यह तो आपको तय करना होगा ना। यह भी याद रखिए, आप खुद को तराश नहीं पाते हैं तो आप समाज से एक बेहतरीन इंसान को दूर कर लेते हैं। तो भाई ऐसा मत करना, तराशो खुद को, फोकस्ड रहो, प्लानिंग करो, संवर जाओ, संभल जाओ, चलो उठो, फिर से अपना आसमान तय करो और अपनी उड़ान तय करो।

कुछ गीत जो है दिल को झुझा दें, कुछ बातें दिल में उतर जाती हैं गहराई में, आंखें देखती हैं और दिल उन जज्बातों को समझता है। तभी तो जब हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार थक जाते हैं। तो कुछ शब्द हैं जो हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारे अंतर्मन को झकझोरते हैं और कहते हैं कि थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, सफर है अभी जारी। तो हमको तो बस चलते जाना है। और ध्यान रखिए, उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये टकराव जब खुद से हो तो काफी परेशानी देता है, लेकिन हमारे पास जीत का जज्बा होना चाहिए, जीतना हमें ही है, ठीक। इसलिए सोशल मीडिया हो या कोई भी संसाधन जो आपकी आदत बन जाए, उस आदत से मजबूर मत होइए, उस आदत से दूर होइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सितारा जो समाज के लिए जरूरी है वो चमके। और हमारी कोशिश भी यही है कि आप आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह चमक जाए। अब बात जब उड़ने की है तो आपको नीरज चोपड़ा का जैवलिन तो याद ही होगा, अगर वो भी हर वक्त अपना वक्त जाया करता सोशल मीडिया पर तो वो क्या कुछ बन पाते, क्या वो अपना 100% दे पाते। ट्रेनिंग, अनुशासन और फोकस से ही उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। आप भी तो अपने परिवार की आंखों के तारे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्लानिंग, उसके बाद तो हर कोई बोलेगा जिससे आपका दिल खुश होएगा। आप पूछ रहे हैं क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा जी,

हाँ जी डार्लिंग। तो भैया सबके चेहरे हो जाते हैं आप अगर जरा सी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, कहते हैं भाई प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो सोशल टीम सोशल मीडिया से फोकस फोकस हटा लीजिए, हैं स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो, नोटिफिकेशन बंद करो, पढ़ाई या काम के साथ फोन को खुद से दूर रखो, सुबह उठते फोन ना देखें और रील गोल्स लिखें। रील्स में गोल गोल मत घूमिएगा भाई साहब, बस है ना। आप क्यों देख रहे हैं ये मकसद जरूर तय कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो हमने भी थोड़ा सा आगे जोड़ दिया, जो प्लानिंग से करते हैं काम उनकी जिंदगी की शान दिखती है ना। वरना तो हम यही कहते हैं कि भाई अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, सोचा कुछ किया कुछ हुआ कुछ मिला कुछ, अरे कुछ कुछ करके जिंदगी की रेलगाड़ी छुक छुक हो जाती है भाई साहब, है। लेकिन जब आप खुद पर फोकस कर लेते हैं और प्लांड वे में काम करते हैं तो आप ये कहते हैं कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। तो भाई साहब याद रखिए, सोशल मीडिया एक टूल है जिंदगी नहीं। अपने सपनों को स्क्रीन की चमक में मत खोइए, फोकस्ड रहिए, मेहनत कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि आप हमारे जिग्गा है और जिग्गा जीतेगा। तो हर चीज के लिए प्लानिंग जरूरी है और बस प्लानिंग में जुट जाइए, भले ही थोड़ा गड़बड़ाए प्लानिंग पर क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे करके यही प्लानिंग सेट होने लगेगी और आप देखिए जिंदगी में आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल सही दिशा में चलेगी।

तो बस भाई, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है और सोशल मीडिया से दूर रहना है। हमारी और आपकी बातें जो होती हैं दिल से दिल तक होती है, और यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम चला था सुप्रभात, और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, टॉपिक भी हमने आपके मन का ही चुना है। लेकिन अब हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हुए मैं निशा आपको बस यही बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाता है हम सबके साथ कि लाइफ में सारी चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। आपने कभी बर्न टोस्ट थ्योरी का नाम सुना है? ये एक ऐसी थ्योरी है जब लाइफ आपको बचाती है व्हेन इवन जिंदगी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल। यस, जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, जब हम परेशान हो रहे होते हैं, बार बार हमें लगता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो वहां दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, या फिर जो प्लान्स हमने अपने जिंदगी को लेकर बनाए होते हैं वो बहुत ज्यादा कैंसिल हो रहे होते हैं, या लोग हमारे मैसेजेस या कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हमारे वो प्यारे सपने वो पोस्टपोन ही हुए जा रहे हैं। तो देखिए, जब ओपन डोर्स होते हैं ना, वो हमें बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा होता है। लेकिन ये क्लोज दरवाजे भी अक्सर जिंदगी आपके सामने इसलिए लेकर आती है ताकि आप उन रास्तों पर जाएं ही ना जो आपके लिए नहीं बने। सोच के इस बात को जरा, बर्न टोस्ट थ्योरी। बेशक बर्न टोस्ट खाना नाश्ते में ज़्यादा किसी को खास पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा, लेकिन जब भी इस थ्योरी के बारे में मैंने सुना तो लगा कि आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस की ये बर्न टोस्ट थ्योरी अपनी लाइफ में? बने रहिए एफएम रेनबो पर, सुनते रहिए मैं निशा आपके साथ।

पल पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया। पल पल हर कदम

ऐसे ही नया सा मंजर दिन की शुरुआत होते ही हमने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था। बस सूरज की किरणें बड़ी ही सुंदर शार्प नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन हवाओं में दिल्ली एनसीआर की जो हल्की सी ठंडक बनी हुई है ना, बहुत अच्छा फील करा रही है सच में। लेकिन दिन होते होते ही एक्सेसिव हीट का मैसेज जो है वो आ गया है जी। यस, अब से थोड़ी देर में जैसे जैसे सूरज परवान चढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 35 तक। फिलहाल 24 टेम्परेचर बना हुआ है दिल्ली एनसीआर का। बहुत से इलाकों में कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, कहीं पर बादल तो छाए रहे हैं। कम से कम दोपहर के समय में जब तेज सूरज चमक रहा होता है और उसके सामने एक बड़ा सा क्लाउड आ जाए, चाहे बारिश ना हो चाहे मौसम में कुछ खास परिवर्तन ना हो, लेकिन सुकून तो मिलता है ना। बताओ, मिलता है ना आपको सुकून? तो बस ऐसा ही सुकून दिल्ली एनसीआर वाले एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन आप हमें भारत के किसी भी हिस्से में सुन रहे हैं अगर न्यूज़ ऑन एयर इस ऐप के ज़रिए, तो आपका स्वागत है। आपके क्षेत्र में किस तरह का टेम्परेचर बना हुआ है, एक मौसम में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और सुनते रहिए 102.6 FM पर ये खासम खास प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और ये सुबह की सूरज की तरह ही टिमटिमाता हुआ गाना अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ में राइट हेयर ऑन 102.6 FM।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ऐसे ही थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है हमारा प्यार इन बातों के साथ में. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो हम आरजे लोग हैं इन्हीं बातें करने का शौक होता है, आपको भी बड़ा शौक है बातें करने का. हाँ, एक सवाल पूछा और बहुत सारे जवाब भी आने लग जाते हैं. मौसम इंजॉय कर रहे हैं जैसे दिल्ली NCR वाले. आई एम हैप्पी टू सी कि ऑल ओवर इंडिया सब लोगों को अच्छा लग रहा है. मतलब जैसा भी मौसम प्रकृति हमें दे रही है, जो भी ये क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे. लेकिन हाँ, प्रकृति को हमारी तरफ से कोई नुकसान ना हो इसकी हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए. अनिल जी ने कविता के रूप में अपने दिल की भावनाएं हमारे सामने रख दी हैं. मेरठ में मौसम सुहाना बना हुआ है. रवि जी मुंबई से लिख रहे हैं कि भाई जब भी लाइफ आपके सामने मुश्किल लेकर आए ना, तो रंबा रंबा कहना है. उससे क्या हो जाएगा, या तो आपके पास इसके लिए कोई फुल फॉर्म है. डॉली जी इज वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. आपके सभी मैसेजेस देखकर हम लोग भी तो खुश हो जाते हैं ना. आज 6 मई हो गई है और बुधवार का अच्छा दिन है. आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर पढ़कर अच्छा लग रहा है मुझे भी. बने रहिए. आज के दिन की बहुत ही खास बात आपके लिए लेकर आई हूँ. बड़े लंबे ऊंचे टावर की बात करने वाले हूँ. बने रहिए मेरे साथ. आई विल बी बैक आफ्टर दिस सॉन्ग.

1889 में इसी तरह से तोते उड़ गए थे जब इतना ऊंचा टावर लोगों ने पहली बार बड़े क्लोजली एक्सपीरियंस किया था. किसकी बात कर रही हूँ पता चल जाएगा जी आपको. पेरिस में सोचिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के 200 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन चल रहा था और 6 मई 1889 को इसी सेलिब्रेशन में आईफिल टावर को सबसे पहले आम पब्लिक के लिए खोला गया था. आईफिल टावर जिसका डिजाइन गस्टिव आईफिल ने डिजाइन किया था इसे, और शुरू में इसके रेडिकल डिजाइन के लिए से काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, बट बाद में तो ये सिंबल बन गया फ्रेंच इंजेन्यूटी और इंजीनियरिंग का. ये आईफिल टावर है, ये अब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स है पेरिस में और बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, वहां लोग जाना चाहते हैं हमेशा से ही. और अब ये सिंबलाइज करता है सिर्फ सिटी को नहीं बल्कि इनोवेशन और मॉडर्निटी को भी दिखाता है. इसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर्स है, यानी कि 984 फीट के करीब बनती है, और 6 मई को ही इसे आम पब्लिक के लिए खोला गया था और लोग खुश हो गए थे कि भाई सच में इतना ऊंचा टावर भी हो सकता है. उस समय पर ये टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था इन द वर्ल्ड. आज के दिन इसका उद्घाटन हुआ था. चलिए गाना भी शुरू हो चुका है आकाशवाणी रेनबो पर, आप इसे एंजॉय कीजिए.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नालसा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

102.6 FM. Good morning, Delhi NCR. आज वेंसडे मॉर्निंग है और मई महीने की 6 तारीख हो गई है और 6 मई को आज बर्थ एनिवर्सरी है लांस नायक आबिद खान साहब की, जो भारतीय सेना के एक बड़े ही जाबाज सैनिक थे और जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लांस नायक आबिद खान ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया था। एक गोली उनके पाँव में लगी, फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहे। और इस बीच एक और गोली जब आबिद को आकर लगी तो जिससे ये वीर सपूत जो है देश की रक्षा करता हुआ 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया। 3 मई 1999 से लेकर कारगिल युद्ध जो था 26 जुलाई 1999 तक समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के बहादुर जवानों ने सैकड़ों दुश्मनों को अपना निशाना बनाया था और जो दुश्मन बच गए थे ना, वो जान बचाकर भाग निकले थे। हालांकि अपनी वीरता का परिचय देते हुए हमारे वीर भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और उन्हीं में से एक थे लांस नायक आबिद खान भी। आज कारगिल युद्ध में शहीद हुए हर एक सैनिक को हम सलाम करते हैं।

हमारे देश के वीर सैनिकों की तरह ही ये खिलाड़ी जो हैं ये भी हमारी मिट्टी के बेटे हैं। गगन नारंग साहब आज 6 मई हैं, जो जाने माने शूटर हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं और बहुत ही अच्छे राइफल निशानेबाजों में से एक हैं। ये एक ऐसे अकेले भारतीय थे जो लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए थे और वहां पर 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। तो गगन नारंग जी को आज उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बहुत सारे पदक जीते हैं हमारे देश के लिए, इसीलिए ये विश्व के सबसे अच्छे निशानेबाजों में इन्होंने अपना नाम अर्जित किया है। इसके साथ ही खेलों की तरफ अब रुख कर ही लिया है तो आपको कल के मैच की बातें भी बताई देती हूँ। दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर से, मतलब पहली बार नहीं, फिर से अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा और इस बार ये हार दी चेन्नई सुपर किंग्स ने। पता ही है आपको, संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा दोनों ने क्या खेला है यार, और तभी तो मैन ऑफ द मैच भी मिल गया। लेकिन मैच तो दिल्ली जो है वो हार गई। बड़ा संघर्ष किया, 20 ओवर में 155 रन ही बना पाई, लेकिन चेन्नई ने 17 समथिंग ओवर्स में, मतलब 17.3 बॉल्स में इन्होंने ये जो है टारगेट हासिल कर लिया और दिल्ली को हरा दिया। अब जो माजरा है वो ये है कि इस हार के बाद दिल्ली की प्ले ऑफ की रेस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। यहाँ से हर एक मैच इनको जीतना होगा अगर इन्हें इस रेस में बने रहना होगा। रेस ही तो है आज जो मैच जिन टीम्स के बीच में खेला जाएगा वो भी बता देती हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स के साथ खेलेंगे 7:30 पर। सुनते रहिए FM रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं निशा।

इसी तरह से अपनी एक राह चुन ली थी कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी ने। आज इनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इस महाराज की, इन महाराज साहब की पुण्यतिथि है। 26 जून 1874 को ये पैदा हुए थे कोल्हापुर में, और ये कोई मामूली राजा नहीं थे, जबकि ये बल्कि महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। ये एक इनके जीवन से एक किस्सा बताती हूँ आपको। जब ये वहाँ के महाराज बने तो इन्होंने अपने सेवक कांबले को चाय की दुकान खोलने के लिए राजी किया और वहां पर चाय पीने जाने का इन्होंने फैसला किया। अब ये उस सदी के लोगों के लिए इतनी बड़ी बात थी कि वहां पर ये जो खबर है पूरे कोल्हापुर में एक जंगल की आग की तरह फैल गई, और इस घटना को देखने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई थी। गंगाराम की दुकान 100 साल पहले शुरू की गई थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी उस समय के लिए। तो शाहू जी महाराज किस तरह से सामाजिक बुराइयों को निपटाने के लिए अपने समय में एक अच्छे राजा के रूप में कार्य कर रहे थे, इससे आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से नए रास्ते बनाए और भाषण देने के बजाय काम करके, मिसाल कायम करके अपनी जनता के सामने इन्होंने जात पात और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सचमुच में न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए, वर्ण जाति व्यवस्था, इन सब भेदभावों को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इन्हें पता चला कि ये जो जात पात का भेदभाव किया जाता है बहुत ज़्यादा, ये अविद्या की वजह से किया जाता है, लोग शिक्षित नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने अपने समय में 25 जुलाई 1970 को ही प्राथमिक शिक्षा को कोल्हापुर में अनिवार्य बना दिया था और निःशुल्क भी बना दिया था। इसके लिए किसी भी जाति के व्यक्ति को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। तो एक राजा के रूप में इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम अपने क्षेत्र के लिए किया और इसीलिए आज इन्हें हम याद कर रहे हैं आज इनकी पुण्यतिथि पर।

छत्रपति शाहू जी महाराज को डेडिकेटेड ये गाना 102.6 एफएम रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की आगे की जर्नी रविंदर के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हाँ, ठीक 9 बजे लेकर आऊंगी दिल के तनाने गाने नए पुराने, ठीक है? तो 3 खास रेट्रो गीतों का इंतजार आपको भी है, मुझे भी है। तो बस 9 बजे मिलते हैं एंड फिलहाल इंजॉय कीजिए आकाशवाणी रेनबो पर गीतों का सिलसिला, कभी मेरे साथ कभी रविंदर के साथ। कीप लिसनिंग।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को। हम यूं ही आगे बढ़ाएंगे, जैसे निशा ने इसको खूबसूरत बनाया, अपनी आवाज से संवारा है, वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे हम अपनी आवाज से इसको और आगे ले जाए, यानी इस सफर की जो मशाल लेकर मैडम चली हैं उस मशाल को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी वो एनर्जी जो है बरकरार रहनी चाहिए। और इसीलिए हम प्यारे प्यारे गीतों को चुनते हैं जो आपके दिन को बना दें, और आप किसी भी कोने में क्यों ना हो वो कोना ऊर्जा से भर जाए और बस आपके चेहरे पर प्यारी से मुस्कुराहट आ जाए और आपके अंदर की जो भी सुस्ती बची हुई है ना वो दूर हो जाए, हमारी कोशिश यही रहती है। तो चलिए एक प्यारे से गीत के साथ इस सफर में एक कदम को और आगे बढ़ाते हैं। ये घुंघरू बजे ना, कभी कभी ये घुंघरू ना थरकने में मजबूर करते हैं, कभी कभी ये घुंघरू मन के अंदर एक झंझनाहट लाते हैं, और कभी कभी बस मजा ही आ जाता है।

अरे भैया, राम का नाम जप लीजिए क्योंकि जीवन का उद्धार होगा। और इस नई सुबह में अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुनेंगे तो बेड़ा पार होगा। अगर आप कहीं भी ट्रैफिक में फंस गए हैं तो भैया ट्रैफिक से इत्मीनान से निकल जाएंगे, समय का पता ही नहीं चलेगा। होता है ना, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए जो अगर कहीं पर हम अटक जाएं या कहीं रास्ता भटक जाएं तो थोड़ा सा सुकून दें। और ऐसा ही है हमारा FM रेनबो की। आप कहीं पर दिन या दुनिया के किसी कोने में हो, बस एप्लीकेशन के जरिए या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी के जरिए हमें सुन सकते हैं। और सुबह सुबह चाय के चुस्के के साथ इसे सुनना और भी बेहतरीन हो जाता है ना। खैर, मिजाज बदलता है, मौसम भी बदलता है, और मौसम बदलता है तो उसके बारे में हम आपको बता दें क्योंकि क्या कहते हैं मौसम का हाल इस नई सुबह में। ये कहते हैं कि भाई अब जो है 6 मई से यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 11 ऐसे राज्य जहां पर मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। बारिश आंधी की चेतावनी दे दी गई है और इस बारिश के दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अलर्ट जारी हो गया। तो अपना ध्यान रखें भाई साहब, जहां भी हैं, देश के किसी कोने में भी हैं। पहाड़ी राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी है और पूर्वी राज्यों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। यानी सब कुछ गड़बड़ चाला होने वाला है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आंधी बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। 6 मई यानी आज की बात करें तो तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। तो इस आसार को आप जरा समझ लीजिए और जब घर से बाहर निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें कि अगर किसी भी कोने में हल्की बारिश के आसार या आंधी के आसार नजर आए तो आप पहले से तैयार रहें। तो सुबह सुबह भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल हम सुबह की

0: ये हवाएं तो चलती रहेंगी और यूं ही जिंदगी भी चलती रहेगी और ट्रैफिक भी चलता रहेगा, आप कहीं भी हो भाई साहब, लेकिन जहां से भी गुजर रहे हो वक्त से पहले निकलिएगा, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं। और अगर आपने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर गौर नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अलर्ट रहें कि 9 से 11 बजे तक आपको क्यों अलर्ट रहना है। तो भाई साहब, दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जो हम बात बताने जा रहे हैं वो है 6 मई को सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक महात्मा गांधी स्मृति स्थल राजघाट पर एक आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में कई VVIP शामिल हो सकते हैं, इसलिए यहां पर डायवर्जन हो सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसके मुताबिक यहाँ से आप जो रास्ते हैं वो गुजरते हैं उनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे राजघाट चौक, ITO चौक, दिल्ली गेट चौक, गुरु नानक चौक, राजघाट, DTC डिपो, IPL फ्लाईओवर, ये रास्ते इनसे थोड़ा बचना है आपको। और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाने वाली यात्री हैं वो भाई साहब इस बात का ध्यान रखें, उनको भी ये सलाह दी गई कि वो अपनी यात्रा से पहले से ही सही प्लानिंग करके निकलें और अपने वाहन सिर्फ तय किए गए पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें तो आपके लिए राहत रहेगी। और सड़क के किनारे वाहन पार्क करने से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा ट्रैफिक की ताज़ा अपडेट के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना है traffic.dellipolice.gov.in पर, और इसके साथ ही उनका व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको डायल करना है तो 1095 या 011-258-4444 पर कॉल भी कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो भाई साहब समय से पहले निकलिएगा, नहीं तो आप कहेंगे किया किया क्या किया और फिर चक्करगन्नी बन जाएंगे आप, ये समझिए। घूम घूम घूम घूम है ना, गीत सुनिए, मजे लीजिए और सारी चीजें आपके मुताबिक चलती रहेंगी यहां पे।
1: नूरे मुजस्सिमे साथ तेरा,
0: समझ रहे हैं, होश उड़ जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और होता ही ऐसा है, प्यार की मोहब्बत की जब बात आती है तो सब कुछ सर चढ़कर बोलता है, लेकिन ऐसी बातें, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना दिमाग में सर चढ़कर बोलती हैं, बल्कि बोलें कि सर फोड़ हॉर्न जो लोग बजाते हैं ना, हॉर्न अपनी अपनी बसों में, अपने अपने वाहनों में, भाई साहब वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आपने प्रेशर हॉर्न बजाया तो सीधे सीधे आपकी जेब से आपकी जेब ढीली हो जाएगी, समझे? क्योंकि 254 लोग हैं जिनका चालान किया गया है, तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं इसके लिए, और मशीनों से ऐसे हॉर्न और हेडलाइट्स की जांच हो रही है जिससे नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना भाई, सब सड़क पे चलते हैं और कान फोड़ प्रेशर हॉर्न बजाकर धौंस जमाते हैं। बस ऐसे चालकों की अब खैर नहीं, चाहे वाहन में हो, चाहे बस में हो, बसों के हो, कोई भी। तो इन पर अब सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई है, अब इन पर

तरह से नजर रख रहा, और एक गलती 10,000 रुपए आपको ढीले करने पड़ सकते हैं। अब चूंकि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जहां पर अगर जरा सा भी शक होता है कि आपने बसों में ये हॉर्न लगवा रखे हैं प्रेशर हॉर्न, तो सीधे वेदपुरा या धूम मानिकपुर स्थित केंद्र पर भेजा जाएगा और यहां पर जो आधुनिक मशीनें लगी हैं वो हॉर्न की आवाज और हेडलाइट की तीव्रता की सटीक जांच करेंगी, और अगर यहां पे मशीन की सुई निर्धारित सीमा से ऊपर गई तो भाई साहब है ना, ऊपर का चालान कट जाएगा, खूब समझ लीजिए। इसलिए अब जरा स्टाइल मारना छोड़ दीजिए और कान फोड़ू हॉर्न बजाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद भी तो गिरेंगे ना। तो अब तैयारी बुरी है, ऐसा ना हो आप अपना दिल शायराना बनाने के चक्कर में अपने मौसम को शायराना बना लें और फिर आपकी जेब ढीली हो जाए। फिलहाल हमारा क्या है, हमारा काम था आपको जानकारी देना। अब जो लोग ऐसा काम करते हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, बस आप हॉर्न बजाएंगे और वो वहां पर जो सुई है ना आपको वही करा देगी, है ना। हम तो अपने श्रोताओं को बस प्यारे प्यारे गीत सुनाते रहेंगे, वो जहां भी हैं मस्त रहें, उनकी सेहत, उनकी मुस्कान, ये उनकी पहचान है और हमारा काम उनके दिल में उतरना है, राइट?

बस दिल शहराना हो जाता है जब चीजें हमारे काम को बनाने लगती हैं या हमारे काम बनने लगते हैं, तो बस सब कुछ सुहाना होता है और दिल शहराना होना बनता है भाई। चलिए कुछ और जानकारियां दे देते हैं जो लोग मोरना से हरिद्वार के लिए यात्रा पसंद करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है हमारे पास, उनके लिए खबर भी है हमारे पास। देखिए, खुशखबरी और खबर दोनों है हमारे पास। यहाँ पर गर्मियों की शुरुआत के साथ ही मोरना रोडवेज डिपो से हरिद्वार के लिए भी बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, और अब हर साल की तरह इस वर्ष भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 बसों का संचालन शुरू किया गया है। पहली बस सुबह 7 बजे, दूसरी 8 बजे, तीसरी दोपहर 1 बजे और चौथी शाम 4:30 बजे, यानी 4:30 पर रवाना होगी। और ये बसें करीब 4 घंटे में यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा देती हैं। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि हरदोई और देहरादून के लिए भी यहाँ से बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। यहाँ गर्मियों में लोग यात्रा के लिए जाना बेहद पसंद करते हैं। तो ये तो रही बात बस की, अब हम जरा ट्रेन की तरफ भी रुख करते हैं। अब मुजफ्फरपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा, और गाड़ी आनंद विहार से 8 और 15 मई यानी शुक्रवार को चलकर मुजफ्फरपुर पहुँचेगी, और वापसी में मुजफ्फरपुर जंक्शन से 9 और 16 मई यानी शनिवार को चलकर आनंद विहार वापस लौट आएगी। यानी सफर सुहाना हो तो बस हम तो एक ही बात कहेंगे, इतनी सारी सुविधाएं हमारे लिए दे दी गई हैं, अब हम बेहतर नागरिक कब बनेंगे ये हमें सोचना होगा। क्योंकि जो सुविधाएं हमें दी जाती हैं उनका ध्यान रखना, उनका रखरखाव करना हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो ध्यान रखो ना, इतनी सारी चीजें तो मिल रही हैं, और आपने खुद को बदला क्या? क्योंकि आपके बिना देश कैसे बनेगा? आपकी आदतें खूबसूरत होंगी तो देश अपने आप खूबसूरत हो जाएगा।

0: कैसे लगा? गीत तो बढ़िया बढ़िया लगा है ना? और जहां भी होंगे दरक तो रहे होंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि गीत ही ऐसे हैं, कुछ शब्द दिल को छूते हैं और कुछ संगीत जो है दिल को छूता है, तो बस मजा ही आ जाता है। और इसीलिए हमारे दिल के तार आपके दिल के तार से जुड़ ही जाते हैं। भाई साहब थोड़ा सा ब्रेक ले लें, आई एक छोटा सा
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय,
1: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

देखा, हमें बता दो, बहुत दिन बाद ये गीत आपने सुना और जहाँ होंगे ठहर गए होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी हिस्से में आपसे जुड़ा जरूर हो सकता है, और इसी तरह जिंदगी के किसी हिस्से से कोई जानकारी जुड़ी होती है तो वो भी हम आप तक पहुँचा देते हैं। कुछ बात कहने का मन कर रहा है, क्योंकि हमारे दिल के तार आपके दिल से जुड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो। भाई तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो। और मैं कहता हूं कि मित्र सिर्फ साथी नहीं, सारथी भी होना चाहिए, तभी तो जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है और संघर्षों से जो हमारा युद्ध चलता वो बहुत आसान हो जाता है उससे लड़ना, है ना। चलिए, ऐसे लोग ना रखें, ऐसे दोस्त ना रखें जो आंखों में धूल झोंके, लेकिन जो आसपास धूल उड़ाएं उनका विशेष ध्यान रखें। अब उनके लिए क्या करना है भाई, धूल उड़ाए तो सिर्फ शिकायत करनी है आपको नगर निगम की एप्लीकेशन पर जाकर, और 311 पर, और हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए 155305 पर कॉल करें, शिकायत दर्ज कराएं कि भाई साहब प्रदूषण की समस्या है, धूल उड़ा रहे हैं भाई साहब हमारे आसपास के लोग। स्वच्छता के साथ अन्य निगम से भी आप जुड़ सकते हैं, और नागरिक कार्यों से संबंधित कोई भी समस्या यहां आप 311 जो नगर निगम का जो एप्लीकेशन है उस पर आप जाकर दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत। और इसके साथ साथ जो छात्र इग्नू में असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि अब जो है इग्नू ने जून टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। छात्र अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के असाइनमेंट 31 मई तक जमा कर सकते हैं, और अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी तो भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको बस ignu.ac.in से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 31 तो बात है और ये बात आपको समझ नहीं आती, तो अगर दोनों जगह की जानकारी चाहिए तो अभी जाइए, अभी करिए अपनी शिकायत दर्ज या फिर जानकारी लीजिए, राइट हियर राइट नाउ।

तो नई जगह बना लीजिए, किसने रोका है आपको भाई साहब? रुकना तो है नहीं जिंदगी में, और जिंदगी के ये सफर तब सुहाना होता है जब हमें पता होता कि हमें किस ओर जाना है। और अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर आना भी एक बहाना है, तो हम उस बहाने को और खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि आपके पसंदीदा आरजेज आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं। चलिए फटाफट बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे ठीक बाद कौन कौन से प्रेजेंटर लेकर आने वाले हैं। तो आपको अगर रुचि है नए और पुराने गीतों के संगम में, तो उस संगम में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि निशा तंवर लेकर आ रही है 9 बजे दिल के तराने, गाने नए पुराने, यानी दोनों गीतों का संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक के शौकीन है तो 10:05 पर जुड़िएगा ऐशानी मित्तल के साथ, जो कि मैशलेस म्यूजिक अवर लेकर आएंगे और जबरदस्त प्यारे प्यारे दिल में उतरने वाले नगमे आपको सुनाएंगी। और अगर आप बॉलीवुड की खबरों में, यानी चटपटी खबरों में बॉलीवुड की रुचि रखते हैं, तो बबीता त्रिपाठी के साथ जुड़िएगा 11:05 पर कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में। और इसके बाद फिर 12:05 पर ऐशानी मित्तल आएंगी प्लेट कूल लेकर, कूल कूल गाने बजाते हुए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं रेनबो हेल्पलाइन से, तो बबीता त्रिपाठी के साथ जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ ये लेकर आ रही हैं। और आज का जो विषय है, हाउ टू मैनेज द स्क्रीन टाइम एडिक्शन, इस पर इस विषय पर चर्चा होगी। और हमारे साथ जो विशेष मेहमान होंगे वो होंगी मिस लाहर भटनागर, जो कि एक पेरेंटिंग कोच हैं। तो आप जुड़ना मत भूलिए, और अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। सब कुछ है यहाँ पर, ये जिंदगी है। और ये है आपका FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप दिल से यहाँ पर दिल तक जुड़ते हैं, इसलिए हमारी दिल की बातें आपके दिल तक पहुँचती हैं, और आपकी जो जज्बात है उनको हम समझते हैं। हर तरह का प्रोग्राम आपके लिए रहता है। फिलहाल वक्त कह रहा है आपसे इजाज़त लेने के लिए, तो हम यहाँ पर इजाज़त लेते हैं और एक प्यारे से गीत के साथ, जिस पर आप ठंडे ठंडे कुल कुल मौसम में थिरकने को तैयार हो जाएंगे। फिलहाल आपके दोस्त रविंद्र को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। और दिलेर मैंने की आवाज में गाना तो आपको झूमने पे मजबूर कर ही देगा भाई साहब। टाटा जी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल की तरह ने गाने नए पुराने, अब यही प्रोग्राम आपको सुनना है। मेरा नाम है निशा और नए और पुराने गानों का ये जो कॉम्बिनेशन है इस गाने इस प्रोग्राम में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। लेकिन बस एक ही बात बड़े एक महान इंसान को कहते हुए मैंने रिसेंटली सुनी कि ये जो आजकल का टाइम है ना, बहुत आसान है सक्सेसफुल होना। हाँ जी, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा लोग ना डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी फोकस आ जाए ना किसी को, और अगर वो ठान ले बस यही काम मुझे करना है जीवन में, तो उसके लिए उसे करना, अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड। सोचिए, दिल के तराने गाने वो राने सुनते रहिए।

आ जा रहे, ऐसा लग रहा है इतने प्यार से जावेद अली की आवाज में कोई बुला रहा है कि हमारा इस आवर का पहला रेट्रो गीत आ जाए बस। तो यस, आ गया है टाइम, आ गया है 9:15 बाय द स्टूडियो क्लॉक 102.6 FM। गुड मॉर्निंग, मैं निशा, दिल के तराने गाने नए पुराने सुन रहे हैं और पहला रेट्रो गीत आ रहा है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते। बड़ी ही प्यारी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज सानी, प्रेम चोपड़ा और बिंदु, ये सभी लोग नजर आए थे एक्टर्स। और प्रेम चोपड़ा और बिंदु अगर किसी फिल्म में है ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कहीं पर भी कोई कलेश करवाना है तो इन दोनों ने ही करवाना होता है। तो इस फिल्म में भी जो लड़ाई की जड़ होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है रास्ते और ये हमारे राजेश खन्ना साहब की 17 कंजिकेटिव हिट फिल्म थी जो उन्होंने 1969 से लेकर स्टार्ट होकर 71 तक जो लगातार हिट फिल्मों का एक दौर आया था इनका, तो ये उन्हीं फिल्मों में से 17वीं फिल्म थी। बहुत पसंद करते हैं वैसे भी मुमताज़ और राजेश खन्ना साहब की जोड़ी को। और इसमें संगीत माशाल्लाह हमारे प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। पूरी एल्बम से एक गाना चुनना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था तो बस बंद करके एक जगह क्लिक कर दिया एंड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी की आवाज में गोज आउट।

दूसरे रेट्रो गीत की अगर ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाएगी। 102.6 FM, दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में। अब लेकर आई हूँ रफू चक्कर फिल्म का गाना, बड़ा ही सुंदर, बड़ा प्यारा, क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी जहाँ पर भी दिखाई देती थी ना, बस प्यार हो जाता था। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है फिल्म के अंदर। इंजॉय कीजिए ये फिल्म, जो कि एक अमेरिकन फिल्म आई थी, सम लाइक इट हॉट, उसी पर बेस्ड थी, उसी फिल्म की कहानी पर बेस्ड थी ये फिल्म। इंजॉय कीजिए ये गाना ओनली ऑन 102.6 FM।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन

दिल के तराने गाने नए पुराने में. अगला गाना जो अब आपके लिए आ रहा है उसमें भी ऐसे फूलों के खिलने की बात जो है वो की जा रही है और बड़ी ही सुंदर आवाज में. प्यार किए जा फिल्म का गाना है. यस, ये है हमारे इस आवर का तीसरा और आखिरी रेट्रो गीत. 1966 में ये फिल्म आई थी. रोमांटिक कॉमेडी थी. इसमें शशि कपूर, किशोर कुमार, महमूद, गल्वना, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स ने काम किया था. आप इंजॉय कीजिए ये गीत.

इस तरह की बातों का सिलसिला यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं होता है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ऐशानी आ गई है स्टूडियो में लेकर मैचलेस म्यूजिक आवर। तो आप उनके साथ अपनी आगे की म्यूजिकल जर्नी 10:05 से जरूर शुरू कीजिएगा। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। मैं निशा एंड आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है। इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों की रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मुहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सोहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। IPL क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग रेनबो फैमिली, यू आर ट्यून्ड टू 102.6 एफएम रेनबो। दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर एंड यू आर विद मी ऐशानी, योर म्यूजिक फ्रेंड फॉर द आवर, ब्रिंगिंग यू दोस सॉन्ग्स दैट फील लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, द वंस दैट डोंट रियली गो अवे, they just wait quietly until the perfect moment to find their way back to you, and that perfect moment is right now.

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। यू आर विद मी ऐशानी। एज प्रॉमिस्ड बिफोर द ब्रेक टू ऑल फिल्म लवर्स, द दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज अंडरवे इन दिल्ली टिल 8th मे। एंड दिस ईयर्स थीम्स इंक्लूड वुमेन एम्पावरमेंट, नॉर्थ ईस्ट सिनेमा एंड सोशल इम्पैक्ट फिल्म्स, featuring screenings, master classes, workshops and discussions at Indira Gandhi National Center for the Arts and Ambedkar International Center. So if you're in the city, do check it out.

0: And here's a very important traffic advisory in connection with the visit of VVIPs at Rajghat today. Special traffic arrangements are in place. I want to inform my listeners that the affected areas are Rajghat Chowk, ITO Chowk, Delhi Gate Chowk, Guru Nanak Chowk and IP Flyover. So if you're planning to cross these areas, you're advised to take an alternate route. And now let's take a short break here. So stay tuned to 102.6 FM Rainbow.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: वेलकम बैक टू 102.6 एफएम रेनबो। दिस इज द

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जारी होने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किया जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और भाजपा के पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब और अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपके साथ एक बार फिर से आपकी दोस्त बबीता त्रिपाठी, ओनली ऑन आकाशवाणी, रेनबो दिल से दिल तक। और अब जो समय हो चुका है वो हो चुका है आपके बॉलीवुड या एकदम हो जाने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकदम बॉलीवुड की जो भी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खबर होंगी वो परोसी जाएंगी और आपके लिए एक सवाल भी होगा जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। कैसे बताऊंगी कैसे, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, अभी गाने की शुरुआत तो कर लेने दीजिए। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, बोले दो बीटी विद बीटी, एंजॉय।

तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें तो होंगी, साथ में आपके लिए बॉलीवुड सरताज बनने का मौका भी होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इन्हीं बातों में छुपा होगा जवाब। अगर सवाल 11:30 बजे आएगा तो उससे पहले जवाब आ चुका होगा, और अगर आपने ध्यान से सुना तो जवाब तो आपको पता ही होगा। बस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको आंसर दे देना है और बिन जाना है बॉलीवुड सरताज, मतलब तुक्के वाली बात होगी और लक वाली बात होगी। अगर आपका कॉल आया तो समझ लीजिए बॉलीवुड सरताज आप ही हैं और आपसे हमारी बात होगी, हमें बात करने का आपसे मौका मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपकी आवाज आकाशवाणी रेनबो के सभी श्रोता सुन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, क्योंकि बॉलीवुड की जो भी खबरें दूंगी उन्हीं में से एक सवाल छुपा होगा जो आपसे पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे।

तो मैं क्या कह रही थी ना कि बॉलीवुड में ना बहुत कुछ खास हो रहा होता है, बहुत कुछ जबरदस्त हो रहा होता है और आपको पहले से भनक लग जाती है। और ये कमाल है बॉलीवुड ट्रेल्स का, क्योंकि आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स रेगुलरली और फिलहाल तो आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी चल रहा है। तो ऐसे में बॉलीवुड की एक रोमांचक खबर आप तक पहुंच जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आलिया भट्ट तुम्बाड 2 में, यस, हॉरर वर्ल्ड में कदम रखने वाली हैं आलिया भट्ट। ऐसी खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ तुम्बाड की इस सफल फ्रेंचाइजी से हाल ही में आलिया भट्ट का नाम जुड़ गया है और उन्होंने तो इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और अब मैंने आपको चोरी से ये बात बता भी दी है। तो भाई अब हॉरर फिल्म में आलिया भट्ट क्या कमाल करेंगी ये तो आने वाली वाला समय बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा उनका रोल इस फिल्म में नहीं है, लेकिन जो भी है ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त है कि तुम्बाड 3 में भी उनका नाम आगे आएगा। मतलब ये कि शुरुआत यहाँ से होगी और तुम्बाड 3 तक जाएगी और जाने कहाँ कहाँ तक जाएगी, मतलब बात तो निकल पड़ी है, दूर तक जाएगी।

और ऐसे ही नाम रब का और साईं का लेते हुए डोरियां छट दी हैं किसने, वाराणसी की टीम ने। एसएस राजा मौली के निर्देशन में मूवी आ रही है वाराणसी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार कहें तो बड़ी बात नहीं होगी, वो है महेश बाबू। वैसे बात तो बड़ी ही है क्योंकि महेश बाबू साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा, और साथ में एसएस राजा मौली का निर्देशन, फिल्म तो बड़ी होगी, नाम बता रही है वाराणसी। तो ऐसे में इस फिल्म का इंतजार भी बनता है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि ये मूवी जल्दी से बनकर तैयार हो, लेकिन कैसे बनेगी, पानी की दिक्कत, पानी की किल्लत कैसे हो सकती है भाई, इतनी बड़ी फिल्म में पानी की दिक्कतें कैसे हो सकती हैं। यस, हो गई हैं भाई, जब बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, बड़े बड़े शहरों में होती हैं, तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस फिल्म के साथ। तभी तो इसकी शूटिंग रोक दी गई है फिलहाल, पता है क्यों? क्योंकि इस फिल्म के अनुसार एक अंडर वाटर शूट किया जाना था, जिसके लिए 150 पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। हैदराबाद में इसकी शूटिंग थी और अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करना था, लेकिन 150 पानी के टैंकरों की मांग कोई छोटी बात है? अधिकारियों ने कहा भैया पहले शहर को पानी सप्लाई मिलेगी, उसके बाद देखा जाएगा, और ऐसे में जो फिल्म की शूटिंग है वो रोकनी पड़ी, क्योंकि फिलहाल तो पानी उपलब्ध नहीं हो पाया और शूट की ज़रूरत ऐसी ही थी। देखा जाएगा आगे क्या होता है, इसका क्या सलूशन निकलता है, जब आएगी अपडेट तब हम बता देंगे। फिलहाल तो जब एंट्री मार रही हैं बॉलीवुड में काफ़ी लंबे टाइम बाद प्रियंका चोपड़ा, तो हम ये गाना बजाकर उनका स्वागत करते हैं और घंटी भी बजाते हैं।

एक और एंट्री अगर हो जाए ना तो दिल की घंटियां ऐसे ही बजने वाली हैं, टंग टंग टंग। किसकी बात कर रही हूँ? फिल्म जो आने वाली है सलमान खान की, उसकी बात कर रही हूँ, जिसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, और जिसके लिए एक हीरोइन से बातचीत शुरू हो चुकी है उसकी बात कर रही हूँ। एक मूवी जो आने वाली है और सुपर हीरो पर बेस्ड है, उसमें सलमान खान को लिया जा चुका है पुष्पा 2 के मेकर्स द्वारा। ये बात तो हम सबको पता हो चुकी है, जिसने जिसने भी बॉलीवुड बॉलीवुड ट्रेल्स ध्यान से सुना है और ध्यान से सुनते हैं उनको पता होगा, लेकिन उसमें हीरोइन कौन होगी ये अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं जो मैं हवा में उड़ा रही हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए कि अब इस फिल्म में किससे बात चल रही है। आखिर राज एंड डीके की सुपरहिट जोड़ी ने जो सलमान खान के साथ फिल्म बनाने का निर्णय लिया है, उसमें हीरोइन कौन होगी उसकी चर्चा गर्म है, और अगर वो हीरोइन तय हो गई तो उनके साथ ये सलमान खान के साथ उनकी 5वीं मूवी होगी। 5वीं कौन सी? पहले हो चुकी हैं बजरंगी भाईजान, क्योंकि मैं और मिसेस खन्ना और बॉडीगार्ड समझ तो गई होंगे, बात कर रही हूँ करीना कपूर की। यस, करीना कपूर अगली उनकी सुपर हीरोइक जो मूवी आ रही है उसमें हो सकती हैं सलमान खान के अपोजिट, ऐसी चर्चा गरम है। और एक और मूवी जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है सलमान खान के साथ, और ये साउथ का नाम है बड़ा, जिसके निर्देशन में ये मूवी बनेगी और सलमान खान ने उसके लिए हाँ कर दी है। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली, जिनके साथ अनटाइटल्ड इस फिल्म का ऐलान हुआ। इसके निर्माता दिल राजू हैं, लेकिन फिल्म में कौन विलेन होगा इसकी भी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी, और अब दो नाम सामने आ रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको एक साथ लगे हाथ बता ही देती हूँ कि ये दो बड़े नाम कौन कौन से हैं। धुरंधर के कौन? धुरंधर के आप सबको पता है, एक बड़ा नाम आया था धुरंधर में और विलेन के नाम पर जब आया था अक्षय खन्ना का नाम, और हमने सपने उनको देखा इस रोल में, तो भाई मान गए कि हीरो को हीरो बनाने वाला अगर कोई है तो अक्षय खन्ना। और इस मूवी में, मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में विलन जो होता है जितना स्ट्रांग होगा ना हीरो उतना ही स्ट्रांग बन पाएगा। और दूसरा नाम अभिनेता फहाद का है, जो कि साउथ सिनेमा के काफ़ी पॉपुलर अभिनेता हैं, फहाद फाजिल, और ये दोनों नाम सामने आए हैं। अब इनमें से फाइनल किसका होगा आएगा तब आपको बता दूंगी, फिलहाल मैं आपको गाना सुनाऊंगी और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। फिलहाल किसी दबंग हीरो नहीं, विलेन की तलाश जैसे ही पूरी होती है आपको बताया जाएगा गाना दबंग का बनता है।

और अब वो घड़ी आ ही गई है जब आपसे सवाल पूछ लिया जाए ताकि जवाब देकर आप बॉलीवुड सितारा बन जाएं। वैसे मोहम्मद इम्तियाज, ऐसी भी बात नहीं है, मैं वो सवाल नहीं पूछ रही हूँ जिसका जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं। कौन सा सवाल पूछ रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बीटी विद बीटी चल रहा है भाई, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, पता है ना।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: ये है आकाशवाणी।

0: और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: तो आप सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि सवाल का टाइम हो गया है और आप सब इंतजार भी कर रहे हैं। जवाब अब्दुल राशिद ने भी कुछ दिया है लेकिन क्या करें, सवाल वो है ही नहीं जो आप जिसका जवाब दे चुके हैं आप। तो चलिए सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। वैसे राशिद थोड़ा बहुत पहुँच चुके हैं लेकिन हम आपको बताते हैं कि सवाल वो नहीं जो आप दे रहे हैं जवाब। वाराणसी फिल्म की बात की राइट, लेकिन इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है लीड एक्टर, इसकी भी बात की थी अगर आपको पता हो तो। बस पता है तो जवाब यही है और आपको जवाब देना है व्हाट्सएप मैसेज करके। सबसे पहले लिखना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आपको बताना है कि वाराणसी जो अपकमिंग फिल्म है उसमें प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है, साउथ का एक्टर जो बहुत फेमस है, वो लीड एक्टर है इस फिल्म में, उसका नाम लिखना है। बस भेज देना है 9868107070 पर 9868107070।

वैसे भूत बंगला को लेकर छाए हुए हैं अक्षय कुमार, लेकिन आने वाली फिल्म की अपडेट भी वो दिए जा रहे हैं। अब फिल्म भी तो कुछ ऐसी है जिसकी चर्चा बनती है। अक्षय कुमार हो, साथ में उनके अनीस बज़मी का निर्देशन हो और फिल्म की बात हो, तो कैसे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विद्या बालन भी उनके साथ हैं और इतने बड़े बड़े नाम एक साथ जब जुड़ते हैं तो फिल्म का इंतज़ार बनता है। अक्षय कुमार की केरल वाली जो शूटिंग है, शूटिंग का शेड्यूल है वो पूरा हो गया और इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर की और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो अब आगे क्या होगा, जब खबर आएगी आप तक पहुँच जाएगी। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ फिलहाल। और हाँ, सवाल अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो रिपीट कर दूंगी थोड़ी देर बाद। आपको जवाब देना है ताकि बॉलीवुड सरताज बन जाए, हमसे बात करने का मौका मिले और हमें भी आपसे।

देखिए कहीं भी आप घर बनाइए और दिलाइए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि वो घर हॉन्टेड तो नहीं है। ऐसा ही कुछ होता है फिल्म हॉन्टेड 3D में। टीजर रिलीज कर दिया गया और डर देखने के बाद ही लग रहा है तो आगे क्या होगा। वैसे डेट तो काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रिलीज का पता चले, लेकिन अब टलते टलते 12 जून हो गई है, मतलब जल्दी हो गई है। और बहुत पहले से ये टीज़र ट्रेलर या फिर रिलीज डेट पर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब फाइनली हॉन्टेड 3D का टीज़र रिलीज़ हो गया है और अब डेट भी पता चल गई है कि ये रिलीज़ होगी 12 जून को। 12 जून को वैसे किसी ख़ास का बर्थडे है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस करते रहिए, बहुत टाइम है। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आपको बता दूं हॉन्टेड 3D के टीज़र की, तो इसमें क्या दिखाते हैं कि एक कार में सुनसान सड़क पर मिमोज चक्रवर्ती को गाड़ी में बैठे दिखाया जाता है और ये सफ़र एक महल पर जाकर रुकता है। महल में पहुंचते ही कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद चेतना पांडे की एंट्री होती है और टीज़र के जो रहस्य हैं उससे पर्दा नहीं उठाया गया है। अब उठा दिया गया पर्दा तो क्या आप पूरी मूवी देखकर जाएंगे? तो टीज़र क्यों कहलाएगा भाई। तो मूवी के लिए 12 जून का इंतज़ार। सुनते रहिए BT विद BT। वैसे सवाल मैंने क्या पूछा था, दोहरा दूं क्या? चलिए दोहरा देती हूँ। वाराणसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है लीड एक्टर? ये है आज का सवाल, जिसका जवाब आप देंगे तो बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, नहीं भी बने तो नाम तो शामिल जरूर होगा। 9868107070 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है।

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, और आप सब के लिए जो सवाल है वो भी दोहराया जा चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये होने वाला है कि आपके लिए जो आपके जो नाम है वो मैं लेने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन जो ब्रेक है ना वो कह रहा है कि आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। मैं बिल्कुल परेशान होने के मूड में नहीं हूँ, एकदम वो जो भी मुझे प्ले करना है वो रुक गया था, लेकिन मैंने उसको समझाया बुझाया और अब मनाया है। तो चलिए देखते हैं कुछ कहता है ये।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: से बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और आकाशवाणी पर चल रहा है बॉलीवुड रील्स बबिता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी। और आपको बता दूं, दादी की शादी की स्क्रीनिंग हो गई। दादी की शादी फिल्म का नाम है और इसमें है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, उनकी मम्मी, यस, नीतू कपूर की ये मूवी है, एक तरह से कह सकते हैं वही दादी बनी है। दादी की शादी 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग स्पेशली रखी गई थी और उसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे तमाम सितारे हुए। उनकी बेटी भी इस फिल्म में है और वो भी मौजूद रहीं, साथ में रेखा भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद रहीं, बड़े बड़े नाम रहे। और अब ये मूवी 8 मई को रिलीज होगी सिनेमा घरों पर, तो आप इसको देख सकते हैं। और रही बात आप सबके नामों की, जो मैं लेना चाहूंगी, लेकिन सोच रही हूं कि इस गाने के बाद इस आप सबके नाम लिए जाएं जिन्होंने सही या गलत जवाब दिया है। वैसे ज्यादातर लोग सही जवाब ही दे रहे हैं। जो सवाल पूछा गया है आपको बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए, बॉलीवुड सरताज उसके जस्ट बाद। आप सुनते रहिए बीटी विद बीटी, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, क्योंकि पहला

बिल्कुल, आप सबके बारे में सोच के मैंने यही सोचा, यही फाइनली डिसाइड किया कि आप सबके नाम तो लेने बनते हैं। इतने प्यार से आप सबने मैसेज किया है और ज्यादातर सभी सही जवाब हैं। तो चलिए मेरठ वाले लाइन से आ जाइए सब लोग। सबसे पहले मेरठ वाले लोगों के मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे आते हैं। तो सलीम मलिक मेरठ से, तरुण कोहली मेरठ से, सीमा मेरठ से, उसके बाद अगला नाम किसका है? ये है नाम, किसका नाम भाई लास्ट में क्यों लिखा आपने? सृष्टि कुमारी पटना से। उसके बाद मोहम्मद इम्तियाज, ये कीर्तिनगर से, विजय कीर्तिनगर दिल्ली में, आपको बता दूं। शालीमार बाग से विजय कुमार, ये भी दिल्ली से। राजकुमार संतानी, के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। और कौन है भाई महाराष्ट्र वाले लाइन से आ रहे हैं? प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से। ये सुनील कुमार यादव का भी मैसेज आया है, कहाँ से इन्होंने बाद में लिखा है। उमेश ख्याला से और शंकर गोवा से, पणजी से इन्होंने लिखा है, दिल्ली से, दिल्ली सुल्तानपुरी से राजेश कुमार, प्रियंका और आगे क्या लिखा है पता नहीं। और अमित मेरठ से लिख रहे हैं, अब्दुल राशिद कीर्तिनगर से लिख रहे हैं, राम प्रकाश कहाँ से लिख रहे हैं? राजस्थान से। और मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से, हैरी सिंधु भटिंडा से, रोहित शर्मा जयपुर से, दानिश खतौली से, और देवेंद्र ये कहाँ से, ये कहीं से तो लिख रहे हैं, अंगलोंग कहाँ पर है भाई, यहाँ से लिख रहे हैं ये। जफर कहाँ से लिख रहे हैं? पूर्णिया बिहार से। चित्रंजन सक्सेना भी कहीं नोएडा से लिख रहे हैं। और ये किसका नंबर नाम है, ये बाद में आपने नाम लिखा है इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। उत्तराखंड से मोनिका, आगे से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद शहर का नाम, फिर आंसर, ठीक है। ये लोहारपुर नागौर से किसका मैसेज है? आपने भी अपना नाम बाद में लिखा है इसका मतलब, और वो नाम है इरशाद का, अगली बार ध्यान रखिएगा। कुंदन पटना से, मोहम्मद फुरकान सियाल से, कविता उत्तराखंड से, शिव मेरठ से, मीनू अग्रवाल कहाँ से लिख रही है? मंडी कौन सी जगह पे है भाई? और अमित विश्वकर्मा दिल्ली से लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी अनिता मुखी भी दिल्ली से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, और किसका मैसेज है, ये मैसेज राजस्थान से आया है भरतपुर से, और मुबारक खान का ये मैसेज है। इसी के साथ ये गाना लौट कर आती हूँ और लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ बॉलीवुड सरताज हमारे साथ आए। और बॉलीवुड सरताज, प्लीज बी रेडी, अपने फोन को नेटवर्क में रखिए और डांस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फोन आने ही वाला है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये है आकाशवाणी और आप सब सुन रहे हैं FM रेनबो। ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन आपने बॉलीवुड सरताज की आवाज़ नहीं सुनी। और आप जानना भी चाहेंगे कि आज का बॉलीवुड सरताज आखिर बना कौन है। पहली बात तो जैसे ही मैंने बोला, उन्होंने कहा बाप रे मेरा कॉल मिल गया। और उन्होंने पहली बार जब हमने कभी ट्राई किया था ना, तो कॉल ही नहीं उठाया था, क्योंकि अननोन नंबर से वो बात नहीं करती हैं। कौन है वो, खुद ही बताती हैं। हेलो।
3: हाँ जी मैम,
2: बहुत बहुत स्वागत कविता आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जी बिल्कुल, धन्यवाद जी।
2: कविता, आपका नाम क्या है?
3: नाम कविता है।
2: और उत्तराखंड वाली कविता कहाँ से बात कर रही है?
3: जी अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ मैम।
2: दिल्ली में हो? अच्छा, दिल्ली में क्या कर रही हैं आप?
3: कुछ नहीं, बस ऐसे ही, एक तो पेशेंट हूँ और हाउसवाइफ हूँ।
2: पेशेंट है और हाउसवाइफ है, दोनों

0: अच्छी बातें हैं, मतलब अगर पॉजिटिवली लिया
1: बिल्कुल बी पॉजिटिव
0: क्योंकि आपने जो अफेयर बात करी ना, मुझे लगा कि मतलब इस तरह से जब पेशेंट आने लग जाएंगे तो दर्द कहाँ है भाई, कहीं नहीं है
1: बिल्कुल जितना हम मैम उस चीज के बारे में सोचेंगे उतना मतलब जो दिक्कत है वो और बढ़ेगी।
0: हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम आपको आई थी और कैसे, फटाफट 2-3 लाइनों में जल्दी से।
1: मुझे रात में दौरा हुआ तो उसके बाद हस्बैंड जी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पता चला टेस्ट वेस्ट हुए तो ब्रेन में ट्यूमर की दिक्कत। ऑपरेशन हुआ मेरा 2023 में जनवरी में। अभी ठीक हूँ मैम।
0: अभी बिल्कुल ठीक हो?
1: जी बिल्कुल।
0: तो ओवरऑल आप इस प्रॉब्लम से निकल आई है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और आपकी पॉजिटिविटी देखकर लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलने वाली है।
1: जी बिल्कुल मैम, ये सब रेनबो का भी साथ है जो इतने अच्छे से समझाते हैं। और मैम एक चीज और, बात से बने बात वो सबसे जरूरी है।
0: अच्छा, बात से बने बात बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और बात करेंगे तो बहुत जरूरी बातें निकल कर आएंगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी, जैसे हमें आपसे मिल रही है बात करके।
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। वाराणसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट कौन लीड एक्टर है, ये हमने सवाल पूछा था आज बॉलीवुड सरताज के लिए।
1: जी, महेश बाबू है मैम।
0: बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ कविता बनती है आज की बॉलीवुड सरताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस कविता।
1: धन्यवाद मैम।
0: चलिए ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए और हमसे जुड़ेंगे और हमें भी प्रेरणा दीजिए और हमसे भी लीजिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: ओके,
0: बाय बाय।
1: बाय।
0: और इसी के साथ मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत और जल्द ही आपसे मिलूंगी मैं। और फिलहाल आपको बता दूं कि 1 बजे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जाने वाला है, हाउ टू मैनेज द स्क्रीन टाइम एडिक्शन। मिस लहर भटनागर पेरेंटिंग कोच हैं और ये आपको काफी कुछ गाइड करने वाली है, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। उससे पहले प्ले इट कूल वेस्टर्न म्यूजिक का शो ऐशानी मित्तल के साथ एंजॉय करिए। एंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बबिता त्रिपाठी सेज बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवा

निवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम टू 102.6 एफएम रेनबो। आई एम ईशानी विद टुडेज सेशन ऑफ प्ले इट कूल। इट्स 6th मई एंड इट्स नेशनल टूरिस्ट एप्रिसिएशन डे, सो व्हाई नॉट लेट्स यूज दैट एज द परफेक्ट एक्सक्यूज टू प्लान अ माउंटेन एस्केप। नॉट शिमला, नॉट मनाली, द अदर प्लेसेस, द लेसर नोन स्पॉट्स। In this hour, I'm dropping a list of those hidden hill stations. One stop at a time, one vibe at a time. Let's go.

0: Rajkumar from Trishu is saying that his number one travel destination is New Delhi. Wow, you are very welcome to New Delhi. And we have a few more messages. This one is from Amit Vishwakarma from Delhi. He says, "Hey Ashani, it's my first time hearing you and wow, I'm delighted. Everything about today's show is fantastic. Thank you so much, Amit. I'm glad you're liking it." And thank you so much, Hitendra Das, Manish Das, Barsha Das, Sefali Das and Madhav Das for tuning in. Now, let's take a small little break here.
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: FM Rainbow 102.6.
0: Welcome back to 102.6 FM Rainbow. You are listening to Play It Cool and you are with me, Ashani. Here's one for the pilgrims. Kailash Mansarovar Yatra 2026 is officially announced and will take place from June to August. Registrations are open until May 19th, so apply soon if this is your dream journey.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाले किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी

कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोड़नकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद के विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो, आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। और अब शुरुआत जब होती है रेनबो हेल्पलाइन से, तो फिर टॉपिक भी हमेशा हम कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं जो हम सबकी आम लाइफ से जुड़ा हो, हम सबको हेल्प करे आगे अपनी लाइफ को एकदम स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो तो पेरेंट्स के लिए रामबाण का काम करने वाला है, और मैं खुद इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और टॉपिक बता देती हूँ, बहुत ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए, टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन। सबसे पहले तो ये हम सब पेरेंट्स से आज की डेट में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और हम सब इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा। अब ये एडिक्शन की हद तक स्क्रीन टाइम एडिक्शन

0: जो बच्चों के लिए हो जाता है वो सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये सब हम पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को भी सुनना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को और इस चर्चा को। हमारे एक्सपर्ट आ चुकी है, हमारे साथ बैठी है, उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट है मिस लहर भटनागर जो की है पेरेंटिंग कोच। तो सबसे पहले लहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं भी बहुत जानना चाहती हूँ कि आपके पास इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो गई होगी मुझे लगता है कोविड के बाद से।
1: यस, ये बहुत ही एक बड़ा इशू है,
0: ऐसे केसेस आने ज्यादा शुरू हुए हैं मुझे ऐसा लगता है।
1: कोविड के टाइम पे हमारी लाइफ इतनी डिपेंड हो गई है स्क्रीन और फोन और मोबाइल्स पे कि उसकी अच्छी भी बात थी कि हम अपनी फैमिली से टच में रह पाए, नहीं तो 2 साल हमारा सारा टच खराब हो जाता। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है और उसका टेक्नोलॉजी को हमेशा सराहना चाहिए, लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम बच्चों में जो आजकल इशू आ रहा है वो सीधा उनकी ब्रेन और मानसिक डेवलपमेंट पे असर कर रहा है। इसलिए चाहे पेरेंट्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, वो सही रीजन से इसको चिंता का विषय है ये, और हमें इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। एक जो हम आजकल गलती कर रहे हैं कि ये हमारे लाइफ में इतना घुस गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब एडिक्शन बन जाता है।
0: बिल्कुल, और इसी एडिक्शन पर हम बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि इस पर डिटेल में हम ये जाने कि आखिर ये एडिक्शन है क्या और हम कब जाने कि ये एडिक्शन हो चुका है ना, ये समझना बहुत जरूरी है और समझेंगे तभी इस पर काम कर पाएंगे हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी। और ना दें उनको फोन मोबाइल या लैपटॉप, ऐसा भी नहीं है पॉसिबल आज की डेट में, लेकिन देने के बाद ये एडिक्शन की हद तक ना जाए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के लिए हमारे साथ लहर जी जुड़ी हुई है तो हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। एक गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, इसी तरह से जुड़े रहिए।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो

0: रेनबो 102.6
1: FM रेनबो 102.6 पर आज का टॉपिक हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन, जो बहुत रिलेवेंट है आज के टाइम से. और हमारी एक्सपर्ट मिस लहर भटनागर, जो कि एक पेरेंटिंग कोच हैं, आज इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाली हैं और आप सबको गाइड करने वाली हैं. और पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी जो सुन रहे हैं उनके लिए ये शो बहुत काम का हो सकता है, अगर आप भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का, कैसे पता लगेगा?
2: हाँ जी,
1: ये है क्या चीज?
2: तो बहुत पेरेंट्स का आजकल यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन देखता है. तो पहले हम बात करते हैं कि ये टाइम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, कितना टाइम अलाउड होना चाहिए, कितना टाइम ज्यादा माना जाएगा. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 0 to 2 years, 0 to 2 साल के बच्चों में एकदम स्क्रीन नहीं दिखाना है.
1: अच्छा,
2: एकदम जीरो स्क्रीन टाइम. 2 to 5 साल के बच्चे 1 घंटा प्रतिदिन स्क्रीन देख सकते हैं.
1: ओके.
2: और 5 to 8 साल के बच्चे 2 घंटा प्रतिदिन स्क्रीन देख सकते हैं. इस टाइम को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे, मानसिक डेवलपमेंट पे बच्चे के असर नहीं पड़ेगा. तो एक तो आपको ये टाइम के अंदर अंदर अगर आपका बच्चा देख रहा है स्क्रीन, तो आपको घबराने की जरूरत फिर नहीं है. क्योंकि आजकल देखिए ऐसा हो गया है, स्पेशली कोविड के टाइम, की स्क्रीन पे हम बहुत डिपेंड हो गए हैं.
1: बिल्कुल.
2: तो 2 घंटा अगर आपका 8 साल का बच्चा है और 2 घंटा देख रहा है, तो वो लिमिट में ही माना जाता है. लिमिट में माना जाता है, लेकिन स्क्रीन में आप ये ध्यान रखिएगा कि लैपटॉप, फोन, टीवी सब काउंट होता है.
1: ओके.
2: ठीक है. तो ये अगर इस दायरे में देख रहा है बच्चा, तो आपकी चिंता का विषय कम होगा. बट आजकल अनफॉर्चुनेटली एक अभी सर्वे हुआ था, किया था, और उसमें ये पता किया था कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों 9.5 घंटे स्क्रीन देखते हैं रोज. और हमें लगता है हम बहुत कम देखते हैं. तो हमारी जो हमें डेटा है कि हमारा बच्चा इतने घंटे स्क्रीन देखता है, पहले तो उसको सही तरीके से नापना पड़ेगा. हमें लगता है कि सिर्फ 2 घंटे देखा, बट जब आप बैठ के कागज पेंसिल लेके उसको नापेंगे तो 9-9 घंटे भी निकलता है स्क्रीन.
1: और इसीलिए, क्योंकि अभी कई बार होता है कि अब बहुत इजी हो गया है कोरोना के बाद से, कि जब भी मर्जी स्कूल से आ जाता है मैसेज कि कल ऑनलाइन क्लासेस होंगी.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: ये कोई भी प्रॉब्लम है तो कल ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इस तरह का मैसेज आ जाता है. तो अब आप क्या कर सकते हैं, 3-4 घंटे क्लासेस हुई, उसके बाद वो सारा का सारा होमवर्क आ गया उसी पे,
2: वो भी ऑनलाइन होगा.
1: वो भी ऑनलाइन
2: होगा. सबसे पहले पेरेंट्स को पहला स्टेप क्या करना है, आप एक्चुअली नोट डाउन करिए कि आपका बच्चा कितने टाइम स्क्रीन देख रहा है. क्या वो 2 घंटे है, क्या वो 4 है, क्या वो 10 है, या वो 0.5 घंटा है. बट ये एक्चुअल टाइम के हिसाब से नोट करिए. तो ये तो पहला स्टेप हो गया. अब इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, अगर ये टाइम लिमिट से ज्यादा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टाइम लिमिट दिया गया है, तो एक तो आप काफी पेरेंट्स को, एक और जो हम गलती कर रहे हैं, हमें लगता है कि इतना भी एडिक्टेड नहीं है बच्चा. तो जब एडिक्शन हमें लगता है, वो होता है कि मारपीट शुरू हो गई और रोना, इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया कि पेरेंट्स पे हाथ उठाने लगा अगर स्क्रीन ले लिया. बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले भी बहुत अर्ली साइंस भी होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि बच्चा खेलना ना जाना चाहे.
1: अच्छा.
2: दोस्तों के साथ खेलने से मना कर दे, पार्क जाने से मना कर दे, और स्क्रीन को

0: करे वो एक अर्ली साइन है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक रेड फ्लैग है. ठीक है. या फिर बच्चा बेसिक हाइजीन, ब्रश, नहाना धोना, ये
1: कई बार ये पेरेंट्स के लिए मैंने देखा है, पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी होता है कि वो बच्चा बाहर जाना जाएगा, छोटा बच्चा है बाहर जाएगा तो पेरेंट्स को भी वहां जाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ, तो वो इससे बेटर ऑप्शन चूज करते हैं कि उसको मोबाइल हाथ में दे दिया, चलो ठीक है तुम तब तक गेम खेलो, और उसके बाद वो इस बात की केयर नहीं करते कि वो बहुत ज्यादा बच्चा एडिक्ट हो सकता है.
0: एक्चुअली हमारी लाइफ भी इतनी बिजी हो गई, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हम आज टिप्स करेंगे, बात करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, वो प्रैक्टिकल हो, जो एक बिजी पेरेंट अपनी लाइफ में अपना पाए.
1: हाँ.
0: तो डिजिटल बेबी सिटिंग आपने कहा, बहुत सही कहा कि एक बेबी सिटर की तरह हम यूज कर रहे हैं फोन आजकल. और मैं मानती हूँ कि सबसे जरूरी है एक मदर को, स्पेशली मदर को, थोड़ा टाइम समय अपने लिए मिले. तो अगर आप आधा घंटा एक घंटा फोन दे रहे हैं बच्चे को ताकि आपको थोड़ा चाय पीने का टाइम मिल जाए, तो उसमें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. बस ये ध्यान रखिए कि WHO के हिसाब से आप उतना टाइम उसको दे रहे हैं. छोटे बच्चे जो बाहर नहीं जाना चाह रहे, कोविड में बाहर नहीं जा पाए काफी बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि बेस्ट तरीका फोन को हटाने के लिए है कि एक उन्हीं के हम उम्र का कोई बच्चा आप घर पे बुला लीजिए चाहे, और घर पे खेल ले वो. एक वन ऑन वन प्ले डेट्स बहुत अच्छी, कोई बच्चा नहीं है जो खेलना नहीं चाहेगा. खेल ही ऐसी चीज है जो स्क्रीन को हटा सकता है.
1: और वो ज्यादातर जो ये एडिक्शन होता है वो गेम खेलने की वजह से ही होता है, मुझे लगता है, पढ़ाने की वजह से नहीं होता.
0: स्क्रीन में भी अब आपने बात छेड़ी है तो इसकी हम जरूर बात करते हैं कि स्क्रीन में टाइम तो इम्पोर्टेंट है कि कितना देख रहा है, बट क्या देख रहा है.
1: हाँ,
0: वो भी
1: ये
0: बहुत
1: जरूरी
0: है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वीडियो गेम्स बहुत ही ज्यादा ब्रेन के लिए खराब हैं. इतना ये फास्ट मूविंग वीडियो गेम्स हैं, वायलेंस होती है उसमें, और वीडियो गेम्स तो एकदम एब्सोल्युटली नो होना चाहिए. तो कंटेंट क्या देख रहा है वो स्क्रीन पे, वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है.
1: तो मैम जो लक्षण है वो, जैसे हम उस पर बात कर रहे थे कि कैसे पता चले कि एडिक्शन है, तो ये है कि वो मतलब स्क्रीन की टाइमिंग देखकर या फिर बच्चे का बिहेवियर देखकर कैसे पता चलेगा.
0: एग्जैक्टली, सबसे पहले आप स्क्रीन टाइम नोट कीजिए कि एक्चुअली कितना देख रहा है बच्चा. और अगर चीजें जैसे खेलना सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि जो बच्चा खेल छोड़ के, अपने दोस्तों के साथ खेल छोड़ के स्क्रीन देखना चाह रहा है, वो सबसे अर्ली साइन होता है कि वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है. फुल ब्लोन एडिक्शन में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को मारना पीटना स्क्रीन के लिए, टीनेजर्स में सुसाइड की धमकी देना,
1: और कई केसेस हाँ भी सुनने में आए हैं कि हाँ उनसे मोबाइल लिया गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया,
0: हाँ
1: या वो छलांग लगा दी ऊपर से. हाँ ऐसे ऐसे केसेस भी तो सुनने में आ रहे हैं.
0: अगर हम अर्ली साइंस को इग्नोर करेंगे तो हम फुल ब्लोन एडिक्शन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो अर्ली साइंस पे कैच करना बहुत जरूरी है.
1: तो चलिए इस पर और चर्चा करेंगे.

0: वैसे वो बापू हो या माँ हो, अगर फोन लेती है तो बच्चों के लिए किसी खलनायक से कम तो लगती नहीं है, है ना मैम?
1: हाँ जी, एब्सोल्युटली।
0: तो अब फोन हो या कोई भी स्क्रीन हो, टीवी हो या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप हो, किसी भी तरह की स्क्रीन का अगर आप देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं या गलत प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से, तो उसको साइड इफेक्ट तो होगा ही। इसी तरह से एक सवाल भी आया हुआ है, उसको लेते हैं और देखते हैं हमारे जो लिसनर है वो क्या कह रहे हैं। हेलो, अभी हमसे जुड़े हैं दिव्यांशु, इनको ऑन एयर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: हाँ जी मैम, नमस्ते आप दोनों को।
0: नमस्ते, बताइए अपना सवाल बोलिए।
2: जी मैडम, कैसे हैं? कोई जो है आजकल की जनरेशन है वो मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देती है।
0: जी जी,
2: तो मैडम उससे जो हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है ये जानना चाहते हैं।
0: चलिए आप अपना रेडियो बंद कर दीजिए, चलिए हम अभी फिलहाल आपका सवाल ले लेते हैं, बताइए मैम।
1: हाँ जी दिव्यांश जी, आपका सवाल एकदम सही है, आंखों पे असर तो पड़ता है, बट इसके कुछ आसान तरीके हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि स्क्रीन को हम एकदम जीरो तो कर नहीं सकते, है ना? तो हम अपनी आंखों को कैसे बचाएं? जो आंखों के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि तीन चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए जब आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है। रूल नंबर वन इज, जितना बड़ा स्क्रीन उतना बेटर। तो मोबाइल से बेटर होता है टैबलेट, टैबलेट से बेटर लैपटॉप, लैपटॉप से बेटर टीवी। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना आंखों पे असर कम पड़ेगा, आंखें कम परेशान होंगी। दूसरा है, एक जो स्क्रीन जहां देख रहा है बच्चा, वो कमरे की लाइटिंग, एक बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए वो कमरा एकदम। तो बहुत अच्छी तरह लाइटिंग रखिए। और तीसरा और सबसे आसान और बहुत असरदार फॉर्मूला है 20-20-20, एक फॉर्मूला है जो आई डॉक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब है 20-20-20 हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कोई चीज पे फोकस करें। तो सपोज आपका बच्चा अपना टीवी देख रहा है या फोन देख रहा है, उसके फोन में टाइमर लगा दीजिए 20 मिनट बाद जो बचेगा, और 20 मिनट बाद उसको समझाइए कि विंडो के बाहर देखिए, कोई दूर ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट हो, और 20 सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट को देखता रहे। तो 20 सेकंड का आपकी आंखों को ब्रेक मिलेगा, और हर 20 मिनट बाद अगर आप ये ब्रेक देंगे अपनी आंखों को, तो ये जो ड्राई आईज हैं, इचीनेस है और आंखें कमजोर होती हैं, वो भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक जीरो नंबर का चश्मा भी दे सकते हैं बच्चों।

0: आपको जब वो स्क्रीन देख रहे हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है. एक और जो असर होता है, आप क्योंकि आंखों की बात कर रहे हैं, पोस्चर का भी बहुत असर हो रहा है बच्चों में. बहुत अर्ली एज पे सर्वाइकल, कंधा में दर्द, शोल्डर में दर्द शुरू हो रहा है क्योंकि वो झुक जाते हैं. अगर आपने कभी देखा हो, फोन देखते देखते पोस्चर बहुत खराब हो जाता है, बच्चे एकदम झुक के फोन देखने लगते हैं, पीठ सीधी नहीं रखते हैं. तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है. जैसे हम लोग 40 50 60 साल पे जाके हमें सर्वाइकल हो रहा है,
1: इवन बच्चे लेट के देखते हैं.
0: हाँ, बच्चे लेट के देखते हैं. तो पोस्चर बहुत जरूरी है. शोल्डर और सर्वाइकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं टीनेजर्स में. तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग टेबल. बच्चा खड़े होके आई लेवल पे उसके स्क्रीन हो, तो सपोज वो उसकी टेबल है, तो चेयर मत दीजिए उसको, खड़े होके लैपटॉप देखे या फोन देखे, और उसका फोन आई लेवल पे हो. 3-4 किताबें रख दीजिए, उसके ऊपर फोन रख दीजिए, ताकि उसके आंखों के एकदम सामने फोन हो और वो खड़ा होके देख रहा है. बच्चे एक तो जब खड़ा होके देखेगा तो पोस्चर पे असर नहीं होगा, कंधे दर्द नहीं होंगे, और वो देखेगा भी कम क्योंकि थक
1: और डिस्टेंस भी मैटर करता है मैम. डिस्टेंस कितनी दूर से देख रहा है.
0: हाँ, करीब आपका 30 सेंटीमीटर्स दूर होना चाहिए, एकदम आंखों के पास नहीं होना चाहिए. तो आप अपने आई डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, अगर आंखों में पानी आ रहा है या उसको दूर की चीजें दिखनी कम हो गई है, नजर कमजोर हो रही है, तो जरूर अपने आई डॉक्टर से बात करिए. बट ये 3-4 चीजें आप अगर फॉलो करेंगे. एक और चीज है जो असर हो रही है, जो साइड इफेक्ट आपने बात किया बबीता जी, तो नींद, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, स्लीप बहुत कम हो रही है, और इसका डायरेक्ट असर है स्क्रीन का.
1: वो क्या, अच्छा, स्क्रीन की वजह से नींद नहीं आ रही.
0: स्क्रीन में भी एक ब्लू लाइट होती है, चाहे आप लैपटॉप देखें चाहे फोन देखें, एक उसमें ब्लू लाइट निकलती है, तो उससे नींद पे असर होता है. क्योंकि दिमाग को कैसे पता चलता है कि अब सोना है, बाहर की रोशनी के हिसाब से. जब बाहर अंधेरा होता है, दिमाग सिग्नल देता है बॉडी को कि देखो अब अंधेरा हो गया, अब सोने का टाइम है. बट अगर आप अंधेरे के बाद लैपटॉप देख रहे हैं, तो वो उसकी लाइट को दिमाग डे लाइट समझता है, उसको लगता है अभी भी दिन है, तो दिमाग सिग्नल ही नहीं देता, तो इसलिए नींद आती ही नहीं है अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं. इसका एक बहुत आसान तरीका है, सोल्यूशन है. हर एक स्क्रीन पे आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर आता है. आप हर एक स्क्रीन पे जब भी अपने बच्चे को कोई स्क्रीन दे रहे हैं, उसमें ब्लू लाइट फिल्टर हमेशा ऑन रखें. तो ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल और आसान तरीकों की आज हम और बात करेंगे.
1: बिल्कुल बात करेंगे. और स्क्रीन टाइम जो हैबिट है, इसको इम्प्रूव करने के लिए या अच्छे करने के लिए क्या करें. रांची से अनूप कुमार का मैसेज आया और इस पर हम लगातार बात कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से. तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक उसका समाधान हो गया होगा, और आगे सुनते रहिए. और दीपक का मैसेज खगड़िया बिहार से आया है. इन्होंने खगड़िया बिहार से इन्होंने रेन शो की तारीफ की है, लेकिन अपना सवाल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. मैम नमस्कार, मैं मोबाइल पे गेम खेलने की बुरी आदत मुझे हो गई है, जिसकी वजह से मेरे आंख में जलन होने लगी है. मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं. ये इन्होंने लिखा हुआ है, महेंद्र प्रताप सिंह ने. मेरे ख्याल से आप, पता नहीं ये टीनेजर हो सकते हैं या बच्चे भी, बच्चों में हो सकते हैं काउंट, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है तो मुझे लग रहा है किसी टीनेजर ने या फिर बड़ों ने किया.
0: महेंद्र जी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको एडिक्शन है. बहुत लोगों को तो ये रियलाइज ही नहीं है. तो आपका सबसे बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया है आपने, ये रियलाइज करके कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है. इस पे समाधान पे मैं जरूर आऊंगी महेंद्र जी. उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हम पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, हम स्क्रीन या बच्चे इन दोनों को दोष दे रहे हैं, और इन दोनों का दोष है ही नहीं. आप मेरे को बताइए बबीता जी, अगर हम जब छोटे थे 1-2 साल के थे, तब अगर स्क्रीन का आविष्कार हो गया होता तो हम भी एडिक्ट होते हैं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: एकदम एडिक्ट होते हैं. तो ये दिखाना कि आपके पेरेंट्स एकदम महान है और आप एडिक्टेड हो, ये एक तो रिलेशनशिप पे बहुत असर पड़ा है. बहुत पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप स्क्रीन की वजह से तनावपूर्ण हो रही है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि स्क्रीन से बचाते बचाते आप बच्चे को
1: अपने रिलेशन. बिल्कुल
0: राइट.
1: और कई बार यही हो रहा है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हम पेरेंट्स बताने में ही लगे रहते हैं कि हम किस तरह से आपसे बेटर हैं.
0: तो थोड़ा सा या रहे हैं, इसमें पर्सपेक्टिव, इसको देखने का नजरिया चेंज करने का मैं एक तरीका बताना चाहूंगी. सबसे पहले स्पेशली पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि अगर आप किसी को, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, सपोज आपको हील्स पहनना बहुत पसंद है, ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैम, और कोई आपको बोले कि अरे तुम तो हील्स पहनते हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो. अब आपको पसंद तो बहुत है, आपको गिल्टी लगेगा, स्पेशली अगर आपकी कोई माँ जैसा हो जो हमारे दिल के सबसे करीब है, वो आपको ये बोलता रहे कि तुम ये करते हो ना, इसलिए तुम बहुत खराब हो तो आपको कितना गिल्टी फील होगा, बट आपको पसंद तो बहुत है राइट. तो आपको ये समझना है कि बच्चों को स्क्रीन पसंद क्यों है. क्या है ऐसे कि हर घर में, हर दुनिया में, हर देश में बच्चे स्क्रीन को पसंद कर रहे हैं. कुछ तो होगा स्क्रीन में जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है. तो पहले वो समझिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको फिर उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे. तो स्क्रीन बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसमें स्टोरीज होती है, कलरफुल होता है, फास्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है, है ना. तो यही सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो स्क्रीन के अलावा किसी और चीज में भी उसको यही सारी चीजें मिले बच्चे से. सबसे आसान तरीका है बच्चे से पूछना कि आप किस चीज के लिए स्क्रीन छोड़ सकते हो.
1: और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही, मुझे लग रहा है सुनती जाऊं, लेकिन क्योंकि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो लंबा हो रहा है और मुझे गाना चलाना भी जरूरी है, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं. और पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी अच्छी बातें और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. आप सब बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम सबसे कहीं ना कहीं हम सबको टच करता है, हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन. हमारे साथ एक्सपर्ट मिस लहर भटनागर है जो लगातार हम सबको कोच कर रहे हैं, गाइड कर रही हैं, पेरेंटिंग कोच हैं भी वो. फिलहाल मैं आपके साथ हूं बबीता त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन. तो अगर इस तरह की हेल्प चाहिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो फटाफट मिस मत करिए इस चांस को.

0: FM Rainbow 102.6
1: रेनबो हेल्पलाइन और टॉपिक हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन। तो मिस लहर भटनागर जी हमारे साथ हैं जो कि पेरेंटिंग कोच हैं और हम से बहुत डिटेल में इस पर चर्चा कर रही हैं कि किस तरह से लक्षण पहचाने, किस तरह से जाने कि हमें क्या करना है और वो कम पड़ रहा है, कितना भी आप जानिए अपने आप को और बच्चों को सुधारने के लिए वो कम ही पड़ता है। और मैम से मैं और कुछ जानना चाहूंगी कि किस तरह से अब एडिक्शन हो गया, पहचान में आ गया, लेकिन हम करें क्या और किस तरह से इस चीज को मैनेज करें कि क्योंकि स्क्रीन से अलग भी नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप को ना बच्चों को, लेकिन मैनेज कैसे करें ये बहुत जरूरी है।
2: हाँ जी, तो एक तो सबसे पहला रूल है कि अर्लियर द बेटर। जितना छोटा बच्चा है उस टाइम से अगर आप मैनेजमेंट शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ आसान होगी। छोटे बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, रोते हैं तो मन करता है दे दो
1: जी,
2: है ना, तो वो टेम्पटेशन में नहीं जाना। बट इसको अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कोचिंग के लिए उनको मैं कहती हूँ कि हम पूरे दिन ही कहते हैं कि स्क्रीन मत देखो मत देखो मत देखो, इससे अच्छा ये बोलिए कि स्क्रीन कब देखो।
1: ओके,
2: तो वो टाइम फिक्स कर दीजिए कि आप स्क्रीन देख सकते हो 2 से 3 और शाम को 6 से 7, जो भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको सूट करता है। तो स्क्रीन मत देखो की जगह आप कन्वर्ट करो इसको स्क्रीन कब देखो, ये तकनीक आप अपनाइए। क्योंकि बच्चे को ये बोलना कि अभी आप स्क्रीन देख सकते हो, वो ब्रेन में मैसेज जाएगा तो वो ज्यादा आसान है उसके लिए समझना। मत देखना, उसमें आप विलेन बनते हो, राइट। तो एक तो सबसे पहले स्टेप वन है, आप टाइम फिक्स कर दो कि बेटा हम अब कल से ना स्क्रीन आप जरूर देखिए बट इस टाइम देखिए। तो आप 2 घंटे, चाहे दिन में 1-1 घंटा, चाहे आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट, जैसे भी आपको ठीक लगता है, बट आप वो टाइम फिक्स कर दीजिए। और एक बार फिक्स कर दिया, उसके नेक्स्ट स्टेप है जो उस टाइम के बाद जो बच्चे ने करना है वो उसकी फेवरेट एक्टिविटी हो। जैसे अगर बच्चे को पेंटिंग पसंद है या उसको बेकिंग पसंद है या उसको रीडिंग पसंद है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि बच्चे से पूछे कि कौन सी वो एक चीज है जो तुम्हें स्क्रीन जितनी पसंद है, स्क्रीन से ज्यादा नहीं, चलिए स्क्रीन जितनी पसंद है। तो वो एक दो चीजें बच्चे से जरूर पूछिए। तो कहेगा या तो मेरे को खेलना पसंद है या पजल्स करना पसंद है या मैं पेंटिंग करना पसंद है या आपके साथ मम्मी के साथ खेलना मेरे को बहुत पसंद है। तो ऐसी 2-3 चीजें याद रखिए जो आपके बच्चे को उतनी ही पसंद है जितना स्क्रीन है। और जो आपका टाइम है स्क्रीन का, सपोज 2 से 3 आपने टाइम दिया है, तो 3 बजे से 4 बजे तक वो चीज रखिए जो उसकी फेवरेट चीज है। तो वो फिर स्क्रीन छोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि उसको पता है स्क्रीन के बाद मेरी फेवरेट चीज आ रही है जो स्क्रीन जितनी ही पसंद है मेरे को। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी हैबिट चेंज करने में उसके मोटिवेशन। हमें भी पता है कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए बट उसके लिए मोटिवेट होना, अगर हम मीठा खा ले तो गिल्ट फील होता है, बट अगर हम मीठा छोड़ दें और फिर हम देख रहे हैं कि वजन कम हो रहा है तो वजन कम होना एक मोटिवेशन है, तो वी आर मोर मोटिवेटेड कि हाँ मेरा वजन कम हो रहा है चलो मैं मीठा छोड़ देती हूँ। तो हैबिट चेंज में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है और ये मोटिवेशन आपने अपने बच्चे को भी देना है। एक तो आपने मोटिवेशन दिया कि स्क्रीन के बाद आपकी फेवरेट चीज करेंगे, वो भी मोटिवेशन है, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन टेक्निक है जो साइकोलॉजी में, जो मानसिक हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम।
1: ओके,
2: रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जब बच्चे ने, सपोज आपने टाइम फिक्स किया 2 से 3 और 6 से 7, जिस दिन बच्चे ने ये टाइम में ही स्क्रीन देखा उसको एंड ऑफ द डे एक रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि आपने टाइम में देखा। जिस दिन नहीं देखा, क्योंकि होगा ऐसे दिन होंगे जिसे नहीं देखा, उस दिन आपको पनिश नहीं करना है, बस वो रिवॉर्ड नहीं देना है, ठीक है। तो सपोज आपने बोला कि बेटा अगर आप 2 से 3 और 6 से 7 का टाइम फॉलो करोगे ना तो सोने से पहले मैं आपको या तो एक चॉकलेट दे सकती हूँ या मैं आप
1: और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो देखा क्या जाता है, एज अ रिवॉर्ड हम मोबाइल ही देते हैं।
2: नहीं नहीं, हाँ, तो मोबाइल को रिवॉर्ड
1: खाना खा लो देंगे तब मोबाइल दिखाएंगे या टीवी दिखाएंगे,
2: हम आधे घंटे रात को खाने के बाद वॉक जाएंगे एज अ फैमिली। सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है जो मेरे लिए और मेरे पेरेंट कोचेज जो आते हैं पेरेंट्स उनके लिए काम करता है, फैमिली गेम नाइट। बच्चों को माँ बाप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी फेवरेट चीज होती है। तो सोने से पहले आपने कोई एक लूडो का गेम खेल लिया तो इसको रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए कि बेटा जिस दिन आपने 2 घंटा का अपना समय फॉलो किया ना उस दिन रात को हम लूडो खेल के सोएंगे।
1: ओके
2: ठीक है, बट जिसने नहीं किया ये नहीं कि आप उसको पनिश कर रहे हो. तो नो पनिशमेंट ओनली रिवॉर्ड बहुत अच्छी मोटिवेशन टेक्निक होती है
1: जी.
2: और एक और चीज है जो आप ऑल्टरनेट क्या क्या यूज कर सकते हैं. आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे आप हर घर में आजकल कोई ना ऑडियो में जाइए, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ऑडियो फॉर्मेट में है.
1: मेरे पास एक मैसेज भी है कि हम AIR को सुन सकते हैं, FM रेनबो को सुन सकते हैं.
2: एब्सोल्युटली. तो गो
1: एडिक्शन के लिए, छुड़ाने के लिए.
2: जी
1: बिल्कुल. वेस्ट बंगाल से बनश्री का मैसेज आया है. इन्होंने लिखा है कि दोनों मैम को नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि एडिक्शन क्या बड़ों को भी होती है, और मतलब 30 या उससे ज्यादा एज शायद इन्होंने लिखी है, इसके लिए क्या मेंटली डिस्टर्ब या हेडेक भी होता है बड़ों को या छोटों को?
2: एब्सोल्युटली. हम आज फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, लेकिन एडल्ट्स भी उतने ही एडिक्टेड हैं. जो सर्वे की मैं बात कर रही थी, इंडियन एडल्ट्स भी 9 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे होते हैं. हमारे काम पे असर पड़ रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स पे असर पड़ रहा है, तो एडल्ट्स के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है ये. एंड अगर आपको लग रहा है आप या आपके घर में कोई है जो चिड़चिड़ा हो जाता है अगर फोन ना मिले, या आंखों से पानी आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो जरूर आप उनको ध्यान दिलाइए कि ये एक एडिक्शन है. और जो मैं बच्चों के लिए चीजें बोल रही हूँ वो हम पे भी अप्लाई करती है. आप अपनी हॉबीज पे ज्यादा फोकस करिए, ट्राई टू टेक आउट टाइम एंड वो चीजें करिए जो आपको पसंद है. एक जो बहुत अच्छी चीज मेरे लिए काम करती है और जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनके लिए भी, फॉर एडल्ट्स, हमारे फोन पे, एक तो अगर आप सोशल मीडिया है आपके फोन, तो उसके आप सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन बंद करिए, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं और वो टिंग आवाज आती है तो हमारा पूरा फोकस खराब हो जाता है. तो वो जो भी आपके सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए. आप देखेंगे कि आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, जो काम आप 3 घंटे में कर रहे थे वो आप 1-1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि आपका कंप्लीट फोकस होगा और वो टिंग वाली आवाज आपका ध्यान बटाएगी नहीं.
1: वैसे काफी सोल्यूशंस हम ले चुके हैं. मैं बता देती हूँ, रघविंदर सिंह का मैसेज सुभाष नगर से आया. इन्होंने भी लिखा है कि ये स्पोर्ट्स कोच हैं और अब ये फील करते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के लिए कम ध्यान देते हैं, मोबाइल्स और गेम्स में ज्यादा ध्यान देते हैं.
2: Absolutely.
1: जो मोबाइल के अंदर होते हैं या स्क्रीन पर होते हैं.
2: स्पोर्ट और खेलना इज द बेस्ट ऑल्टरनेट. अगर बच्चा 90 मिनट दिन में खेल रहा है वो थक हार के सोएगा, स्क्रीन नहीं देखेगा. तो स्पोर्ट सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है. आपको कोचिंग में नहीं डालना है तो मत डालिए, बट चाहे पार्क में बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं, तो 90 मिनट दिन में, कम से कम 90 मिनट बच्चे को खेलना है. उससे इरिटेशन भी कम होती है, मोबाइल से रिलेटेड जो इरिटेशन सी हो जाती है, और मोबाइल देखना भी कम होता है क्योंकि बच्चा थक जाता है.
1: आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीन टाइम एडिक्शन को मैनेज करें, और काफी बात हो चुकी है, थोड़ी बातें अभी और रह गई हैं, तो उसको इस गाने के बाद लौट कर आते हैं और फिर कवर करते हैं.

0: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और यहाँ पर रेनबो हेल्पलाइन शो चल रहा है और आज के टॉपिक पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं और ज्यादातर मैसेजेस ऐसे हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। ऐसा क्या कोई जादू बता दें वो जिससे हम हैंडल कर लें, ये तो मतलब सोल्यूशन है नहीं कि कोई उपाय बताएंगे और हम उसी को फॉलो करेंगे, उसको 108 बार रोज जपेंगे कुछ हो जाएगा या किसी मंदिर में माथा टेकेंगे। हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। तो एज ए पेरेंट या फिर बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है?
1: करेक्ट। तो आपने एकदम सही कहा कि एज अडल्ट्स एज वर्किंग, आजकल मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो हम लोगों को स्पेशली कोविड में बच्चों ने देखा जब हम घर से काम कर रहे थे कि 8-8, 9-9 घंटे मम्मी पापा अपने लैपटॉप पे होते हैं और हमें तो सलाह दे रहे हैं कि 2 घंटे से कम रखिए। तो आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को एक फ्रैंक उनसे बात करना कि आप ये क्यों कर रहे हो और उनको ये बोलना कि जब आप जॉब करोगे तो आपको भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि स्क्रीन को विलेन मत बनाइए, क्योंकि स्क्रीन उनके लाइफ को आसान बनाने के लिए है। जो हम कोविड में 2 साल शायद हमारे पास नौकरी नहीं होती अगर हम स्टे एट होम वाला ऑप्शन नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी को आप अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए यूज करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये बात आपको खुद के लिए भी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा अपने भी नोटिफिकेशंस बंद करिए कि आप जब चाहे आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, टेक्नोलॉजी आपको नहीं रुझाए। तो ये मैसेज हमें बच्चों को भी देना पड़ेगा कि स्क्रीन खराब चीज नहीं है, ना ही आप खराब हो, बट उसको मैनेज करना क्यों जरूरी है। उनको बताइए कि ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, उनके आंखों पे क्या असर पड़ता है, उनके रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ता है, दोस्तियों पे असर पड़ता है। तो उनको ऑल्टरनेट्स दीजिए कि अगर आप स्क्रीन के अलावा,
0: कई बार वो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता, इस उनको समझा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बच्चा खाना ही 18 या 16 महीने से कम का बच्चा है, वो खाना ही तब खाता है जब वो स्क्रीन उसको मतलब उसको मोबाइल दिखाया जाता है।
1: ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सब बच्चे खाने के टाइम या मोबाइल या टीवी देखना चाहते हैं। और स्लीप और फूड, ये दोनों के टाइम तो एकदम ही नहीं होना चाहिए स्क्रीन। तो इसको कैसे हैंडल करें, जैसे मैंने आपको कहा कि स्क्रीन बच्चा क्यों देखता है, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग होता है। तो आप खाने के टाइम कोई और एंटरटेनमेंट की कोशिश करिए। हम पेरेंट्स थोड़े से नीरस से हो गए हैं जिंदगी के,
0: नीरस क्या उनके पास टाइम कई बार बहुत कम
1: तो
0: होता है, लिमिटेड होता है।
1: आप खिला रहे अपने बच्चे को खाना, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें थोड़ा सा एक्टिंग, थोड़ा सा गाना बजाना, थोड़ा सा जैसे हमारी माए हमें खिलाती थी रोटी को हवाई जहाज बना के खिलाना, तो वो हमारे खाने को इंटरेस्टिंग बनाती थी। तो हमें भी फूड टाइम को इंटरेस्टिंग बनाना है
0: और शुरू से इस बात का ध्यान रखना है कि वो उस समय हमने ही कहीं ना कहीं उसकी हैबिट लगवाई है।
1: Exactly. और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बबीता जी कि यहाँ तक बच्चा कुछ महीनों में पहुंचा ना, जैसे 16 महीनों के बाद वो यहाँ पहुंचा है तो इसको ठीक करने में भी 16 महीने लगेंगे। तो रोज आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बट रोज रखनी पड़ेंगी।
0: जी, शिखा का मैसेज आया कि वो बच्ची को फोन जैसे वो हटा लेती है तो वो रोने लग जाती है, इस तरह की उन्होंने कहा भतीजे के लिए। और ये कॉमन प्रॉब्लम जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक मैसेज मेरे पास अरवल से आया है, इन्होंने लिखा है ब्लू फिल्टर की आप बात कर रही थी, इसे थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, मतलब मोबाइल लैपटॉप और टीवी में कैसे सर्च करें और इस्तेमाल करें।
1: मोबाइल और लैपटॉप पे होता है, मोबाइल में तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही होता है, आप ऊपर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है अपनी उंगली के जब आप नीचे करते हैं तो स्क्रीन पे ही आपको ब्लू लाइट फिल्टर दिख जाएगा। लैपटॉप में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू टर्न ऑन ब्लू लाइट फिल्टर, हर एक डिवाइस में आजकल है, टीवी में नहीं होता है। बट टीवी आजकल ओएलईडी वाले आ रहे हैं जो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। तो ब्लू लाइट फिल्टर फोन पे तो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिल जाएगा, आप अभी भी देख सकते हैं।
0: ओके, ये मैसेज प्रमोद फरीदाबाद से था जिन्होंने ये किया था कि उनकी जो पोता या पोती है वो मोबाइल देख के ही खाना खाती है। और सिर्फ प्रमोद जी के ही नहीं बल्कि घर घर में ये कहानी है और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की ही गलती होती है। और मैं चाहती हूँ टाइम कम है तो चलते चलते आप पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी?
1: मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा अपनी स्क्रीन हैबिट चेंज करे तो आप उसका साथ दीजिए एंड उसके टीम में रहिए और आप भी उसको बोलिए कि मैं भी अपनी एक हैबिट चेंज करूंगी आपके साथ।
0: ओके,
1: तो बी अ टीम। एंड ये दिखाइए कि वी आर इन दिस टुगेदर, आप और मैं दुश्मन नहीं है, हम दोनों साथ हैं इसमें. तो आप भी एक हैबिट पिक करिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है जॉग पे जाने का या फिटनेस में, तो आप वो करिए कि ठीक है मैं भी टाइम निकालूंगी आधा घंटा रोज, तुम आधा घंटा स्क्रीन टाइम कम करो और मैं आधा घंटा अपना फिटनेस का टाइम.
0: वाह क्या बात है, और बहुत अच्छी बात है. अगर दिल से कोई चीज चाहेंगे तो और सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, और आपने बहुत सारी टिप्स आज ऑलरेडी दे दी है और बहुत काम की है. तो थैंक यू सो मच आप स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी.
1: थैंक यू.
0: तो ये थी हमारे साथ मिस लहर भटनागर जो कि पेरेंटिंग कोच है. इन्होंने आज हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन पर बहुत डिटेल में और बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाई. इनका बहुत बहुत शुक्रिया. और उसके साथ साथ एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं, लौट कर आते हैं. आप सब कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से FM रेनबो के साथ बने रहिएगा.

0: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो,

0: साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलने वाले इस सफर का जो खूबसूरत सा हम सफर होता है उसी को डेडिकेट करते हैं हम अपना दोपहर का ये घंटा हर बुधवार, जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। और आज एक बार फिर से अपनी तरफ से एक बढ़िया खूबसूरत सी प्ले लिस्ट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड ऑब्वियसली हम सफर के बारे में बात होगी, सफर के बारे में बात होगी। सफर और सफरिंग अक्सर साथ साथ चलते हैं और हम भी अपने प्रोग्राम में दोनों को शामिल करके चलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फैंटेसी, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी, इन सभी चीज़ों का मिक्स होता है जिंदगी का ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत रिश्ता जिसका नाम होता है हम कदम। और उसी के बारे में बात करते हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। इसे सुन रहे हैं आप सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। मेरा नाम है स्वाति और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत बड़ी मज़ेदार हुई थी। लेकिन हाँ, मज़ेदारी बाद में, पहले गाने से शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैंने आप सभी के लिए चुना है। ताल से ताल मिलाने की बात कर रही थी तो चलिए वही से शुरुआत कर लेते हैं, अलका याग्निक की बहुत ही अमेजिंग आवाज के साथ। आप सुनते रहिए प्रोग्राम हम कदम, ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और ताल से ताल मिलाते हुए चाहे आपको कुछ दिन ही हुए हों या फिर आप सिल्वर जुबली मना चुके हो, हमारा ये प्रोग्राम हम कदम है आप सभी के लिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर बुधवार दोपहर आप सुनते हैं इसको, 2 से 3 बजे के बीच में जब आपके हम कदम की बात होती है, आपके हम सफ़र की और उस सफ़र की बात होती है। एंड ऑब्वियसली सफ़र और सफरिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि हम बड़े रियलिस्टिक लोग हैं, ठीक है ना। तो जब रियलिटी की बात आती है तो अक्सर ये जो हमारे हम कदम होते हैं ना, मतलब मैं, तुम, हम और उसके अलावा एक चीज़ और होती है और उसे कहते हैं हम तीसरा। जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो सोच रहे हैं ना, मैं उस तीसरे के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस तीसरे के बारे में बात करूँगी जिसके हम जिसको हम घर में लेकर आते हैं, जिसे हम अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। उसके आने से आपका सोफ़ा भी गंदा होता है, नींद ख़राब होती है, लेकिन उसके बावजूद आपके इस सफ़र की खूबसूरती जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई बच्चों की बात अलग होती है, बच्चे तो हमारे जो अपने होते हैं होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और पेरेंटिंग अक्सर हम लोग अपनाते हैं और वो होती है पेट पेरेंटिंग। जी ये तीसरा जो है ना ये वो पेट है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी और आइडियाज़ आ रहे हो तो उसको साइड में रख दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं पति पत्नी और वो प्यारा सा पेट, इस चीज़ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हाल ही में हमारी एक फ्रेंड हैं और उनके बच्चों की जब शादी, उनकी बेटी की शादी हुई, तो उन्होंने उन्हें एक सलाह दी कि भाई बेबी करने से पहले ना पहले एक पेट पाल के देख लेना कि आप दोनों जो हो ना वो पेरेंटिंग के लिए कैसे हो, आप कितने अच्छे पेरेंट बन सकते हो। क्योंकि अगर आप एक पेट के पेरेंट्स अच्छे बन सकते हो देन ऑब्वियसली आपका जो है ना पेरेंटिंग का भविष्य वो बहुत ही उज्ज्वल है। तो ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब ये पर्सनल ओपिनियन की बात है ऑब्वियसली, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा पालना और एक पेट को पालना ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। क्या आपके घर में भी कोई पेट है? देन ऑब्वियसली आप मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी आपके घर में कोई पेट आता है तो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा केयर मांगता है और उसकी तकरीबन देखा जाए तो 24 घंटे ही उसको आपकी ज़रूरत होती है। और उसको पालना जो होता है या उसको रखना जो होता है ना वो किसी भी महाभारत से कम नहीं होता, वो किसी भी बहुत बड़े काम से कम नहीं होता है। और ऐसे में ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में वो एक अलग डायमेंशन जो है वो जोड़ता है। तो आज हम इसी बारे में बात करें, हमारे आज के इस प्रोग्राम में नाम है इसका हम कदम। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। तो आप, आपके हम कदम और आपका पेट, इस बारे में करेंगे थोड़ी सी बात। और थोड़ी ही देर में मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग सा गाना और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी रांचना। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप हरिहरन की आवाज़ में और साधना सरगम की आवाज़ में आपने सुना एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना। चांद से बातें कर सकते हैं आप, उसे अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं एंड ऑब्वियसली बहुत कुछ कन्फाइड कर सकते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि ऐसा कॉन्फिडेंट जो है ना वो आपको अपने घर में भी मिल सकता है। और अक्सर लोग अपने पेट्स को भी ना इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसे अपनी सारी बातें बता देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो जाकर कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा, और साथ ही इसलिए भी क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। आशियाना सुन रहे हैं आप, आशियाना में आज के दिन हम बात करते हैं हम कदम की, आपके हम सफ़र की, और आपका ये प्रोग्राम हम कदम 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप तक पहुंचता है हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी और पेट के बारे में। वैसे पर्सनली आप में से कितने लोग हैं जो किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो जिसको हम कहते हैं ना बहुत लाउड फैमिलीज होती हैं, मतलब लाउड का मतलब ये नहीं कि वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लाउड का मतलब ये कि वो हंसते भी ज़ोर से हैं, वो बातें भी ज़ोर से करते हैं, उनके घर में हर वक्त जो है आपको लगता है कि एक चहल पहल सी जो है ना वो लगी रहती है और उसकी आवाज़ें जो हैं चारों तरफ गूंजती रहती हैं। वेल आई पर्सनली नो अ फैमिली और मुझे ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ साल पहले जब उन्होंने अपने घर में एक पेट को रखा पहली बार, तो उसके बाद से उनके घर में जो है ना एक अलग ही तरह का पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमने ऑब्जर्व किया है। और मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादातर घरों में जो है वो होता है, क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा कि पेट जो होता है ना उसके कान में ना हम चुपके से अपनी वो सारी बातें कह देते हैं जो अक्सर हम किसी और से नहीं कर पाते हैं या अपने घर वालों से भी नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक हस्बैंड वाइफ की बात है, भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में वो है ना बोन ऑफ कंटेंशन भी होता है, बंडल ऑफ जॉय भी होता है। अब आपके घर में क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे ट्रीट किया है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है छोटे छोटे झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई जब पेट को घुमाने लेके जाना है या डॉक्टर के लेके जाना है, उसकी किसी भी चीज़ को अटेंड करना है, किसी भी नीड को पूरा करना है, तो वो कौन करेगा। वर्किंग कपल्स हैं और वर्किंग कपल्स जो हैं अक्सर जब पेट को रखते हैं तो उनके बीच में इस तरह का जो है ना छोटी छोटी बातों को लेके बहस होती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को लेके डिस्कशंस भी होते रहते हैं। और हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो, जब वो चलता रहता है ना लगातार, देन ऑब्वियसली बॉन्डिंग जो है ना वो एक अलग ही रंग लेकर निखरती है। और अक्सर पेट्स जो है ना वो अपने पेरेंट्स को करीब लाने का ही काम करते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम हम कदम में मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ, और मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए एक और दिल को ठंडक पहुँचाने वाला गाना। ठंडक की बात इसलिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, अगर आप धूप में जाएँ ना तो आपको महसूस होता है कि जी गर्मी जो है ना अपने पूरे उफान पे बहुत जल्दी जो है आपको परेशान करने के लिए आ चुकी है। और जो गाने हैं ना हमारे, उनके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको ये सुकून देते हैं, गर्मी में एक ठंडक का एहसास जो है ना वो देते हैं, और उसी तरह के गाने मैंने चुने हैं आज की हमारी मेरी जो प्लेलिस्ट है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा गाना।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और एआर रहमान की आवाज़ में अभी आपने सुना एआर रहमान का ही म्यूजिक फ्रॉम द मूवी पुकार. बैन प्ले किया आप सभी के लिए. और बात हो रही थी जी हस्बैंड वाइफ एंड पेट की. और पेट पेरेंटिंग जो है ना आसान नहीं होती है. और मज़ेदार बात यह है कि ये आपके रिश्ते को किस हद तक प्रभावित करती है ना, कई बार हम इसको समझ भी नहीं पाते हैं. वैसे घर में बच्चे होते हैं ना जब छोटे, तो हमें भी पता है कि जब वो सो रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि तभी आवाज़ में बोलना है. या फिर अगर हमें जो है अपने रोमांटिक मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए हमें जो है ना स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी आपके रिश्ते से जुड़ी होती हैं. उन सब चीज़ों के लिए जो अरेंजमेंट्स हमें अपने बच्चों के लिए करने पड़ते हैं ना, वही अरेंजमेंट्स अपने पेट्स के लिए करने पड़ते हैं. और मज़े की बात, पेट्स जो है ना इस बात का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनके ना सुनने की शक्ति भी ज़्यादा होती है एंड ऑब्वियसली वो समझते भी जो है ना बड़ी जल्दी हैं. और कई बार बॉन्डिंग जो होती है ना, लड़ाई को ख़त्म कराने वाली, वो काम भी जो है ना ये पेट्स बहुत ही बखूबी करते हैं. क्योंकि हम सबको पता है कि जब आप ज़ोर से ज़रा सी भी आवाज़ अगर आप तेज़ करें तो आपका पेट जो है ना वो एंक्शस हो जाता है. और अचानक से वो है ना वो भी शामिल होना चाहता है आपके डिस्कशन में. या अगर आपको वो दुखी देखता है तो वो आके आपको मनाने की कोशिश करता है या आपका दुख कम करने की कोशिश करता है, जिस भी तरह से वो कर सकता है. और साथ ही साथ कई बार जो है ना जेलिसी की वजह भी तो बन जाते हैं. कई बार होता है कि जो आपके हमकदम हैं वो ये शिकायत करने लगते हैं कि भाई उस हमसे ज़्यादा प्यार तो जो है ना आपको हमारे पेट से हो रहा है. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये ज़िंदगी में इस रिश्ते में ना एक अलग ही रंग जो है वो घोल देती हैं. एक और वाइब्रेंट और एक और कहना चाहिए कलरफुल जो होते हैं ना मोमेंट्स, उनको ऐड कर देती है. बहुत अच्छा लगता है कि एक तरफ तो जहाँ आप पेट के काम के लिए एक दूसरे से जो है बहस भी करते हैं, लड़ते भी हैं, वहीं साथ साथ जब पेट है ना वो अपना फेवरेटिज्म दिखाने पर आता है तो तब आपको जलन भी महसूस होती है अगर वो आपके पार्टनर को ज़्यादा तवज्जो दे देता है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे रिश्ते से जुड़ती हैं और हमारे रिश्ते को एक अलग रंग दे देती हैं. 102.6 आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम. मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज़ में एक बार फिर से एआर रहमान का ही म्यूज़िक. इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग. दोस्ती पर आधारित है. और हम सभी जानते हैं कि जहां आपके रिलेशनशिप में भी दोस्ती का एक दूसरे का दोस्त बनने की एक बहुत अहम भूमिका है. साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत दोस्त जो आपको पेट के रूप में कुछ साल के लिए मिलता है, ये उसके लिए भी एक तरह से समझिए कि डेडिकेटेड है. प्रोग्राम है हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला की श्रृंगार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आपके साथ। आज हमने बात की पति पत्नी और पेट के बारे में। जी, आपका पेट जो है ना, भले ही उसके चार पैर हों या फिर उसके दो पंख भी हो सकते हैं, पेट किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि पेट जो है ना वो केवल एक प्राणी नहीं होता, बल्कि वो एक जिम्मेदारी होता है जो एक कपल को ना टीम वर्क सिखाता है। और साथ ही साथ कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सभी कहते हैं अक्सर कि भाई ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस जो है वो हमारे रिश्तों पर भी असर देता है, और हमारे रिश्ते भी अक्सर जो है ना उसकी वजह उसका शिकार बन जाते हैं, कहना चाहती हूँ मैं। तो ऐसे में आपका इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर आपका पेट होता है कि अक्सर उसको देखने के बाद आप अपनी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ तो भूल ही जाती हैं, तो ऐसे में उस स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है जो आपके रिश्ते पर असर डालती है, उसको कमज़ोर बनाती है। ये सिर्फ एक पेट नहीं होता, एक जिम्मेदारी होता है। टीम वर्क के साथ साथ वो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करना सिखाता है, क्योंकि निस्वार्थ प्यार जब किसी इंसान को मिलता है ना, तो उसके अंदर से भी कुछ उसी तरह के रिएक्शंस जो है ना बाहर आते हैं। भाई हम भी तो आखिर इमोशनल प्राणी है ना, और हमारे इमोशंस जो हैं अक्सर वो इस चीज़ पर निर्भर करते हैं कि सामने वाले की तरफ से हमें किस तरह की जो है वाइब्स आ रही हैं। एंड ऑब्वियसली जब घर में एक पेट होता है तो वो जिम्मेदारी और वो वाइब्स ना कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो एक छोटा सा जो दोस्त होता है ना आपका, ये वो अक्सर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स की या फिर आपके फैमिली के एटमॉस्फेयर की, भाई असर तो बहुत डालता है, और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छा असर डालता है। फिलहाल आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका समय जो है वो ख़त्म होने को है, तो मैं सबसे पहले जल्दी से आपको याद दिला देती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो आप सुनने जा रहे हैं वो क्या है। टीम वर्क की बात कर रही थी मैं, तो जी हमारी टीम ने भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है ना वो बना रखा है, और नाम है उसका रेडियो डॉक्टर, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी समस्याओं से यानी कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उससे जुड़े समाधान प्रस्तुत करता है। रेडियो डॉक्टर अगला प्रोग्राम 3 से 4 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर सुनेंगे आप। आज जिस विषय पर बात होगी वो बहुत ही ज़रूरी विषय है, वो है गर्मी से होने वाली परेशानियाँ और सावधानियाँ। जी, हीट रिलेटेड इलनेसेस एंड प्रिकॉशंस। एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार, आप प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम जो है वो आप ज़रूर सुनिएगा। गर्मी बढ़ रही है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और उसके लिए सावधानियाँ और ये सारी जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो टिप्स बताई जाएंगी, उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल को दीजिए इजाजत, हम कदम थापस यहीं तक।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्रांड न्यू एडिशन में। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नेहा, और आज हम हमेशा की तरह बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हम रोज देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सूर्य देव अपने उरूज पर रहते हैं हर रोज। दिन का टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है काटना और परेशानी तो रात में भी होती है। अब ऐसे में गर्मियां जब आती हैं और गर्मियां जब अपने चरम पर होती हैं तो बहुत सी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेडियो डॉक्टर में आज हम बातें करेंगे हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरह से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ये तमाम सारी बातें जानकारियां हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब आज का जो विषय है बहुत ही कॉमन सा है, हर साल गर्मियां होती हैं और बहुत सी परेशानियां हम फेस करते हैं, तो मजा आएगा आज के कार्यक्रम में बात करते हुए।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही समय चुना है आपने, क्योंकि है ना, और अब ये यहाँ से आप पीछे देखने का मौका नहीं है।
2: बिल्कुल, और हर बार ऐसा लगता है कि इस बार गर्मियां थोड़ी ज्यादा पड़ने वाली हैं।
3: जी
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अमूमन हम आम तौर पर देखते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टियां लगना या फिर पेट की बड़ी सारी समस्याएं हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का कई लोगों का लो हो जाता है, तो क्या ये भी हीट रिलेटेड इश्यूज हैं?
3: जी देखिए, इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो आपको फीवर के साथ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, लूज मोशंस हो गया, वॉमिटिंग हो गया और फीवर साथ में है, तो इसमें या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि पेट का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ये हीट रिलेटेड इलनेस का भी सिम्टम्स हो सकता है जिसमें आपको हेडेक, चक्कर, स्वेटिंग और घबराहट, इस तरह का साथ साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सारे सिम्टम्स भी हीट रिलेटेड, और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा होने लग जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स हीट रिलेटेड इलनेसेस से भी हो सकता है। तो इसमें ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये इन्फेक्शन से है या हीट रिलेटेड, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है।
2: लेकिन इस बात पर हम गौर फरमाएंगे, बहुत सारी बातें हमें आपके साथ आज कार्यक्रम में करनी है। श्रोताओं जब तक आप हमें फोन मिला रहे हैं और मैसेजेस भेज रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म हासिल से अभिजीत की आवाज में सिर्फ आपके लिए प्ले हो रहा है रेडियो डॉक्टर में।

0: वैसे ये बिल्कुल सही बात है कि आंखें भी हो सकती हैं दिल की ज़बान। साथ ही एक डॉक्टर की नजर से अगर देखा जाए और सोचा जाए तो आंखों से पता चलता है कि आपकी सेहत कितनी दुरुस्त है। वेल, आज बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरीके से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ ही ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, गर्मियों की बातें हम शुरू कर ही चुके हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी बहुत ही कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो गर्मियों में देखी जाती हैं।
1: देखिए, इसमें ये हीट रिलेटेड इलनेस जो है ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। माइल्ड डिजीज की बात करें, फिर मॉडरेट और सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस हो सकता है। तो माइल्ड की बात करें तो सबसे पहले हमारा जैसे जो गमोरिया हमारे निकलती हैं, जिसको प्रिकली हीट भी कहते हैं या हीट रैश भी कहते हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में आता है। या फिर पैरों में सूजन हो जाना, दोनों पांव में हीट की वजह से दोनों पांव सूज जाते हैं,
0: जैसे तो वो चलने में भी काफी तकलीफ होती है।
1: जैसे क्योंकि ब्लड वेसल्स आपके जो हैं जो वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड नीचे ग्रेविटी से बैठ जाता है, उसके वजह से थोड़ा सा सूजन आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं
0: जी।
1: हल्का सा सूजन आ जाती है, ये सारे माइल्ड केसेस में आते हैं। फिर जो इसके मॉडरेट केसेस में आएंगे आपके, जैसे हीट के साथ आपको सिंकपी हो जाता है ना, जैसे हीट में आप चक्कर खा के एकदम से गिर गए और फिर एकदम से उठ भी गए, तो उसको हीट सिंकपी कहते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम हीट एग्जॉशन की बात करें, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गफलियत में जाने लग जाता है आदमी, तो वो हीट एग्जॉशन होता है। और हीट स्ट्रोक होता है जब वो पूरी तरह गफलियत में चला जाता है और होश और हवाश खो बैठता है, जिसको कहते हैं हम लू लग गई है। तो ऐसे कंडीशन को सबसे सिवियर हीट रिलेटेड इलनेस, इसलिए इसको स्ट्रोक भी कहा गया है, हीट स्ट्रोक, क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो डेथ रेट है वो काफी हाई होती है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं जो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से भी इसकी भी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट काफी हाई होती है।
0: सर, ये कितना कॉमन है? जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत ही बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है गर्मियों में, हीट स्ट्रोक की आप बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक से भी शायद ये रिलेटेड है, तो ऐसे में ये कितना कॉमन है जो लोगों में ये समस्या हो जाती है?
1: देखिए, इसमें काफी कॉमन है और कई बार तो ये पता भी नहीं चलता है हम लोग, क्योंकि ये हीट की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से, मैंने बताया, क्योंकि इसमें भी फीवर होता है और कई सारी चीजें ऐसी सिम्टम्स होते हैं जो इन्फेक्शन में आमतौर पे हम देखते हैं कि, तो इसमें ये पिन पॉइंट से कहना कि हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सेंसिटाइज अगर डॉक्टर्स नहीं है या पेरिफेरल एरिया में सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा डायग्नोसिस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये, लेकिन ये काफी कॉमन है। अभी आप देखेंगे 2015 में 2500 के आसपास लोग की डेथ हुई थी, और हर साल हम देखते हैं कि 500 से 700 लोग इसके डेथ के शिकार होते हैं पूरे इंडिया भर में। तो ये खासकर वो लोग होते हैं जो जिनका घर नहीं होता है या जो स्ट्रीट पे मजबूर हैं काम करने के लिए, डेली वेजर्स हैं या वेंडर्स हैं, या जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, या फिर एल्डरली जो हाई रिस्क में होते हैं, एल्डरली या बहुत छोटे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, या फिर कोई मेडिकेशंस, जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले से ही ग्रसित हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, तो उनको उनके टॉप पे फिर ऊपर से ये एक हीट की जो समस्या है, अगर ये भी उनके साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो फिर उसको झेल नहीं पाते।
0: जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, लेकिन एक कॉलर उससे पहले लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
2: डॉक्टर श्याम को भी नमस्ते मेरी तरफ से।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: सर मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ जिले से बात कर रही।
0: गीता जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमें बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं।
2: जी मैम, मेरे बीपी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, मतलब अगर मैं ज्यादा कुछ सोच लूं तो मेरे एकदम बीपी डाउन हो जावे और कभी लो कभी हाई, तो समझ में नहीं आता, कभी मतलब दिल घबराने लग जाए तो कभी शर्म दर्द बन जाए, कभी की ऑटोमेटिक सारा ही शरीर मेरा बिल्कुल डाउन हो जावे।
0: अब आप डॉक्टर साहब की बात,
2: पैर भी
0: जी जी आपकी समस्या
2: भी काम करने बंद कर दे कभी कभी।
0: आपकी बात हमने सुन ली, अब आप डॉक्टर साहब की बात पर ध्यान
1: जी दे। जी देखिए, जो बीपी लो हो जाता है, जो आपको कह रहे हैं कि काफी सोचने पे या इस तरह से, तो पहली बात तो आप सोचे नहीं ज्यादा, है ना, आप खुश दिल रहे, खुश मिजाज रहे और ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा ध्यान सोचे नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से भी देखिए वो फिर आपके दिमाग पे क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते ही हैं, तो फिर इस तरह से आदमी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसको आप दिमाग से निकालें, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखें। लो बीपी जब भी हो, आपको ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है या ये हो रहा है, तो आप एक तो अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है तो आप पास चेक करा के, और अगर वाकई में लो है तो उसके लिए आप चीनी और नमक का पानी सेवन ज्यादा लें, तरल पदार्थ आपको ज्यादा लेना है यानी कि पानी का सेवन ज्यादा करना है। और अगर बीपी हाई है तो उसको आप डॉक्टर से मिलके बीपी का उसका इलाज आप परसिस्टेंटली देखेंगे तो उसका भी इलाज आप डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी फोन करने के लिए। श्रोताओं इनकी तरह आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा दूं आपके लिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा, नंबर है 2342-1084 और 2342-1080। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम पता तो नहीं बताया बट पूछना चाहते हैं कि लू के प्रभाव की पहचान कैसे होती है।
1: हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप नाम बताते तो और भी अच्छा रहता। लू देखिए जो हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट एग्जॉशन भी उसी कैटेगरी में आ जाता है कि देखिए जो कॉमन सिम्टम्स जो हीट रिलेटेड इलनेस होता है वो तो है हेडेक हो गया, आपको थोड़ा सा चक्कर आने लग जाए या फिर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उल्टियां हो रही हैं, है ना, थोड़ा सा दस्त भी लग सकते हैं और पसीने खूब आ रहे हैं, मुंह सूखने लग गया, आपका जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाएगा, सांसें आपकी ज्यादा तेज चलने लग जाएंगी, तो ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मली आपको जो मॉडरेट लेवल तक का, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की या हीट एग्जॉशन की तो इसमें जो आपका जो गफलियत होना ये चालू हो जाता है, आप अपने होशो हवास में नहीं रहते, थोड़ी बहुत गफलियत है तो उसको हीट

0: हो रही है या 4 दिन से हो रही है, कितना समय लेना चाहिए?
1: देखिए, हीट स्ट्रोक तो बिल्कुल एकदम से आपको अफेक्ट करता है, इसमें आपको समय नहीं देगा कि 6-7 दिन से हो चल रहा है। इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो 7 डेज लगता है, या कोई और इन्फेक्शन है तो वो, जैसे टीबी है तो उसमें और ज़्यादा
0: राइट
1: लो ग्रेड फीवर चलता रहता है।
0: जी
1: लेकिन हीट स्ट्रोक की जहाँ बात करेंगे, उसमें एकदम से व्यक्ति जो होता है गफलियत में जाएगा, एक दिन के अंदर आपको, 1 या 2 दिन में आपको ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा।
0: राइट एक कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम राजेश कुमार, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, सवाल पूछें।
2: सवाल ये है कि ये जो कोल्ड कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा जो
0: जी,
2: अगर हम बीमार हो जाते हैं जैसे डॉक्टर साहब तो बात कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से सही रहेगा या
1: जी
2: डॉक्टर नींबू पानी पीने से?
1: देखिए, नींबू एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उसको आप ज्यादा सेवन ना करें, इससे बेटर है कि नॉन एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे लस्सी हो गया, शिकंजी हो गया, या और भी आप अपने घर में भी आप बना सकते हैं नींबू पानी जैसा जो आप बता रहे हैं, वो आप लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप टी कॉफी ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या ये एरिएटेड ड्रिंक जिसमें फिज होता है, ये सब अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि बाहर की जो चीजें होती हैं, चाहे वो पैकेज्ड आइटम्स हों या फिर ओपनली जो हमें मिल रही हैं, खासकर तरल पदार्थ या फिर कटे फल फ्रूट, उनका तो बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वाटर कॉन्टेमिनेशन से
1: परेशानी होती है। एग्जैक्टली, तो आप जितना हो सके पैकेट वाले लें ताकि वो कंटेमिनेशन ना हो। अभी क्या होता है कि हीट रिलेटेड, हीट के साथ साथ जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इस तरह की चीजें जो खुले में बिक रही होती हैं तो उससे लूज मोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और डायरिया, डिसेंट्री और साथ साथ में हेपेटाइटिस के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
0: एक कॉलर है लाइन पर। हेलो,
3: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मैं जितेंद्र, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, यूपी वेस्ट से।
0: जी जितेंद्र जी, स्वागत आपका रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछ सकते हैं आप?
3: हाँ, मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जितेंद्र जी, बोलिए।
3: मेरे 3 सवाल हैं।
0: पहला सवाल
3: मेरा ये है, जैसे किसी व्यक्ति को लू लगती है
0: जी,
3: या प्लेट लिस्ट डाउन हो चुकी है, यो बोलते हैं कि रसगुल्ले खिलाओ, या पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए?
1: जी जी,
0: क्या बात है।
3: दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कीवी का फल बोलते हैं
0: जी,
3: या बकरी का दूध या पपीते के पत्ते, ऐसी लिक्विड पेशेंट को देना चाहिए? तीसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक कॉफी या नहीं?
0: आप कार्यक्रम नहीं सुन रहे जितेंद्र जी, अभी पिछले कॉलर ने यही सवाल पूछा था जो आपका तीसरा सवाल है, फिर भी डॉक्टर साहब दोहरा देंगे आपके लिए, अब आप उनकी बात सुने।
1: हाँ सुनिए, देखिए अगर लू लग गई है और मरीज जो है आपके होश हवास में नहीं है, तो आप उसको कतई कुछ भी मुंह से ना डालें, अगर वो, क्योंकि वो पी नहीं पाएगा और आप हानि करेंगे ज़्यादा लाभ करने से बजाय, आप ज़्यादा हानि करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर होश हवास में नहीं है, अगर तो वो होश में है और पी सकता है चीजें, तो उसको आप नींबू पानी और पानी एक दीजिए, पहले तो उसको शेड में ले जाएं, धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से दूर लेके जाएं, और उसको तरल पदार्थ दीजिए। इस तरह की चीजें जैसे आपने बताया कि रसगुल्ला देना या एरिएटेड ड्रिंक्स है, ये सब अवॉइड करेंगे। आप नॉर्मल पानी दीजिए, और ORS का ड्रिंक दे सकते हैं आप, कोकोनट वाटर दे सकते हैं आप, शिकंजी दे सकते हैं, या लस्सी भी दे सकते हैं उसमें, लेकिन नमक का थोड़ा सा मिला के, या जो आजकल वो कहते हैं है कि नमक वाली लस्सी होती है जो छाछ कहते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसको, क्योंकि देखिए आप स्वेटिंग में क्या होता है, जो पसीने निकलते हैं उसमें खूब सारा नमक आपका लॉस होता है, तो नमक का रेप्लेनिश करना यानी उसको पूर्ति करना वो बहुत जरूरी है, तो नमक आप जरूर उनको दें पानी के साथ साथ। और ज्यादातर लू में क्या होता है, अगर लू की बात करें तो वो होश हवास में नहीं होता, ऐसे कंडीशन में उनको कुछ भी मुंह से देना, क्योंकि वो सीधा लंग्स में जाएगा, आप वो उसको फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें ऐसे कंडीशन में उनको हम इंट्रावीनस यानी कि नसों के जरिए पानी चढ़ाते हैं, ऐसे में मुंह से उनको देना हानिकारक हो सकता है।
0: और ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी को परेशानी हुई और हम उनके मुंह में कुछ ना कुछ मीठा या कोई और खाने का पदार्थ डालने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने रसगुल्लों की बात की
1: जी।
0: तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर संजय हमें यही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या गर्मियों में बहुत देखी जाती है कि आंखों में बहुत जलन होती है, कई बार पानी आता है और आंखों में एक लालिमा सी छा जाती है, और ऐसा ही सवाल हमें पूछ रहे हैं कौलेश्वर ठाकुर, ग्राम बारियातू, जिला लातेहार, बार झारखंड से, तो इसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बिल्कुल, देखिए आंख जब लाल हो जाती है उसका कारण यही होता है कि जो गर्म गर्म हवा है वो आंखों पे लग रही है और आप

0: के जो ड्राइनेस के वजह से आंखें लाल होती हैं। तो एक्सेसिव ड्राइनेस, क्योंकि जो धूप होता, जो ये जो गर्म हवा होती है, ये काफ़ी जल्दी आपके आंखों को सुखा देगी। तो इसके लिए जैसे कि जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं या बाइक चलाते हैं या पीछे भी बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके कोई चश्मा पहन ले, गॉगल्स पहन ले बड़ा जो, या तो अगर आप के पास कोई भी चश्मा है तो उसको आप पहन लेने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और नहीं भी तो फिर आप अगर जैसे पीछे बैठे हैं तो आप बार बार आप आंखों को ब्लिंक करते रहें, उससे क्या होगा कि एक जो वाटर का जो वो एक लेयर जो होती है वो बार बार उस पर चढ़ती रहेगी, तो उस पर ड्राइनेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप आंखों को उसको ड्राई होने से और रेड होने से बचा सकते हैं। और नहीं तो बीच में अगर आप पीछे बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए आंख भी बंद कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको चक्कर ना आए और आप गिर ना जाए, आप आगे वाले को पकड़ के आप ऐसे भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं।
1: तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम जो भी परेशानियां बढ़ते गर्मियों के साथ हो रही है उससे निजात भी पा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब,
0: जी
1: अब यहाँ पर एक लिसनर है, राजू कुमार हैं आजमगढ़ पलहनी उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि गर्मियों में पैरों में बहुत जलन होती है और शरीर भी काफी गर्म हो जाता है जब ये सोते हैं तो अपने बिस्तर पर पानी डालकर सोते हैं, ये कितना सही है?
0: जी देखिए, ठंडा करने के लिए कई लोग बहुत अलग अलग तरीके का उपाय करते हैं। तो बिस्तर पे पानी डाल के सोना तो ठीक नहीं होगा,
1: जी
0: क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं और लंग्स पे आपका सीधा असर रहेगा। आप इससे अच्छा तो कूलर अगर अफोर्ड कर सकते हैं कूलर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या नीचे आप पानी अगर छोड़ सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि बिस्तर पे आप पानी छोड़ के सोएं, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। और जो पैरों में जलन की बात बताई, उसमें तो देखिए आप ये देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई तो नहीं है। उसके लिए आप देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे भी जलन होता है, तो आप ये देखिए कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से जलन तो नहीं हो रहा है, तो ये रीज़न हो सकते हैं, अन्य रीज़न जो हीट के अलावा भी जिसको हमें
1: जी
0: देखना
1: डॉक्टर
0: चाहिए।
1: साहब। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री के साथ। और आज हम बातें कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत विस्तार से, बहुत तसल्ली से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये जानकारियां हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो फिर कहाँ आप इधर उधर जा रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं रेडियो डॉक्टर के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और साथ ही बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए, और ये सफर यकीन मानिए साथ रहेंगे तो यूं ही हंसते खेलते जरूर कट जाएगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर। इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट क्या होता है। और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। एक मैसेज आया है राजेश भल्ला जी का, ये एडवोकेट हैं, साथ ही ये कंकड़ खेड़ा मेरठ से हैं और कहते हैं कि गर्मियों में हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राहत जो मिलती है जब प्यास लगती है तो ठंडे पानी से ही मिलती है, और ये बात शत प्रतिशत सही है।
2: हाँ जी बिल्कुल, राहत जो मिलती है वो और पीने को अच्छा भी लगता है, प्यास भी बुझती है, तो वो ठंडे पानी से ही। जी बिल्कुल, तो ठंडा पानी पी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है जब आप बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं करनी है कि बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीनी है। तो हम ठंडा पानी पिए, उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जरूर पी सकते हैं ठंडा पानी, है ना। अगर आपको ठंडे पानी से अगर गले में बार बार आपको एलर्जी है, या कुछ लोगों को होती है कि गला खराब हो जाता, तो ऐसे में फिर आपको अवॉइड करना चाहिए ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना।
1: और कई बार टूथ सेंसिटिविटी की भी समस्या हो जाती है जब एकदम से।
2: जी, अगर कोई दिक्कत आ रही है ठंडा पानी पीने से तो आप उसको अवॉइड करें, फिर नॉर्मल टेम्परेचर का।
1: राइट डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है रोहिणी से, इनका नाम है तवाब, और कहते हैं कि 27 साल के हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं और गर्मियों में इनको पेट में गैस की बड़ी समस्या होती है।
2: जी देखिए, गर्मी में क्या होता है कि आप पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। और फिर आपको जैसे सिलाई मशीन पे बैठने का ज़्यादा काम है, तो मेरे ख्याल से आप बीच बीच में एक घंटे में थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा वॉक कर लें, 5 मिनट का ब्रेक दे दें बीच में, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और साथ साथ में आप सैलड्स लें, ज़्यादा फ्रूट्स लें, क्योंकि हम और तरल पदार्थ

0: भी लें, तो ये सब चीज़ों से आपका थोड़ा पेट सही रहेगा और जो पेट की जो समस्या है उससे थोड़ी निजात पा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कहते हैं कि गर्मियों में सुस्ती बहुत होती है और नींद बहुत आती है, तो क्या इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, या फिर हम क्योंकि दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं तो क्या इस वजह से ये होता है कि हम ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं?
0: जी देखिए, जहाँ गर्मी में तो देखिए वैसे ही आदमी थकान महसूस करता है, क्योंकि आपके बॉडी से सॉल्ट की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बीपी लो होने लग जाता है, तो इसके वजह से भी आदमी थकान महसूस करने लग जाता है। जो तो सॉल्ट का मात्रा आप जरूर लेते रहें अगर आप ज़्यादा गर्मी में हैं, अदरवाइज तो गर्मी में अगर आप एसी में हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब खास करके मोनोटोनस जो एक लाइफ होती है ना, जो मोनोटोनस एक ही काम कर करके आदमी थक भी जाता है, तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल थकान जिसको कहते हैं, वैसे फिजिकली थकान नहीं है आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल थकान जो हो जाती है वो हो जाती है। उसमें आप अपने माइंड को बीच बीच में म्यूजिक सुन ले, जैसे आप FM रेनबो पे सुन रहे हैं अभी तो फिर आप अपने दिल को जरूर और मन को तरोताजा कर सकते हैं।
1: थोड़ा ये भी कारण रहता होगा कि गर्मियां हैं तो ज्यादा बाहर आना जाना भी कम हो जाता है, तो
0: एग्जैक्टली
1: इसलिए भी
0: हाँ
1: थोड़े
0: जी
1: सा
0: हाँ
1: आलस महसूस करते होंगे। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, मेरा नाम गोपाल सिंह।
1: गोपाल सिंह जी, स्वागत आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं जी, मैम
1: मुजफ्फरनगर से। जी, सवाल पूछें।
2: जी। हमारा सवाल ये है, हमारे जो है मतलब जो है वो है बासीर, तो इस बासीर के बारे में मतलब हमने इलाज भी बहुत कर लिया लेकिन ये बासीर ठीक नहीं हो पा रही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: जी, डॉक्टर साहब की बात सुनिए।
0: हाँ जी, देखिए बवासीर खास करके जो खूनी वाली बवासीर होता है उसमें,
2: खुलने वाली है जी?
0: खूनी वाली है ना आपके पास, तो इसमें
2: जी।
0: तो आप पहले तो मेडिकल थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो आप डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, फिर आपको इसमें सर्जरी करानी पड़ती है, तो वो सर्जरी से आपको हमेशा के लिए निजात आप इससे पा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी होता है, आप अगर आप अपना तरल पदार्थ ज़्यादा लें और सैलड्स ज़्यादा लें तो भी इससे आपको जो लूज जो टॉयलेट अगर जो लेटरिंग का है आपका वो टाइट ना हो ज़्यादा, उसके लिए आप थोड़ा से अगर सैलड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे और वेजिटेबल्स लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक ये जो स्टूल्स हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत थोड़ा सा कम करेंगे और उसमें हीलिंग में उसको समय मिल जाएगा, तो इस तरह से आप उससे निजात पा सकते हैं। आप एक सर्जन से ज़रूर मिलते रहें बीच बीच में जाके, बहुत छोटा सा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक सर्जरी होती है इसकी, और सर्जरी के बाद इसमें टोटल आपको निजात पा सकते हैं इससे, तो एकमात्र इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही होता है फाइनली।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए भोपाल जी। साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ने वाले थे लेकिन फिलहाल नहीं है, बहरहाल मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैसेजेस की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है। डॉक्टर साहब, अशोक कुमार है मोहम्मदाबाद गाजीपुर से, कहते हैं कि जब नहाने के साथ साथ ना इनको हाथों में बड़ी खुजली होने लगती है और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है, साथ ही ठंडा भी इनको लगता है, तो ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं।
0: जी देखिए, हाथों में अगर खुजली हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कोई डिटर्जेंट या कोई सोप से आपको वो है एलर्जी है, क्योंकि ये नहाने के बाद हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिटर्जेंट या सोप या इसको चेंज करके या डिफरेंट या उसको लेके आप इमोलियंट्स आप लगाइए इसमें, जो इमोलियंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, उससे अगर ठीक हो जाता है, अदरवाइज फिर आप अपने डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलके उसका इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, शुभम शुक्ला जी हैं नई दिल्ली से, कहते हैं कि जब भी ये नहाते हैं तो इनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ब्लड रेड हो जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ ही अगर ये सिर्फ 5 मिनट के लिए भी नहा रहे हैं तो ये समस्या इनको हो जाती है, और ये किसी तरह का फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल अपने चेहरे पर नहीं करते हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है, आपसे मदद चाहते हैं।
0: हाँ जी देखिए, इसमें क्या होता है, पानी का आपको देखना पड़ेगा कि हार्डनेस तो कहीं ज़्यादा नहीं है, TDS अगर बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है ना, कई बार क्या होता है जो नॉर्मली हम लोग जैसे 150, 200, 250, 300 तक भी उसको ले लेते हैं TDS जो होता है, लेकिन कई जगह पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 1000 के आसपास है या उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जब सॉल्ट की कंटेंट पानी में ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वाटर है ना, तो ऐसे हार्ड वाटर जो होता है उसमें फिर आंखों में जलन स्वाभाविक है,

0: ऐसे में फिर आपको एक बार अपना TDS लेवल चेक कराना चाहिए उसका।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कॉलर है लाइन पर, ये हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉलर्स की कमी या बिल्कुल नहीं है, अगले कॉलर के पास चल रहे।
2: हेलो,
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: नमस्कार रघुविंदर जी।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार, सादर प्रणाम।
2: डॉक्टर साहब, इन दिनों मुझे एक दिक्कत हो रही है, वो ये कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरे मुंह बिल्कुल सूखा होता है, बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन एक दो मिनट या पांच मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है, क्या कारण हो सकता है कृपया बताने का कष्ट
0: जी। देखिए, इसमें एक तो कारण यही हो सकता है कि आप अगर रात को मुंह खोल के सोते हैं तो, और मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से बार बार सांस लेने से जो मुंह है, टंग है, ये पूरा ड्राई हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिंस आप ले रहे हो जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिंस होती हैं या और भी अन्य मेडिसिंस होती हैं जिससे कि आपका यूरिन की मात्रा ज्यादा बनती है, जैसे हाइपरटेंशन की या फिर कोई और बीमारी की जो दवाइयां होती हैं तो डायुरेटिक जिसको कहते हैं, वो उस दवा लेने से भी क्या होता है कि आपको आपके जो बॉडी के जो सॉल्ट कंटेंट है और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से भी ये इस तरह से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: ये BPO शुगर की दवाई जो मैं लेता हूँ, ये खाना खाने के पहले ले ली जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है?
0: हाँ, देखिए वो मैंने जैसे बताया ना, अगर आप BP शुगर की दवा ले रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार आप देखिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खाने से पहले लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं खाने के बाद लेनी होती हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलके आप अच्छी तरह समझ लें कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, तो उससे ये जरूर समस्या, और इसका भी आपको वो बता देंगे। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा पानी पीते रहें, रात में पानी का गिलास अपने पास ही रखें, है ना, तो इस तरह से आपको इससे निजात मिल सकता है, और एक करवट लेके सोएंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। आप
1: अगले मैसेज की ओर आगे बढ़े डॉक्टर साहब। रोहित खेड़ा जी हैं दिल्ली 9 से, बहुत सी शायरी करते हैं, कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लू उन लोगों को लगती है जो अंदर से कमजोर होते हैं, और अगर ऐसा है तो हम ऐसा क्या करें अपने शरीर के साथ में जिससे हमें लू जैसी समस्या हो ही ना।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि हम अंदर से कमजोर का मतलब मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं
1: जी,
0: जैसे कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारियां हैं, लिवर की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, और आपका कहीं ना कहीं वैसे ही रिजर्व कम है, और आप कुछ मेडिकेशंस ऐसे ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिंस ऐसी होती हैं, लिवर की भी होती हैं, लंग्स की जो होती है मेडिसिन, जिसको आपको ना वो डिहाइड्रेट करते हैं डॉक्टर्स, तो ऐसे में आप पहले से ही डिहाइड्रेटेड हैं और ऊपर से फिर आपको लू लग जाए तो ये दोहरा अटैक हो जाता है आपके ऊपर, और इसमें फिर आपकी बड़ी जल्दी ही सामान्य से कम समय में ही आप लू आपको लग जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, तो इसमें आपको पानी पीते रहें, और नमक की जो ज्यादा लेना है उसमें यह भी दिक्कत रहता है कि आपको बोला जाता है कि नमक का परहेज करना है आपको, साथ साथ में पानी का भी परहेज करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे या किडनी की भी प्रॉब्लम है, तो उनको ये ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे जो बहुत ओल्ड हैं या बहुत यंग बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या जो लोग बाहर काम करने के लिए विवश हैं, वेंडर्स हैं जो ठेले लगाते हैं, या जो डेली वेज वर्कर हैं उनको तो काम करना ही पड़ेगा, या फिर पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में है, उनको बाहर काम करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए तो यही रहेगा कि जो 12 और 2 बजे के बीच का जो समय है, जो सबसे ज्यादा धूप का समय होता है, उसमें आप शेड में रहें और पानी बीच बीच में लेते रहें, नमक का सेवन भी करते रहें, और ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट ना करें इन ये 2-3 घंटे के बीच में, तो आप इनसे बच सकते हैं लू
1: सर। जैसे आपने कहा 12 से 2 का समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो सन के एक्सपोजर में है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए छाया में नहीं रह सकते तो क्या जैसे कैप लगा लिया या सर को ढक लिया
0: जी,
1: इस तरीके से फायदेमंद?
0: इसमें आपको देखिए प्रॉपर क्लोदिंग भी बहुत जरूरी है, जैसे आपने बताया कि आप कैप की जगह हैट ले लें, जो हैट काफी बड़ा होता है, तो हैट ले लें, और साथ में आप अगर सनस्क्रीन का अफोर्ड कर सकते हैं तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, और साथ में पानी पीते रहें, और कपड़े आपके प्रॉपर होने चाहिए, लूज फिटिंग होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपका जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट नहीं होता है, तो उसके लिए कॉटन कपड़े पहने और ब्राइट कलर्स वाले कपड़े पहने, सफेद कपड़े, डार्क कपड़े पहनने से फिर आपका वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो डार्क जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, तो लाइट रंग के कपड़े पहने, उससे हीट रिफ्लेक्ट

0: इफेक्ट होता है, और जैसे मैंने बताया कि पानी का सेवन करते रहें और नमक की पूर्ति भी आप लेते रहें नमक का।
1: श्रोताओं, डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी बातें यहां पर हो रही हैं गर्मियों से बचने के लिए और हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हो जाती हैं, जो तकलीफें समस्याएं हमें हो जाती हैं, उनके बारे में आप जानकारी नोट कर रहे हैं और जो जो सजेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो भी करेंगे। ये कार्यक्रम जारी रहेगा, बस कुछ ही देर में लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रेडियो डॉक्टर में, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मेरा नाम है नेहा और आज बातें हो रही हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में डॉक्टर संजय कुमार के साथ। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास बहुत देर से आया हुआ है, इनका नाम ढूंढने का प्रयास कर रही हूं, मिलेगा तो बताऊंगी। कहती है कि बच्चों को हम लू से कैसे बचा सकते हैं, और क्योंकि इनका जो बेटा है वो शाम के स्कूल में जाता है, यानी कि दोपहर वाला जो स्कूल होता है जो शाम को खत्म होता है, तो दोपहर में धूप तो रहती है तो बच्चे के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जानना चाहती हैं।
0: जी देखिए, जो मैंने बताया कि ज़्यादातर हो सके तो आप शेड में रहें, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है जैसे आपके केस में, तो आप छाता लेके, जैसे अभी बताया हमने, कैप या हैट इस तरह के, या सनस्क्रीन लगा के और बच्चे को हाइड्रेट करके आप ले जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छाते में रहेंगे तो भी आप डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहेंगे। और इतना, और खास करके बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं, वो सब ना करें। एक्सरसाइज करने से भी आपका इंटरनल हीट जनरेशन होता है, तो बच्चों को ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। धूप में ज़्यादा खेले नहीं, कूदे नहीं, साइकिलिंग ना करें, इस तरह की चीज़ें करने से और ज़्यादा वो दिक्कतें आ सकती हैं, और आपका स्वेटिंग ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, सॉल्ट लॉस होगा, तो इस तरह की चीज़ें ना करते हुए आप बच्चे को सुरक्षित आप वहाँ पे अपने स्कूल तक ले जा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये मैसेज था गौरव जी का, ये हमें मैसेज कर रहे हैं सीतापुरी से, तो इन्होंने ये सवाल पूछा था। अब जैसे कि आपने बच्चों के बारे में तो बात की कि उन्हें एक्सरसाइज वगैरह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में जो फिटनेस एंथुजियास्ट हमारे होते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या गर्मी में उन्हें एक्सरसाइज या हैवी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए?
0: जी, एथलीट्स जो होते हैं या जो प्रोफेशनल वो हैं, उनके लिए तो खास करके उनको तो करना ही है, तो वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, आजकल जो लाइट है आप देखेंगे कि 5 बजे हो जाता है, तो आप 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, सबसे ठंडा जो समय होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, तो आप सुबह सुबह का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर शाम को आप शाम को जब धूप चले जाती है उसके बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, कि जैसे कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना है आपको, और तरल पदार्थ का सेवन करते रहना है, सॉल्ट की मात्रा पूरी लेनी है, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत उसका उसका आपको दिखाना है डॉक्टर्स को।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने सॉल्ट के बारे में बात की तो मुझे याद आया एक मैसेज हमारे पास आया था, हालांकि वो मैसेज कहीं खो गया है बाकी मैसेजेस में, लेकिन उसमें ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम गर्मियों में सॉल्ट खाते रहेंगे तो क्या उससे हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा?
0: जी जी, बिल्कुल सही है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन आप देखिए नियमित तौर से आपको लेना है, स्पेशली जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज अगर आपको स्वेटिंग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, घर में ही आपको रहना है, उसके हिसाब से आपको सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर COPD है, जैसे उसमें हम बल्कि पेशेंट को हम डिहाइड्रेट करते हैं, उनका जो वाटर लेवल है, सॉल्ट लेवल है, हम लोग दवाइयों से कम करते हैं, ऐसे में उनको हिदायत दी जाती है कि सॉल्ट नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है, तो ऐसे में फिर अगर वो ज़्यादा सॉल्ट लेने लग जाएंगे तो उनकी जो प्राइमरी जो डिजीज़ है वो फ्लेयर अप हो जाएगी, वो ज़्यादा तकलीफ देने लग जाएगी, रैदर देन के हीट की प्रॉब्लम से वो, तो इसमें भी आपको जो खास करके ये जो बीमारी के लोग हैं इनको अपने डॉक्टर से मिलके फिर पूछना चाहिए कि कितना सॉल्ट लेना चाहिए।
1: और हम यहाँ नॉर्मल रेगुलर टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जो व्हाइट होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है,
0: बिल्कुल,
1: या फिर कोई स्पेशल हमें
0: नॉर्मल
1: सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। इस बीच हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

गीत सुने आप अलका याग्निक की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, फिल्म का नाम है तमाशा। इस गाने का आनंद लेते लेते अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है कार्यक्रम में, आप चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहें कि आपको करना ही चाहिए। हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में बातें हो रही हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: बेशक हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से तो हम इस बात की हमेशा पुष्टि करते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा हमने तो उठा लिया है आकाशवाणी रेनबो पर। और आज मैं हूं आपके साथ नेहा, साथ है मेरे डॉक्टर संजय कुमार, बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो विस्तार से जानकारी दी है उसके लिए थैंक यू आपकी ओर आया है। मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, आपको कहते हैं कि इतनी उम्दा जानकारी और गर्मियों के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं, बड़े सुखचैन से हम आराम से रह सके, ये कह रहे हैं आपके लिए।
1: धन्यवाद मनोहरलाल जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और इसके साथ साथ एक कॉलर अब बड़ी देर से लाइन पर है, इनको मैं लेना चाहूंगी लाइन। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: अनूप बोल रहे हैं झारखंड से।
0: अनूप जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछें सवाल।
2: ये पानी जी, वाटर इंटेक के बारे में बताएं, कितना पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन ना हो।
0: अच्छा,
2: हाइड्रेटेड रहे।
0: जी जी डॉक्टर साहब, सुने आपने।
1: जी देखिए, इसमें जो सबके लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं या धूप में ही काम करते हैं उनको 8-10 गिलास से भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो लोग घर में हैं और एसी कमरों में रहते हैं उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग हिसाब से आपको जरूरत होती है। तो थर्स्ट जो होता है, जो थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, यानी जो प्यास लगने की जो प्रक्रिया है, अगर आपको प्यास लग रही है आपको बहुत ज्यादा, तो आपको डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा है। तो इसमें आप जहां आप एक गिलास पीते हैं वहां 2 गिलास पीना चाहिए, और कहा गया है कि कम से कम 8 गिलास तो पानी गर्मी में पीना ही सभी आदमी को, 8 आवर्स। लेकिन फिर अब उसमें ये हो जाता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको वैसे ही सूजन पूरे बॉडी में है और वो धूप में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको सॉल्ट और वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला गया है। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये लोग थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, क्योंकि ज्यादा वाटर लोड करने से उनके हार्ट पे जोर पड़ेगा, उनका हार्ट वैसे ही वीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समेटने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है, तो ऐसे में चलते चलते हमारे लिसनर्स को आप इन गर्मियों में अपने आप को बिल्कुल तरोताजा रखने के लिए और फिट रहने के लिए क्या टिप्स एंड सजेशंस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: देखिए, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम बहुत बोल चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या नहीं करना चाहिए वो है, हमें ज़्यादा चाय और कॉफ़ी और इस एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली डार्क क्लोथ्स जो होते हैं, एक्सरसाइज हमें धूप में नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादातर हम काम 12 बजे से पहले कर लें या 2 बजे 3 बजे के बाद करें तो हमें धूप से बचे रहेंगे। और जब भी हमें कोई ऐसा सिम्टम्स लगे जैसे हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, घफलियत होने लग जाए, स्वेटिंग और इस तरह से जो चक्कर आना या हेडेक होने लग जाए, तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर से मिलके इसको इलाज कराना चाहिए।
0: यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अब अगर हमारे घर मेहमान आए इन गर्मियों में तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने की बजाय घर का बना ठंडा नींबू पानी देना चाहिए, ताकि उनकी सेहत में कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू नेहा, थैंक यू।
0: सुश्रोताओं, ये था आज का रेडियो डॉक्टर, हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर संजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी का आप भरपूर फायदा उठाएंगे, और इस बात की पुष्टि आप ऑलरेडी कर रहे हैं मैसेजेस में। रोहित जी का भी मैसेज आ गया है कि अब तो लू नहीं लगेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारियां जो हमारे साथ साझा कर दी है। बस आपके इसी तरह के जो प्यार भरे, हौसला अफजाई करने वाले मैसेजेस होते हैं ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और खून तो मेरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा ही आप भी करें, अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिएगा। और साथ ही रेडियो डॉक्टर के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर आंखों पर healthairdelhi@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये है इस कार्यक्रम का अंत, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के

0: देश अपने संबंधों का विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वियतनाम की राष्ट्रपति तो लाम की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और अटूट मित्रता को दर्शाती है। श्री पुरी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का परिचायक है। श्री लाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरलम यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई वाले स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। इससे वे ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। प्रत्येक चश्मे की कीमत लगभग 35,000 रुपए है। इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर और निफ्टी 298 अंक बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है कहानी हर लड़की की। और ये टाइटल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हर लड़की की कहानी में एक पन्ना ऐसा जरूर होता है जब ऐसा लगता है कि अब आगे क्या। लेकिन उसी पन्ने के बाद उसकी कहानी लेती है एक खूबसूरत मोड़।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

दोस्तों, 17 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को बार बार निहार रही थी, जिसमें उसको मिले थे मात्र 55%। इतने कम अंक आने की वजह से घर में सब उससे नाराज थे और घर वालों के ताने सुन सुनकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रिया सोच रही थी, अब क्या करूं? एक तरफ घर वाले नाराज थे और दूसरी तरफ उसकी सहेलियां उससे आगे निकल रही थी। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी फेवरेट संजीता मैम का फोन आ गया। बातों ही बातों में संजीता मैम ने रिया को समझाया कि ये मार्कशीट तुम्हारी पूरी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तुम ड्राइंग कितनी अच्छी करती हो वो भी तो देखो। बस यही बात रिया के दिल को छू गई। उसने हार नहीं मानी और 12वीं में आर्ट्स लेकर खूब मेहनत की और आज रिया निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग कर रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर उस दिन रिया 55% वाले दिन रुक जाती तो ये वाला दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, कम अंक आना, घर वालों की डांट, ब्रेकअप, ये सब जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ कॉमा है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आपकी क्लास में भी कोई रिया होगी और शायद आप खुद रिया हो, तो आज आप अपने से वादा कीजिए कि एक बुरा दिन बुरी जिंदगी नहीं होता। और हाँ, आप किसी की बेटी और बहन बनने से पहले इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप खुद अपनी कहानी की

जी हाँ, अगर ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, तो जिंदगी

0: में हम कभी भी निराश नहीं होंगे, जिंदगी को खत्म करने की कभी भी नहीं सोचेंगे। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से और जानते हैं कि क्यों लड़कियां और महिलाएं जल्दी जिंदगी में हार मान लेती हैं। विनीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि छोटी सी छोटी परेशानियां आने से लड़कियां या महिलाएं विचलित होने लगती हैं और जिंदगी को ही खत्म करने के विचार उनके मन में आने लगते हैं,
1: क्योंकि वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, शारीरिक रीति से कमजोर रहती हैं, मानसिक रीति से कमजोर रहती हैं। और एक स्त्री के, एक लड़की के जिंदगी में चार ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो डिप्रेशन की प्रति काफी ज्यादा वो वल्नरेबल हो जाती है
0: जी।
1: तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो गया। तो यही कारण है कि अधिकतर देखा जाता है कि लड़कियां ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं, और विशेषकर हमारे देश में तो बहुत जल्दी, जहां पर उनको बचपन से ही, जन्म से ही बोझ समझा जाता है और उनको बोला जाता है कि लड़की पैदा हुई है और लड़का क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके की हीन भावना जब लड़की उसके साथ बड़ी होती है तो कोई भी तूफान उसकी जिंदगी में आता है, कोई भी बात होती है बहुत नेगेटिव की तरफ, नकारात्मक की तरफ, तो वो बहुत जल्दी प्रोन होती है टुवर्ड्स डिप्रेशन।
0: मतलब एग्जाम में रिया की तरह कम मार्क्स आते हैं, या मम्मी पापा ने घर में जोरदार डांट लगा दी, या प्यार में धोखा मिल गया।
1: हाँ बिल्कुल, और बहुत इनका दिल जो होता है अधिकतर लड़कियों का, आपको पता है, बहुत कोमल रहता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, रोती भी जल्दी है, डिप्रेशन भी जल्दी होता है, मूड स्विंग भी जल्दी होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी आप रीजन बता रहे हैं वो रीजन

0: अच्छा विनीता जी, एक बात बताइए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्या जिंदगी को समाप्त करके हालात बदल जाते हैं?
1: नहीं, हालात तो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, बल्कि मैं सोचती हूँ कि जो आत्महत्या करता है वो अपने पीछे छूटे हुए परिवार के हालातों को और भी ज्यादा खराब करके छोड़ देता है। और मैं नहीं सोचती कि आत्महत्या हमारी परेशानियों का सलूशन है। आप दुनिया में देखिए, आप किसी की भी तरफ नजर उठा के देखिए, आप किसी को भी नहीं पाएंगे कि जो ऐसा कह सके कि वो परेशानियों से मुक्त है। सबके पास परेशानियां हैं। आप सोचते हैं अमीर लोगों के पास परेशानियां नहीं है, ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमीर लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा उनके मैरिजेस ब्रेक डाउन होते हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। तो सबको परेशानियां हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हमारी ही परेशानी है और हमसे ज्यादा परेशान कोई इस दुनिया में है ही नहीं, तो ये हम गलत सोचते हैं।
0: विनीता जी, जब सबको ये पता है कि जिंदगी खत्म करने से समाधान नहीं निकलता, तो ऐसा कदम उठाते क्यों हैं?
1: बिल्कुल, मैं समझती हूँ, मैं इस कार्यक्रम के द्वारा श्रोताओं को यही बताना चाहती हूँ कि जो सुसाइड होता है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो हमारी परेशानियों का इलाज नहीं है। सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का, उदासीनता का सामना करना पड़ता है। हम बहुत कठोर परिस्थितियों में जीवन में रहते हैं और सबकी जिंदगियों में तूफान आते हैं, लेकिन हमको इस बात को याद रखना है कि पहली चीज, तूफान हमेशा नहीं आते, तूफान आते हैं और चले जाते हैं। और हमको ईश्वर ने एक ऐसी क्षमता दे रखी है, और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर एक इमोशनल कोशंट है जिससे कि हम उस मुसीबत से अपने आप को उभार सकते हैं। तो आत्महत्या के बारे में ना सोचते हुए हम अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली सोचें कि हमारे पास उतना कितना है जो कि बहुतों के पास नहीं है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एक सकारात्मक एटीट्यूड रखें, और अगर ज्यादा ही दुख तकलीफ है तो किसी से बात करें, क्योंकि बात करने से भी हमारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। उसको बोलते हैं वेंटिंग आउट। अगर हमने अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करी, दुख को शेयर किया, तो वो हल्का हो जाता है। और फिर हमें आप फोन करें, आपको पता है हमारे कार्यक्रम में हमारे काउंसलर्स हैं जो फोन रिसीव करते हैं, उनसे बात करें, और बात करने से बहुत कुछ समस्याओं का उपचार मिलकर निकल सकता है। लेकिन आत्महत्या, वो तो बिल्कुल भी सही सॉल्यूशन नहीं।
2: अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना?
3: रोज रोज की वही चिक चिक, मैं तो परेशान हो गई।
2: तो बात करो और बैठकर मामला सुलझाओ।
3: कुछ नहीं होगा।
2: किसने कहा कुछ नहीं होगा?
3: मुझे मालूम है।
2: अच्छा एक बात बता, क्या तूने इस विषय पर बात की?
3: नहीं।
2: देखा, हम लड़कियों में यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, बात करेंगी नहीं और पता नहीं क्या क्या सोच लेंगी। अरे बात करने से तो हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाता है।
3: तू ठीक कह रही है।
2: अच्छा ज्यादा मत सोच, क्योंकि ज्यादा सोचने से नकारात्मक विचार ज्यादा मन में आते हैं। दिल की है ना, हर बात कहना सीखो।
0: जी हाँ, अगर कभी आपका मन भारी लगे तो चुप मत रहिएगा। मम्मी पापा, दीदी, टीचर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप इस संसार के लिए बहुत जरूरी

0: आप हमारे काउंसलर को फोन या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो बिना संकोच के कीजिए बात और पाइए समाधान। और हाँ, अगर आप दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच जो एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होता है रेनबो का, वो प्रोग्राम नाम है उसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। और वेंसडे का ये स्पेशल प्रोग्राम हर बुधवार की शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपके लिए लेकर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, उनके टैलेंट को और वहाँ के गलियारों की महक को। जी, कैंपस की महक जो है ना, भूले नहीं भुलाई जाती है। देखिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, साथ साथ मुझे भी अपने कॉलेज के दिन जो है वो लगातार याद आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, नॉस्टैल्जिया तो फील होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो कॉलेज है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपके कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है। और अगर आप कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, देन ऑब्वियसली आप जानना चाहते हैं कि कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो होती है ना, वो एक ऐसा हिस्सा होता है जिंदगी का जिसे हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। एंड ऑब्वियसली जो सब चीज़ें हम वहाँ पर सीखते हैं, जो दोस्त हम वहाँ पर बनाते हैं, जो लेसन सीखे जाते हैं, वो भी सारी ज़िंदगी साथ साथ चलते हैं। तो जी, अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं स्वाति आप सभी के साथ। और आज हम जा रहे हैं हमारी सहयोगी माला नेगी के साथ राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज। और रामजस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 फाउंडिंग कॉलेजेस में से एक है, वहां पर जब हमारी सहयोगी माला नेगी जो है पहुंची, तो वहां पे उन्हें मिला टैलेंट का बहुत सारा खजाना। ऑब्वियसली सारा का सारा हम यहां तक ट्रांसपोर्ट जो है ना आप तक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ चीजें चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये बहुत ही आज का बेहतरीन, मुझे कहना चाहिए कि इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और माला को तो हुआ ही, उसके साथ साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं रामजस कॉलेज की वाइब्स को। आप सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और करते हैं बातचीत वहां के स्टूडेंट से।
2: हाय, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में और मेरे साथ हैं यहाँ की नवरस सोसाइटी के मेंबर्स, जो कि यहाँ की डांस सोसाइटी है। बेहद ही उम्दा कलाकार हैं और आकाशवाणी भी हमेशा से उम्दा कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता आया है जिसके जरिए उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूरे दुनिया के सामने किया। जानना चाहेंगे कि 90 साल पुराना हमारा इतिहास है, इस साल हमें 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी को। आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, आकाशवाणी उससे भी पहले का है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में आकाशवाणी की एंट्री कब और कैसे हुई वो जानना चाहेंगे।
3: मेरा नाम विष्णु प्रिया है, मैं नवरस सोसाइटी से हूँ, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स रामजस। तो हमारे लाइफ में आई थिंक कि जब कार में ये फीचर नहीं हुआ करता था कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, तब लोग हमेशा FM ही चलाते थे, रेडियो ही चलाते थे गाना सुनने के लिए, लॉन्ग जर्नीज में जब जाते थे तब। तो वैसे मैं कार में ही रेडियो को सुनी हूँ।
4: जी, मेरा नाम श्रेया वर्मा है और मैं रामजस कॉलेज की 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ और नवरस सोसाइटी के मेम्बर हूँ। और मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन रहा था कि मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से रेडियो के बारे में पता चला। जब छोटे थे हम और ट्रिप्स पर जाते थे तो गाने सुनते थे पुराने, और फिर मम्मा को भी लाइक कथक में इंटरेस्ट था, तो उस वजह से मुझे भी गाने में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और सारा ये कल्चर, इन सब के बारे में पता चला। तो ऐसे ही मेरा भी इंटरेस्ट आया टू लर्न कथक एंड नो मोर अबाउट इट। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, मम्मा लोग सुनते थे और मम्मा को इंटरेस्ट था थोड़ा।
5: नमस्कार, हमारा नाम आदर्श उइके है और हम रामजस कॉलेज के 3rd ईयर BSc जूलॉजी ऑनर्स के छात्र हैं। और हमारी जिंदगी में आकाशवाणी की जो एंट्री हुई वो एक्चुअली जब हमने स्कूलिंग चालू की थी तब हो गई थी। सुबह सुबह हमारे यहाँ रामचरितमानस सुनने का बहुत ही मतलब चलन है।
2: अच्छा
5: जी, और उसी के साथ साथ शाम को जो आपकी फरमाइश हो रही थी। सो ये सब को जो सुनने का चलन है धीरे धीरे हमारी जिंदगी में और गहरा होते हो रहा और अभी भी है।
2: क्या बात।
5: सो ऐसी हमारी एंट्री हुई आकाशवाणी।
6: जी, मेरा नाम अक्षत रस्तोगी है और मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए आकाशवाणी की एंट्री थ्रू रेडियो हुई थी। जब मेरे पास एक पहले कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे तो उसमें ज़्यादा फीचर्स भी नहीं होते थे, कोई भी तरह के SD कार्ड भी नहीं हुआ करते थे तब बैक दिन। तो मैं शाम को निकल जाया करता था छत पे ऐसे ही रेडियो सुनने, और मुझे याद है कि अमूमन ज़्यादातर रेडियो स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं आकाशवाणी को सुनता था क्योंकि सिर्फ गाने और संगीत के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और अभी जो मेरा इंटरेस्ट है शायद म्यूज़िक में, उसका एक बहुत बड़ा कारण आकाशवाणी है। मुझे पहली बार राग के बारे में पता चला था तो आकाशवाणी के थ्रू। एक भजन था प्यारो नंदलाल जो रागनंद में, रागनंद पर आधारित है।
2: हाँ।
6: तो मेरा जो अभी जो भी इंटरेस्ट है, आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल है, जो संगीत में हो चाहे रागों में हो, राग विज्ञान में हो, वो थ्रू आकाशवाणी।
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और हमें भी बहुत खुशी है कि हम अपने 90 साल के इस सेलिब्रेशन में आज रामजस कॉलेज को इंक्लूड करते हुए इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा बड़ा और ग्रैंड बना रहे हैं। थैंक यू सो मच इस बेहतरीन इंटरेक्शन के लिए।

चंदन बदन कुम कुम केसर चंदन बदन कुम कुम केसर उड़ावत भर भर भर गुलाल।

0: बहुत ही सोलफुल परफॉर्मेंस रामजस कॉलेज में आज के दिन आना, सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिन ऐसा फलीभूत हुआ है कि अभी और एक हफ्ता जो है आपका ये म्यूजिक मेरे माइंड में घूमेगा, घूमता रहेगा और मुझे ऐसी सोलफुल जर्नी की तरफ लेकर जाएगा जिसमें मुझे बहुत मजा आएगा। अब आप सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं और आपकी इस कल्चरल सोसाइटी के बारे में जानते हैं।
1: मनस्वी, फर्स्ट ईयर हूँ इको ऑनर्स के और म्यूजिक सोसाइटी का नाम है बैकबीट।
2: मेरा नाम अमन है और मेरी भी सोसाइटी का नाम बैकबीट है।
3: मेरा नाम कौशिकी है और मैं फर्स्ट ईयर की पॉल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ।
4: मेरा नाम अंशुता है और मैं भी पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर।
5: मेरा नाम अद्वैत है।
6: हाय, मेरा नाम अक्षत रस्तोगी है और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ फिजिक्स।
7: नमस्ते, मेरा नाम भूमिका सिन्हा है, मैं सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट हूँ।
8: हेलो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है और मैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
9: वाकई में इन परफॉर्मेंसेस की जो छाप है ना, वो काफ़ी दिनों तक जो है हमारे दिल और दिमाग पर रहेगी। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहाँ के स्टूडेंट से की उन्होंने मुलाकात। आप सुन रहे हैं हमारा ये बहुत ही खास प्रोग्राम, नाम है इसका अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग। बुधवार की शाम का ये स्पेशल शो जहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं हर बार एक नए कॉलेज से, हर बार वहाँ के स्टूडेंट से। और जहाँ तक रामजस कॉलेज की छाप की बात है, भाई क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हर फील्ड में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे ये प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप। और जहां पर रामजस कॉलेज की बात आती है तो भाई आकाशवाणी के साथ उनका कनेक्शन तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉलीवुड से भी उनका कनेक्शन रहा है। और आज की मेरी प्लेलिस्ट जो है वो उन्हीं गानों पर आधारित है जिन फिल्म्स की शूटिंग जो है वो रामजस कॉलेज में हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी हॉटस्पॉट है बॉलीवुड के फिल्म्स की शूटिंग के लिए और उन्हीं में से कुछ गाने मैं चुनकर लाई हूँ आपके लिए स्पेसिफिकली फ्रॉम रामजस कॉलेज। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जहां हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। और आज हम पहुंचे हैं कहां पे, रामजस कॉलेज। हमारी सहयोगी माला नेगी ने की वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत, वहां की बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें, इन सब में से चुनकर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अंश, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है ना सिर्फ थोड़े से ही कहना चाहिए कि समय की इजाज़त देता है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो बेस्ट है वो पहुंचाया जाए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हमारा ये प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग आप सुन रहे हैं। रामजस कॉलेज, रामजस कॉलेज जहां का मोटो है ज्ञानात परतरम नाही, नॉलेज हैज नो कंपैरिजन, यानी कि ज्ञान की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती है। और वाकई में ज्ञान किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एकेडमिक्स की बात करें, चाहे वो टैलेंट की बात करें, आप आर्ट की बात करें, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल कहना चाहिए कि नॉलेज की बात करें, सब चीज़ों की जो ज्ञान होता है, सब चीज़ों की जो नॉलेज होती है, उसकी बराबरी वाकई में किसी से नहीं की जा सकती, और यही मानना है इस कॉलेज का। आइए जानते हैं कि माला नेगी ने आगे किन स्टूडेंट से बातचीत।

0: रामजस कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में, और अभी मेरे साथ हैं कॉलेज की एक स्टूडेंट जो कि कुछ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाली हैं। तो पहले यानी बुझाएंगे, इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम?
1: मेरा नाम मनस्वी है।
0: मनस्वी, क्या परफॉर्म करने वाले हो आज?
1: मैं एक किरवानी में भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ, मिलता जा।
0: क्या बात है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट फॉर यू।
1: थैंक यू।

0: अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में और मेरे साथ हैं अमन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ठुमरी गाने वाले हैं। आइए इनकी ठुमरी को मिलकर एंजॉय करते हैं।
1: हो बरसन लागी सावन बूंदिया राजा तोरे बिन लागी।

दिया राजा तुर बिन लागे ना मोरा जिया।

0: लागे सावन बूंदिया राजा तोर बिन लागे ना हा मोरा जिया।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे साथ है रामजस कॉलेज की ECA से मोहम्मद इस्माइल, और कुछ बहुत ही बेहतरीन आज हमारे लिए खास तौर पर लेकर आए हैं।

हाय, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में अक्षत के साथ, ECA के मेंबर हैं और एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हमारे बीच में है। आइए इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं।

इतनी खूबसूरती से सुरों को निभा रहे थे जो वो हैं रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। रामजस कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और वहां के स्टूडेंट्स से, वहां के टीचर से, वहां के प्रिंसिपल से की उन्होंने बातचीत। और इस कॉलेज में ना नए और पुराने का बहुत बेहतरीन संगम है, क्योंकि 100 साल जो है वो कॉलेज को पूरे हो चुके हैं। 2017 में कॉलेज ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। यहाँ तक कि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आपको कॉलोनियल एरा के साथ साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों का मेल जो है वो देखने को मिलता है। वहीं से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये प्रोग्राम। और अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ एक और गाना उस फिल्म से जिसकी शूटिंग हुई है, कुछ अंश जो है उसका शूट हुआ है इसी कॉलेज में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और रामजस कॉलेज की सैर कर रहे हैं हम हमारे सहयोगी माला नेगी के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन में आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं रामजस कॉलेज और रामजस कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने की वहां के प्रिंसिपल से बातचीत, आइए जानते हैं।
1: तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: धन्यवाद
1: सर। रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुरुआती 3 कॉलेजेस में से एक है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी लेगेसी है। ऐसे में कॉलेज हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें फेस करता है, नई नई अचीवमेंट्स लेता है। जानना चाहेंगे कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो आज भी रामजस कॉलेज को लेकर आपके जहन में आती है और बिल्कुल लेटेस्ट लगती हैं।
2: देखिए, ये रामजस महाविद्यालय 1917 में शुरू हुआ। उस वक्त जो दिल्ली का स्वरूप था वो तो जिसे हम वॉल सिटी कहते हैं वहाँ था, जिसे दिल्ली 6 भी लोग कुछ कहते हैं, उसके एक कूचे में ये स्टार्ट हुआ। जो हमारे कॉलेज के फाउंडर हैं लाला केदारनाथ जी, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन 1916 में शुरू की। 1916 में उन्होंने एक स्कूल शुरू किया और 1917 में उन्होंने एक रेजिडेंशियल कॉलेज की, और यहाँ कॉलेज के लिए मैं उसको वर्ड यूज़ करूँगा, डिग्री कॉलेज शुरू किया
1: जी।
2: और तब ये शुरुआत बहुत छोटे रूप में हुई। उसके बाद में ये दिल्ली 6 से निकल के दिल्ली के एक दूसरे से जो आज के दिन में अनंत पर्वत कहा जाता है वहाँ गया, जो जिसका नाम पहले

0: से रोड़ी बनाते थे, और उसके बाद 1952 से ये कॉलेज इस प्रमिसेज में आया हुआ है। उस भी वक्त ये पूरा रेजिडेंशियल, पूरा तो नहीं, हाँ रेजिडेंशियल कॉलेज था। आप इस कॉलेज में घुसिए, बहुत अलग तरह की शांति, अलग तरह का सुकून है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग में ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत अच्छी जगह पे एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ इंस्टीट्यूशन की पहचान होती है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे सुखद इतिहास इस कॉलेज का रहा, जिससे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी यहाँ आए, और जब ये कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ अनंत पर्वत पे, उस अनंत पर्वत नाम ही उन्होंने महात्मा गांधी जी ने रखा, पहले उसका नाम काला पहाड़ होता था
1: जी।
0: और इस कॉलेज के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ छुप के रहे ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस कॉलेज के इतिहास अगर देखें तो पूरा राष्ट्र भावना से ये आज भी और पहले भी भरा हुआ था। तो इस कॉलेज में हर जगह पे इस तरह की अनुभूति आपको आज भी लगती है कि जो यहाँ के बच्चे आज से 50 साल 100 साल पुराने थे या आज के बच्चे भी हैं, उनमें राष्ट्रीयता का भाव बहुत है, जो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेने से ज़्यादा मैं हर विद्यार्थी के बारे में कहूँगा कि वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी एक ऐसी संवेदना है। शायद ये कॉलेज की वैल्यूज़ हैं जो हमारे हर विद्यार्थी में है।
1: और जैसे कि आपने कहा कि विद्यार्थी जो हैं वो इस कॉलेज की जान है, विद्यार्थी चाहे वो पहले के थे या आज के हैं, अगर राष्ट्रहित की बात करें तो हमेशा वो राष्ट्रहित के साथ खड़े हैं और विद्यार्थियों के हित के साथ आप खड़े हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं आप इससे पहले, और बच्चों से आपका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। रामजस कॉलेज में आना भी बच्चों का एक सपना होता है कि हम रामजस कॉलेज में आके पढ़ेंगे। क्या टेक्निक्स, क्या ट्रिक्स वो लगाएं जिससे कि CUET को बहुत ही आसानी से पार करके रामजस कॉलेज तक का अपना सफर पूरा करें?
0: देखिए, मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में दो लाइनें ये कहूँगा, सबको सम्मान भाव से और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये एक ऐसा एग्ज़ाम रखा। अब ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर्टिकुलर बोर्ड का स्टूडेंट था, वहाँ पे नंबर कम मिलते थे इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और या इस प्रति बोर्ड में था तो इस बच्चे का एडमिशन हो गया क्योंकि वहाँ नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो सभी के लिए एक ही रूप से, एक ही समान रूप से दिया जाता है। जो NCERT की आपकी किताबें हैं, जो आपका CBSE का सिलेबस है, उसके हिसाब से तैयारी करिए, आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे और आपकी मेरिट इतनी अच्छी होगी, जो भी कॉलेज जो भी कोर्स आप चाहते हैं वो आपको अपनी इच्छाओं के स्वरूप मिल जाएगा। एक चीज़ कहूँगा कि आप कभी भी कॉलेज को मत चुनिए, आप अपने कोर्स को चुनिए, और क्योंकि किसी भी महाविद्यालय के आप स्टूडेंट रहें, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है और जो सिलेबस है वो प्राय CBSE का सिलेबस होता है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रामजस कॉलेज अब अल्फा जेन और रेनबो फैमिली के साथ जुड़ चुका है, आकाशवाणी फैमिली में शामिल हो चुका है। थैंक यू सो मच सर।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: वाकई में हर कॉलेज की है हिस्ट्री, लेगेसी, अचीवमेंट्स, एलुमनाई, एकेडमिक सोसाइटी, स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ और बहुत कुछ, और ये सब कुछ जो हम जोड़ते हैं कॉलेज लाइफ के साथ में हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज हमने की रामजस कॉलेज की सैर, अगले हफ्ते एक बार फिर से एक और नया कॉलेज, एक और नया गलियारा, एक और नई हिस्ट्री, लेगेसी, अचीवमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा हम समेट कर लाएंगे आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है। अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और आप सभी का अपना पसंदीदा प्रोग्राम सैटेलाइट्स लेकर मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, जिसे देखो वो सिर्फ हमारे पीछे पड़ा है, हमारी ही बुराई कर रहा है। तो जिस दिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, उस दिन आपको एक काम ज़रूर करना है, दुनिया की तरफ पीठ घुमा लेनी है और एक सेल्फी ले लेना। तो आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है। सुनते रहिए सैटेलाइट्स, बहुत सी बातें करेंगे दिल्ली वालों के लिए, खास ट्रैफिक अपडेट्स और कुछ ज़रूरी बातों के साथ साथ हमारी बातें और ये मस्ती का सफ़र बस यूं ही चल पड़ा है।

रेनबो सुन रही हैं आप दिल से दिल तक 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूँ आपके साथ सृजन, लेकर आई हूँ प्रोग्राम सैटेलाइट्स। देखिए, मॉर्निंग की शुरुआत, आज दिन की शुरुआत मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करके करते हैं, तो मैंने सबसे पहले अखबार खोला और वहाँ पर अपना राशिफल चेक किया। अब वहाँ लिखा था कि आज आपका ऊंचाइयाँ छूने का योग है। अब ये बात आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही फिट हुई। मैं सुबह यानी यहाँ आने से पहले घर के सारे पंखे और जाले साफ कर आई हूँ, तो बिल्कुल सही रहा आज का राशिफल। राशिफल के साथ ही हम मौसम के फल की देखें तो वाकई बड़ा खट्टा मीठा सा ये फल हो रहा है, क्योंकि कभी तो ठंड है कभी गर्मी है। वहीं मार्केट की बात करें तो मार्केट वाले खुद परेशान हैं कि कूलर बेचें या फिर छतरी बेचें। कभी शिमला की फीलिंग आती है और कुल्लू मनाली जाने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली में आपको अब सब तरह का वेदर देखने को मिल रहा है, मई में बरसात तो क्या ही बात। जी हाँ, मौसम की बात करें तो अभी बिल्कुल 34 है और मैक्सिमम भी आज 36 तक ही रहने वाला था, तो बस अब तो देखिए कूल की तरफ हम जा रहे हैं, मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। तो 24 डिग्री जो है आप दिल्ली का वेदर अभी फील करेंगे, मोस्टली सनी क्लाउडी सा रहने वाला है। AQI की बात करें तो आज कल में 86 अंक AQI दिल्ली का नोट किया गया, जो कि बीते काफ़ी दिनों का लोएस्ट बन रहा। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हुआ कि मौसम में ये बदलाव देखने को हमें मिला, तो थोड़ी सी राहत जो है देखने को मिल रही है। कहीं तो ओले लोग कलेक्ट कर रहे हैं और कहीं तो बिल्कुल ऐसा है कि जी इनके जो है ना हम स्नोमैन भी बना सकते हैं। इज़ इट, कैसा रहा आपका भी दिल्ली के मौसम को लेकर एक्सपीरियंस, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही बताइए कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए हैं आप। नंबर है 9868107070। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपसे साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस विशेष स्मृतियों के सफर की श्रृंखला यानी आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, पिछले अंक में आपने जाना था कि किस तरह से हवाओं में घुली आवाजें जिनका प्रसारण मुंबई से शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके कहां पहुंची। जी हां, साल 1923 के अंत तक भारत में रेडियो की गूंज पहुंची कलकत्ता रेडियो क्लब तक, यानी रेडियो की गूंज एक और शहर पहुंच गई। साल 1923 के अंत तक भारत में रेडियो की गूंज एक और शहर तक पहुंच चुकी थी। ये वो समय था जब रेडियो धीरे धीरे लोगों के जीवन में अपनी जगह बना रहा था और संचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। नवंबर 1923 में कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। ये भारत के शुरुआती शौकिया रेडियो संगठनों में से एक था जिसने देश में रेडियो प्रसारण के विकास को नई दिशा दी। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किए गए पहले प्रसारण के कुछ ही महीनों बाद कलकत्ता में स्थापित इस रेडियो क्लब ने इस नई तकनीक को अपनाते हुए शुरुआती कार्यक्रमों के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कोई औपचारिक या सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि उन लोगों का प्रयास था जो रेडियो के माध्यम से संवाद की नई संभावनाओं को तलाशना चाहते थे। इस क्लब के प्रयासों ने भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआती नींव को और मजबूत किया। धीरे धीरे ये एक छोटी सी शुरुआत एक व्यापक बदलाव का हिस्सा बन गई, जिसने आने वाले वर्षों में भारत को एक संगठित प्रसारण व्यवस्था की ओर अग्रसर किया। तो श्रोताओं, हवाओं में घुली इन आवाजों के प्रसारण की जो नींव बॉम्बे में पड़ी, फिर कलकत्ता पहुंची और आगे मद्रास की ओर कैसे पहुंची, जानेंगे आकाशवाणी एट 90 के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। कार्यक्रम है सैटेलाइट्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन। जी हां, 8 जून 2026 को ये 9 दशकों का सफर आपके साथ, यकीन मानिए कब और कैसे निकला ये अपने आप में एक अनूठी गाथा कहता है। और आपके साथ होना यानी बेस्ट टाइम। आकाशवाणी रेनबो का ये सफर आपके साथ यूं ही निरंतर चलता रहे ऐसी मैं विश करती हूँ। और आप जब हमारे साथ होते हैं ना, जब आपसे मिलना होता है, तो हर आरजे जो है ना मुस्कुरा रहा होता है, गा रहा होता है और मन ही मन कुछ इस तरह या इन गानों पर नाच भी रहा होता है।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

रेनबो सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है सैटेलाइट्स और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वालों आपके लिए यानी आप ट्रैफिक से बच रहे हैं इसके लिए जो है काफ़ी जो है प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है इसके। ऐसे में अगर कुछ नई गाइडलाइंस की बात करें तो NHAI को जो है फिलहाल गाइड किया गया है कि आप जो कुछ और जो मेजर बिजी रूट्स हैं ना उनके लिए कुछ कीजिए। इनमें से बात करें तो इंडिया गेट से बदरपुर जाने वाला जो मथुरा रोड है, पंजाबी बाग से पीरागढ़ी होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाले टिकरी बॉर्डर मार्ग की बात करें और अंधेरिया मोड से गुरुग्राम तक बहरोली गुरुग्राम MG रोड की बात करें, यानी ये 3 रूट जो कि हमें हमारे NCR UP और हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं उनसे भी मिलाते हैं। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मीन्स आप यहाँ पर एक बार इन रोड्स पर एंटर कर जाएं तो कई बार जो सफ़र 10 मिनट का है वो कहीं ना कहीं 1 घंटे तक भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इन कॉरिडोर्स की ये जो रोड्स हैं इनकी जो है ना अब सूरत चेंज करने की बात की जा रही है। मथुरा रोड यानी इंडिया गेट से बदरपुर जाने वाला ये जो रूट है ना ये 15 किलोमीटर का है। अब इस रूट पर जो है ना 7 लाल बत्तियां आती हैं तो ऐसे में अब काफ़ी जाम जो देखने को मिलता है। इसके बाद निज़ामुद्दीन, भोगल, फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया कट ये सभी जो है ना बिल्कुल रेड लाइट्स के चलते ब्लॉक रहते हैं। और अगर नेक्स्ट रूट की बात करें यानी रोहतक रूट की बात करें तो यहाँ पर जो है ना 17 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही 6 रेड लाइट्स आती हैं। पीरागढ़ी, नांगलोई, मुंडका, टीकरी बॉर्डर ये सभी इनमें जो है शामिल कर सकते हैं हम। और MG रोड की बात करें तो इस रोड पर यानी दिल्ली गुरुग्राम रोड पर जो है 18 किलोमीटर के अंदर जो ये 4 रेड लाइट सुल्तानपुर, घिटोनी, अर्जुनगढ़ और सिकंदरपुर पे आती है ना ये अपने आप में इस रूट को बहुत लेंथी कर देती है। तो ऐसे में अब NHAI को जो है गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप यहाँ से ना रेड लाइट को कम कीजिए जिससे कि ये जो जाम है स्पेशली इवनिंग टाइम पर 30-40% तक कम हो जाएगा। वाहन कम रुकेंगे तो डेफिनेटली जो ईंधन है उसकी खपत भी बचेगी, हम जो है जो एक्सेस हम कार्बन जो रिलीज कर रहे हैं उन सबसे भी बच पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम रहेगा, दिल्ली के ट्रैफिक को यहाँ पर ज़रूर राहत देखने को मिलेगी। चलिए एक और रूट बता देती हूँ जो कि आपको अवॉइड करना है। दिल्ली जल बोर्ड ने जो है ना न्यू रोहतक रोड के कमला टी पॉइंट से आनंद पर्वत वाली जो 10 नंबर गली है ना वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम स्टार्ट किया है। तो ऐसे में वो रूट जो है अब बिजी रहने वाला है 30 जून तक। यहाँ पर एक जो लेन है ना उसको कम्प्लीटली बंद किया गया है। तो अब जो डाइवर्जन्स है ना उनको लेकर आप ध्यान से सुन लीजिए, स्पेशली सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए जो है ना कमल टी पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर और आनंद पर्वत के बीच में ये जो रूट है ये डिस्टर्ब रहने वाला है। तो जखीरा फ्लाईओवर से पंजाबी बाग जाने के लिए अब जो जितने भी सब वाहन चालक हैं उन्हें कमल टी पॉइंट से दाईं ओर जाना है और स्वामी नारायण मार्ग से पुरानी रोहतक रोड के लिए आप जखीरा अंडरपास ऐसे पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा डायवर्जन है वो यदि आप ईदगाह यानी रानी झांसी फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ऐसे में भी न्यू रोहतक रोड पर जाने से बचना है। रानी झांसी फ्लाईओवर के साथ साथ सर्विस रोड लेकर आपको रामबाग रोड नंबर 40 और यानी पुराने रोहतक रोड पर आ जाना है। और जो हेवी व्हीकल्स हैं उनके लिए भी कमल टी पॉइंट से दाईं ओर और स्वामी नारायण मार्ग से डाइवर्जन को जो है अप्लाई कर दिया गया है। तो आप इस रूट से जा रहे हैं तो क्लियरली डाइवर्जन्स को आप जो है मेजर करके चलिए क्योंकि ये रूट डेफिनेटली अभी हमने इसकी बात की कि यहाँ पर सिग्नल फ्री करने की अभी ट्रायल्स चल रही हैं लेकिन फिलहाल जो है अभी काम के चलते ये बिजी रहने वाला है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद म्यूजिक का सफर और सैटेलाइट्स प्रोग्राम में आपके लिए हमारी इंफॉर्मेशन बातों का सफर यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए दिल से दिल तक रेनबो को।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक और अपडेट देती हूँ जो कि स्पेशली हमारे बच्चों के लिए है। अब जो हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है ना, वो बच्चों के लिए समर कैंप में कुछ डिफरेंट सीखने के लिए भी एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, सड़क सुरक्षा जागरूकता समर कैंप। देखिए, आप इन गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। सो सबसे पहले ट्रेनिंग की लोकेशंस नोट कर लीजिए, कहाँ कहाँ रहने वाली है ये ट्रेनिंग। पंजाबी बाग, रोशन आरा बाग, बाल भवन, हारकोट, बल्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंदिर मार्ग पर। और क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो कि आप सीख सकते हैं, वो है सड़क सुरक्षा, आत्मरक्षा और सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रशिक्षण है, और साथ ही आपको कुछ नुक्कड़ नाटक, साइबर सुरक्षा, ये सभी चीजें जानने को मिलेंगी इस कैंप में। कैंप जो है ये लगने वाला है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए, 18 मई से 5 जून तक 3 बैचेस में चलेगा, एक 18 से 22 मई, 25 मई से 29 मई, फिर 1 जून से 5 जून। और टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं वो भी सुन लीजिए। टाइमिंग्स रहने वाले हैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। आपको ऑफलाइन रजिस्टर करना होगा 18 मई तक, और आपके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस सेमिनार का, इस समर कैंप का हिस्सा बनना है, यानी क्लास 6 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट इन बेसिस पर जो है 200 स्टूडेंट्स को, यानी 200 छात्रों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुन लिया जाएगा। और आपको रजिस्टर कैसे करना है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है कंसल्ट करना होगा SI मिस्टर अरुण से, और इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स हैं। आप ऑफलाइन इन सेंटर्स पर जाकर, और इन जिन सेंटर्स का मैंने नाम लिया है इन पर जाकर आप इस पूरी बात को चेक कर सकते हैं, और साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल हैंडल के थ्रू भी आप सारी जानकारी इकट्ठा करके कुछ डिफरेंट सीख सकते हैं इन समर वेकेशंस में। तो बच्चों, हो जाइए तैयार कुछ सीखने के लिए। आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप, अपनी दोस्त रजन के साथ, कार्यक्रम है सैटेलाइट्स।

देखिए, कई बार हम बुक्स को ढूंढ रहे होते हैं और बुक्स हमें ढूंढ रही होती है। हमें कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी हो, कोई स्पेशल बुक चाहिए हो, तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता कि हमें वो बुक कहाँ से मिलने वाली है। इसलिए जो मेरी अगली बात है ना, उसे आप सब ध्यान से नोट कर लीजिए। आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, प्रोग्राम है सैटेलाइट्स, और यस, मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन। तो चलिए, इसके लिए आप जो है, जो मैंने बात शुरू करी है, उसके लिए आप DDA की लाइब्रेरी में अब रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, छात्रों को शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है बुक्स पढ़ने के लिए दी जाएगी, और आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सभी बुक्स अवेलेबल हैं। DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आप को आप इस लाइब्रेरी में रजिस्टर करने के लिए एक्चुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। वेबसाइट ध्यान से सुन लीजिए, ये है dda.gov.in, dda.gov.in पर जाकर आप DDA लाइब्रेरी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, एक और बात आप सभी को बता दूं, अगर इग्नू स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं और उन्होंने जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करना था लेकिन नहीं कर पाए हैं जून टर्म के लिए, तो लास्ट डेट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले, वो अपने असाइनमेंट जो हैं 31 मई तक सबमिट कर सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ये भी ध्यान से सुनिए, ये है ignou.ac.in। सुनते रहिए प्रोग्राम सैटेलाइट्स।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग

तक 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई मीडियम्स के जरिए भी आप और मैं कनेक्टेड हैं दिल से दिल तक। प्रोग्राम है सैटेलाइट्स और मैं हूं दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन आपके साथ। देखिए, अगर आपको लगता है डेफिनेटली अगर आपने आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई भी काम किया है जो कि सम्माननीय है और आप अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं आयुर्वेद पुरस्कार के लिए, तो ये नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की शुरुआत कर दी है। नॉमिनेशन 1 मई से 30 जून तक आप अपने नाम का सबमिट कर सकते हैं और जो पुरस्कार वितरण है यानी कब आपको अवार्ड दिया जाएगा वो डेट नोट कर लीजिए, वो होगी 23 सितंबर 23 सितंबर 2026। सो आपको कैसे नॉमिनेट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये है awards.gov.in। सुनते रहिए रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की ये मैजिकल फ्रिक्वेंसी और आपका और मेरा साथ। चलिए सैटेलाइट्स में अगली बात कर लेते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के बीच चलने वाली नमो भारत, चलने वाली नहीं दौड़ने वाली नमो भारत ट्रेन की बात करें तो हर दिन एक नया कीर्तिमान यानी एक नया रिकॉर्ड, एक नया आंकड़ा पार कर रही है ये ट्रेन नमो भारत। यहाँ हर दिन 90,000 से 1.5-1.25 लाख के आसपास जो है यात्री इस ट्रेन का सफ़र करते हैं और बस ये 2 से 3 महीने की ही बात करें तो करोड़ों लोगों ने इस ट्रेन के ज़रिए अपना सफ़र पूरा किया है। अब देखिए, पहले ये जो अंतराल है यानी दो नमो ट्रेन्स के बीच में 15 मिनट होता था, लेकिन अब क्योंकि

0: इतने लोग इसके जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये टाइम घटा कर 10 मिनट का कर दिया गया है और हर दिन नए रिकॉर्ड्स तो डेफिनेटली टूट रहे हैं। और ऐसे में जो मेन स्टेशंस हैं उनमें भी आनंद विहार जो स्टेशन है उसको मल्टी मॉडल हब की तरह तैयार करने की तैयारियां और जोरों शोरों से चल रही हैं, बिल्कुल अगले गाने की तरह।
1: हाय,

देखिए बात बिल्कुल ठीक है, अकेले चलने का टाइम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा, क्योंकि मुझे स्टूडियो से जाना है और नीरजा को आना है। अब जो भी अगला गाना है ना, वो भी मेरे दिल की ही बात कह रहा है। मैं नीरजा को कहूँगी कि चलो आओ कभी हवेली पर। वेल नीरजा स्टूडियो में आने को हैं और सीट संभालने को है। मैसेज मसाला मिक्स अगला प्रोग्राम होगा और उसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक आर नॉर्थ ईस्ट। आप स्पेशल प्रोग्राम सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट सॉन्ग्स पर बेस्ड पूजा आनंद के साथ। म्यूजिक मस्ती जारी रहेगी नीरजा चतुर्वेदी के साथ। 8 से 9 रेखा लेकर आएंगी, यानी रेखा चौधरी आपके लिए लेकर आएंगी आपकी याद आती रही 9 से 10 बजे तक। और वेस्टर्न म्यूजिक का एक और आर रेनबो क्लासिक आप सुनेंगे 10:05 से 11 बजे तक पूजा आनंद के साथ रंगे महफिल। जो यहाँ 11 बजे से 0 आर तक सजाएंगी रेखा चौधरी, तो डेफिनेटली आपको कहीं और कहीं नहीं जाना है। देखिए अगर कोई आपको ये भी कह रहे हैं ना कि जिंदगी में बहुत गम है, इस बात को भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं। अब इतना गम उस पर्सन के पास है तो थोड़ा सा पेपर लीजिए, उससे स्क्रैच कीजिए और उस पेपर को जो है ना कहीं चिपका दीजिए और उस पर लिख दीजिए आई कैन डू इट। जब आप कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर ही सकते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम सैटेलाइट्स। और मैं सृजन दिल्ली की चाशनी कुड़ी अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी, और हर बार किसी न किसी नए संदेश के साथ, किसी न किसी नए जज्बे के साथ हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, और ज़िंदगी की ये जो नई बातें हमें लगती हैं, नए एहसास हमें लगते हैं, है तो वही दिल को सुकून देने वाली बातें, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की राय से हम उन्हें फिर से एक बार तरोताज़ा कर लेते हैं। तो आज बात करेंगे चिंता और फिक्र की। चिंता में इंसान

समस्या में उलझ जाता है और फिक्र उसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ लेती है। तो बस सवाल यही है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपकी फिक्र करता है, आपको पता है? और अगर पता है तो उनका नाम और वो प्यारा सा रिश्ता कौन सा है जिसको देखकर लगता है कि हाँ, उसे मेरी फिक्र है। जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहना दोस्त, और हमें मैसेज करते रहना, और मैसेज करने के लिए हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070। यहाँ आपकी नीरजा सिर्फ आपके संदेश का इंतज़ार कर रही है, तो लिख डालिए।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपके साथ नीरजा और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और बिल्कुल दिल के जज्बात आपसे जुड़ रहे हैं और चिंता और फिक्र की बात आप समझ गए और बहुत ही अच्छे से संदेश के साथ आप जुड़ रहे हैं। और जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, दोस्त, जुड़े रहना और मैसेज ज़रूर करना और ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा कि चिंता और फिक्र, जब इसके अंतर को हम देखते हैं तो चिंता समस्या में उलझा देती है लेकिन फिक्र उसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ लेती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसे देखकर लगता है कि हाँ, वो आपकी फ़िक्र करते हैं? सरफराज आलम का हमारे पास बिहार से मैसेज आया है, कहते हैं, मेरी फ़िक्र सबसे ज़्यादा मेरी माँ करती हैं। क्या बात है, माँ की दुआएँ और उनका प्यार हर मुश्किल में हिम्मत देता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। इसके बाद मेरी वाइफ हर छोटे बड़े पल में मेरा साथ निभाती हैं, मेरी खुशी, मेरी परेशानी, मेरी सेहत, हर बात का ध्यान रखती हैं। सच कहूँ तो जीवन साथी का साथ ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बना देता है। मेरी सासू माँ और ससुर साहब भी मुझे अपने बेटे जैसा प्यार और सम्मान देते हैं। उनका ये अपनापन भरी बातें और चिंता दिल को बड़ा सुकून देती हैं। आज के दौर में अगर परिवार साथ खड़ा हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर सकता है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतना चाहने और मेरी फिक्र करने वाला परिवार मिला है। कितनी खूबसूरत बात है और बड़े ही सरल तरीके से आपने अपनी बात कह दी है। और ये बात छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। जब हम अपने आसपास तरह तरह की परिस्थितियों को देखते हैं तो मुझे लगता है ऐसे संदेश हमें बहुत बहुत ज़्यादा हमें प्रेरित कर जाते हैं। और जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के संदेश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सोनू बिजनौर से हमारे साथ कहा है, मैं तो हर वक्त अपने मालिक को अपने दिल में बड़े सहेज कर फूलों सा सजा कर बैठ कर रखता हूँ। तो चिंता कभी होती है तो अंदर से आवाज़ आती है, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। क्या बात है, बिल्कुल, अगर आपके अंदर विश्वास है ना तो वो विश्वास आपको सबसे बड़ा संबल देता है। और सच में परेशानी परेशानी नहीं लगती बल्कि हम सॉल्यूशन की तरफ चलने लगते हैं। हमारे पास अगला मैसेज आया है शैलेंद्र वर्मा जी का, दिल्ली से, और कहते हैं, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, उसे चलते ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंकज अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ महेश बाबू भी हैं और लिखा है कि मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी बहन है जो हमारी फ़िक्र करती हैं और माँ पिताजी के बाद उन्होंने मेरा ख्याल

रखा है और फ़ोन कॉल करके मेरी खैरियत पूछती हैं और कठिन समय में हमेशा मेरा साथ देती हैं। मेरी बहन का नाम है अलका, ललिता, सुनीता। कितने भाग्यशाली हैं आप कि इतनी प्यारी बहनें हैं आपकी कि आप आज इस मैसेज को यहाँ साझा कर पा रहे हैं। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि बहुत दिन बाद आपको सुना तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है दोस्त कहीं ना कहीं फिक्र की होगी, तो इसलिए ईश्वर ने सुन लिया और आप सुन पाए और मैं भी आ गई आपके बीच में। अगला हमारे पास मैसेज आया है नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से और कहा है कि शुभ संध्या। जी बिल्कुल शुभ संध्या, संध्या शुभ हो गई जैसे ही आप सब मैसेजेस के माध्यम से यहाँ स्टूडियो में मेरे पास आ गए। कहते हैं पहले तो हमारा दिल से फिक्र करने वाले हमारे माता पिता थे और अब जो फिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं हमारी धर्म पत्नी मैडम आरती जी हैं। क्या बात है नरेंद्र जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। बस हमें ना इस सौभाग्य को बार बार धन्यवाद कहते रहना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अनिल शर्मा जी सरिता विहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं नीरजा बेटी शुभ संध्या। कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर पे हाथ ही रख दिया है आपने मेरे। लिखा है फिक्र मेरी कुशल पोस्ट ग्रेजुएट बीएड गृहिणी सुशील पत्नी है। क्या बात है, मैं भी उसकी हर पल फिक्र करता रहता हूँ क्योंकि हम दोनों ही वरिष्ठ उम्र में हैं और ईश्वर की कृपा से हम स्वस्थ हैं। हाँ इस उम्र में हम बूढ़ी माँ का ख्याल रखते हैं क्योंकि उनका साया वो भी तो हमें चाहिए। बिल्कुल, माता पिता तो हमेशा हर वक्त चाहिए और हर पल चाहिए, उनके बिना तो जीवन जीवन ही नहीं है और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो उनके साए में पलते हैं। किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। भाई आप रहते ही आनंद विहार में हैं तो जब आप मैसेज भेजते हैं तो आनंद बिल्कुल आने लगता है और कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, गाने सुन रहे हैं और हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। बिल्कुल अटेंडेंस लग रही है और फिक्र आपको इसी बात की थी कि आपकी बात होगी या नहीं। जी अगर आप आए हैं तो ये कार्यक्रम आपका है, ज़रूर आपकी बात होगी। और संजय जी का जन्मदिन है तो संजय जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एफएम रेनबो की पूरी टीम की ओर से और आपसे यही कहना चाहेंगे कि बार बार ये दिन आए और बार बार दिल ये गाए कि आप जिए हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000। आपके चाहने वालों ने आपके लिए ढेर सारे संदेशे भेजे हैं और हम आपके लिए ये प्यारा सा ट्रैक लगा रहे हैं। एंजॉय कीजिए अपनी बर्थडे पार्टी विद द सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन संजय।

बिल्कुल, ये प्रीत हमारी आपसे ही लग गई है और इसीलिए हम आपके बीच पहुंच गए हैं, लेकिन चिंता लेकर नहीं, फिक्र लेकर और ये सोच कर कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो दोस्त बहुत आराम से चलना, गाने ऐसे होंगे जो आपके रास्ते को बहुत खूबसूरत बना देंगे। और हाँ, ज़िंदगी के कुछ एहसास ऐसे जो आप अपने अपनों के साथ साझा करते हैं और उनको कभी कभी धन्यवाद भी कहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कोई आपकी फिक्र भी करता है। चंडीगढ़ से मैसेज आया है सोम का और कहते हैं कि टॉपिक बहुत अच्छा लगा और आज के इस टॉपिक पर यही है कि फिक्र अपनों की जाती है और चिंता सामान की। मेरी माँ मेरी फिक्र करती थी और मैं अपने बच्चों की, क्या बात है। बिल्कुल सोम सही कह रहे हैं आप। और सच बताऊँ तो मुझे ये लगा कि हमेशा हमारे माँ बाप हमें ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपने बच्चों को करते हैं, यानी बच्चे अपने माँ बाप को उतना प्यार नहीं कर पाते जितने शायद माँ बाप करते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी हम रूठ जाते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन वो हर बार पता नहीं कैसे हमें माफ़ कर देते हैं। बस वो प्यार ही है, उनका आशीर्वाद ही है कि बहुत कुछ हमारे कर देने पर भी माफ़ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से और कहते हैं, मेरे जीवन में मेरी पत्नी ही है जो मेरी फिक्र करती हैं। उनका नाम सविता है। हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देती हैं। और रंजीत जी, सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप इस बात को, इस जज्बे को इतना सम्मान देते हैं और मानते हैं। अगर आप ना मानते तो फिर ये बिल्कुल अधूरा सा हो जाता है। इसलिए आप भी बहुत सम्मान के पात्र हैं, हकदार हैं। अशोक नागरा, सुनीता नागरा और रॉबी नागरा, आज के सवाल पे यही जवाब है कि मेरी दुनिया में मेरा सबसे ज़्यादा फिक्र करने वाले मेरे दो अनमोल रत्न हैं, मेरी पत्नी सुनीता नागरा और मेरा बेटा रॉबी नागरा, जिनको मेरी सेहत की हमेशा फिक्र रहती है। कितनी खूबसूरत बात है ना, आपकी असली दौलत यही दो लोग हैं सच में जो आपको इतना संपन्न बनाते हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ हैं और कहते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। कितनी खूबसूरत बात की ही है। आगे लिखा है कि किसी को सलाह दो तो उसको उसका साथ ज़रूर दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर साथ गलत नहीं हो सकता। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यारे शब्द और आशीर्वाद से हमें जोड़ देते हैं। अगला हमारे पास मैसेज आया है, संजय हमारे साथ हैं मेरठ से और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी माँ करती हैं। वो इतना फिक्र करती हैं कि कभी कभी तो मैं परेशान हूँ, हो जाता हूँ और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हैं कि मैं कहीं चला जाऊँ तो कहाँ चला गया, बस यही कहते रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और संजय जी काफ़ी बीमार रहे हैं और इसलिए उनका इतना ध्यान रखना स्वाभाविक ही है संजय जी। और लेकिन इसके बाद भी मैं सच कहूँ तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाती होगी जब इतने प्यार करने वाले आपका ध्यान रखते हैं, है ना। नीरजा जी, कैसी हैं आप जी? मैं बहुत खुश हूँ। राहुल त्यागी गाज़ियाबाद से, राहुल मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ और इस कार्यक्रम को जो सिर्फ आपका है इसे और खूबसूरत बना देते हैं। लिखा है, वैसे तो सबकी फिक्र ऊपर वाला करता है, हाँ सच में, लेकिन मेरी फिक्र मेरे

पूरे परिवार वाले करते हैं और सबसे ज़्यादा माँ करती हैं, और फिर वाइफ और फिर बच्चे भी। कोई एक भी फिक्र करने वाला हो तो बहुत है, और उम्मीद है कि आप भी हमारी थोड़ी फिक्र करती होंगी। बिल्कुल राहुल, फिक्र है, इसीलिए ऐसा विषय कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि हमें अपने लिसनर्स की बहुत फिक्र होती है कि क्या सुनना चाहेंगे, क्या अच्छा लगेगा और कैसे इस कार्यक्रम को और बेहतर किया जाए। इस कोशिश में पूरा रेनबो परिवार लगा रहता है। हीरामणि वर्मा दंतेरी भाटापारा से कहते हैं, मेरे सभी शुभचिंतक को चिंता व फिक्र लगा रहता है जब तक मैं ड्यूटी से घर ना आ जाऊं। फ़ोन पर बीच बीच में हालचाल पूछते रहते हैं और मेरे परिवार व मित्र मंडली इस तरह से मेरा ध्यान रखते हैं। भाई, आपका नाम ही है हीरा मणि, तो आप किसी हीरे से कम तो है नहीं, है ना? आपको तो माता पिता ने ये नाम नहीं आशीर्वाद दे दिया है, तो हीरे की फिक्र करना तो लाजमी है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, संयम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी ओखला संगम विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं फिक्र यही होती है कि कार्यक्रम से जुड़े रहें, और जब गाने बहुत अच्छे बजते हैं तो मज़ा आ जाता है और लगता है कि कोई फिक्र कर रहा है। बिल्कुल फिक्र रहती है, और इसी बात में ना पता है क्या होता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा बना देते हैं आप, और ये जो फिक्र होती है ना ये हमेशा हमें सतर्क रखती है। अनिल मौर्य कंकर खेड़ा क्रांति धरा मेरठ से और कहते हैं, शुभ संध्या। हमारे माता पिता नहीं हैं, पहले हमारी वो फिक्र किया करते थे, लेकिन उसके बाद से हमारी पत्नी हमारी बहुत फिक्र करती हैं, लेकिन वे इजहार नहीं करती और बच्चों के मार्फत बार बार फ़ोन करा के हमारी खैर खबर लेती रहती हैं। तो दोस्त, आपको ऐसा करना चाहिए ना, आप बच्चों को तो जवाब दे ही, वो तो बनता ही है, लेकिन उसके बाद आप उन्हें पलट कर फ़ोन किया कीजिए। जो हम चाहते हैं ना वो हमें कर देना चाहिए, तो एक बार करके देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव। और उन सब को जो सुंदरी हैं और उन सुंदरी को प्यार करने वाले वो दिलदार आप सब, ये गाना सबके

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और बात हम आपके संदेशों से ही करेंगे। और आज जिस विषय को हम साथ लेकर चल रहे हैं वो है चिंता और फिक्र। और चिंता अक्सर हमें सुलझा देती है लेकिन फिक्र रास्ता भी दिखा देती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिना कहे बिना जताए आपकी फ़िक्र करता है, आपका ध्यान रखता है और आपको समझ भी आता है? तो बताइए ना उनका नाम और उनका वो प्यारा सा रिश्ता जो आपको उनसे जोड़े रखता है। शुभ संध्या नीरजा जी, आई एम सूरज फ्रॉम सूरज लोक, क्या बात है। वैसे हम सभी सूरज लोक से हैं दोस्त, जानते हो ना। आप आगे लिखते हैं कि मेरी फिक्र मेरी प्यारी मम्मी करती हैं, बस चलती फिरती हुई आँखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। क्या बात है, सच में माँ कहो भगवान कहो एक ही बात है। और पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में भला कौन किसकी फ़िक्र करता है, लेकिन माँ की ममता हमेशा बच्चों की फ़िक्र करती है। माँ हमेशा हमारी फ़िक्र किया करती हैं लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं हैं। अगर माँ के बाद कोई और है ना तो वो हमारी श्रीमती जी हैं, उषा मोहन नाम है उनका। देखिए कितना खूबसूरत नाम है उषा, जिंदगी में हमेशा आपके उजाला ही रहेगा उषा जो है आपके साथ। और मोहन जो आपको कभी उदास ही नहीं होने देंगे, कितना खूबसूरत नाम है। खैर आगे बढ़ती हूँ। लिखा है, जो हर हालात में हमारी फिक्र करती हैं और जो कभी भी कोई संकट आ जाए तो ढाल की तरह साथ में खड़ी रहती हैं, क्या बात है। और अनिल मोहन जी, बहुत ही खास बात है कि आप इस बात को समझते भी हैं, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत ये जज्बात हैं जब हम एक दूसरे की बात भी करते हैं और एक दूसरे को समझ भी जाते हैं। आदाब, काफ़ी देर से हाजिर हुए हैं कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैज फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। लेकिन आपने क्या लिखा है वो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, किसकी फिक्र और किस चिंता की बात आपने की, और वो आप लिखना शायद भूल गए। तो दोस्त ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस विषय को हमारे साथ ज़रूर साझा करें, अगली बार भूलिएगा नहीं, और अगर वक्त है ना तो ज़रूर लिख के भेजिए। चिंता और फिक्र, कौन है जो आपकी फ़िक्र करता है? मुझे लगता है आप सभी एक दूसरे की फ़िक्र करते होंगे। खैर आगे बढ़ती हूँ। बिहार से मैसेज आया है सरफराज जी का, लिखा है, मेरी खामोशी भी जो पढ़ लेते हैं, मेरे चेहरे से दर्द समझ लेते हैं, वो लोग ही तो अपने कहलाते हैं जो बिना कहे मेरी फ़िक्र कर लेते हैं। माँ दुआओं में मेरा नाम रखती हैं, हर मुस्कान में मेरी शाम रखती है, हम सफ़र हर थकान को समझ जाती है, चुप रहूं तब भी हाल जान जाती है। सासू माँ का अपना पंछाव बनता है, ससुर का साया हौसला बनता है, रिश्ते अगर दिल से निभाए जाएं तो हर गम में भी आसान लगता है। दौलत से बड़ी चीज़ मोहब्बत होती है, और अपनों की फ़िक्र भी असली राहत होती है, वरना हर भीड़ भरी दुनिया में अक्सर लोग साथ होते हैं पर चाहत चाहत नहीं होती। क्या बात है, तो चाहत हमें रखनी है अपने अपनों के लिए और बिल्कुल उनका ध्यान रखना है। हेलो मैम, मैं

भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से, और इस टॉपिक पर यही कहना है कि मेरी फैमिली में सब लोग, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों या मेरी सिस्टर हों, सबसे सब मेरे लिए कंसर्न रहते हैं, क्योंकि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा मेरी तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो स्कूल से मेरे साथ हैं, और मैं भी सबसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इन सब के बिना मैं कुछ नहीं। ये जो आपने बात की है ना, ये बस यही वो जादू है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है, और जुड़े तो हमें आपसे हमेशा ये पल रखते हैं। जुड़े रहना दोस्त, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपके साथ हूँ मैं नीरजा, और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और एक संदेशा इस गाने के माध्यम से आपके लिए। अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।

0: नाम पर सिर्फ एफ आई आर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
1: ठीक है,
0: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफ आई आर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर आज मैं हूँ आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी और कार्यक्रम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बात कर रहे हैं हम चिंता और फिक्र की। और हर्षवर्धन पांडे हमारे साथ पन्ना मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं और कहते हैं कि आज के टॉपिक पर मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में फ़िक्र की बात की है ना कौन करता है। मनुष्य को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र स्वयं को करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें अपने काम अपनी ड्यूटी में जाना है कि नहीं जाना है, इसकी चिंता इसकी फिक्र हमें यानी मनुष्य को हर स्वयं करनी चाहिए। यही मेरा अपना स्वयं का विचार है। नीरजा जी गुड इवनिंग। बिल्कुल शाम खुशनुमा तो हो गई है क्योंकि आपका मैसेज आ गया है और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को जगाने की बात की है जो बहुत ही प्यारी है। गौतम हमारे साथ अररिया बिहार से जुड़े हैं और कहते हैं नीरजा जी हर माता पिता अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और ख्याल रखते हैं। मेरे माता पिता मेरे भाई बहन और पूरे परिवार मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। हम दोनों एक साल से नहीं मिले हैं, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और उनका स्वभाव उनके नाम की तरह ही मीठा है। अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर ई में पढ़ रहा हूँ। और गौतम कितनी प्यारी बात है ना कि आप शिक्षा को भी उतना ही प्यार कर रहे हैं और उसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि असली प्यार यही है कि हम अपने अस्तित्व को ना भूलें और हर हिसाब से हर समय से और समय के हिसाब से चलना आप जानते हैं। अनिल शर्मा जी ने मैसेज लिखा है कि जिसकी कोई फिक्र करने वाला कोई नहीं होता, उसकी फिक्र खुदा हमेशा करते हैं। बिल्कुल वो ऊपर वाला जो परम पिता है सबके पिता है वो तो है ही। धर्म भाटिया जी का रोहतक से मैसेज आया है और कहती हैं डियर आई हैव जस्ट ऑन माय मोबाइल एंड हर्ड योर वॉइस। टॉपिक तो नहीं पता पर बातों में समझ आया तो मेरा कहना भी है कि मेरी बेटी इतनी केयरिंग लवली और वेल एजुकेटेड हैं कि इन्हीं के शेयरिंग से एंड आप जैसे प्यारे प्यारे आरजेज अगर हों तो ऐसा लगता है कि लाइफ स्मूथली चल रही है। और लव यू डियर, लव यू टू मैम। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं और सच में ऐसा लगता है कोई अपना ही है जो वहाँ बैठा है जो साथ दे रहा है हमारा और इस कार्यक्रम को वो और खूबसूरत बना रहा है। कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं गुरुग्राम में ऑफिस से घर लगभग 8 बजे पहुंच जाता हूं लेकिन जब 8 बजे तक घर नहीं पहुंचता तो मेरी पत्नी फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछती हैं और पूछती हैं कितनी देर में आओगे। तो फिर मेरा ख्याल इतना रखती है ना कि उनको चिंता ही होने लगती है। और आजकल जो मेरी ग्रैंड डॉटर हैं पोती हैं वो

4 साल की हैं और वो भी पूछने लगी हैं, दादू घर जल्दी आ जाओ ना, घर कब आओगे, और मुझे खेलना भी है आपके साथ, आपके साथ, और मुझे लगता है मेरी पत्नी के साथ साथ आजकल मेरी ग्रैंड डॉटर भी मेरी चिंता करती है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी भी कोई चिंता करने वाला है, चिंता करने वाला नहीं है, चिंता करने वाले हैं कैलाश जी, सच में बहुत भाग्यशाली हैं आप की। और ये देखिए ना, आपको पीछे से कितने प्यार से याद किया जाता होगा कि वो नन्ही गुड़िया भी आपको याद कर रही है। नमस्कार, मैं मीरापुर गांव भूमा से आर्यन, और मेरी फिक्र मेरी नानी करती हैं। बिल्कुल, ईशा भी कह रही हैं यार मेरी नानी भी बहुत मेरी फिक्र करती हैं। ओके ईशा, डियर मैडम आरजे, शुभ संध्या, मेरी पत्नी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं और किसी भी समय किसी भी समस्या को सॉल्व करके सहायक बन जाती हैं और मेरी फिक्र को दूर कर देती हैं दिल से दिल तक, ऐसा रवि कह रहे हैं जो मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि मुझे अगले गाने के साथ जुड़ जाना चाहिए और आप सबकी नज़र उतार लेनी चाहिए।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा चतुर्वेदी आपके साथ बनी हुई है. कार्यक्रम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और बिल्कुल एक अंतिम गीत आपके नाम ज़रूर करूंगी और आपके संदेशे भी लूंगी. लेकिन उससे पहले बता दूं कि 7 बजे होंगे समाचार. 7:05 पर पूजा आनंद हमारे साथ लेकर आ जाएंगी वेस्टर्न म्यूज़िक और

बस फिर आनंद ही आनंद है। 8 बजे मैं आ जाऊंगी आपके बीच प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर एक बार फिर से, और 9 बजे आपकी याद आती रही कार्यक्रम होगा रेखा चौधरी जी के साथ। और फिलहाल आपके मैसेज आदिल कमर गुन्नौर हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, प्यार मोहब्बत तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी नहीं होता दोस्त। प्यार ना पूछ के होता है ना किसी के चाहने से कम होता है, प्यार तो बस हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सिलसिला तभी मुकम्मल होता है जब दोनों तरफ से होता है, लेकिन वो कहाँ है ना, एक तरफ से हो सकता है। खैर, अगला मैसेज लेती हूँ। नीरजा जी, सुहानी शाम का प्यार भरा आदाब। नाम में र लिखना भूल गए आप, नीरजा नाम की तो अब फिल्म भी आ गई है ना, तो मेरे नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहते हैं, दुनिया यूँ तमाम इंसान है, हम हमारी फिक्र करने वाला, हमारे देर से आने पर चिंता करने वाला, बस एक इंसान था और वो थी मेरी माँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए किसी को फिक्र भी नहीं है। बस बिंदास जीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसा कैसे कह दिया आपने शम्सुल कमर राही जी? वो परमपिता परमेश्वर है जो आपका ख्याल रखते हैं, और इसीलिए शायद आप जुड़ गए हैं हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव भिवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं, मैं खुद ही अपनी केयर करता हूँ। बिल्कुल, ईश्वर ने इतनी सुंदर कृति बनाई है, उसका ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। हाय, मेरा नाम रितिका है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, और मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरे 3 भाई हैं, और मेरी शादी हो गई है, लेकिन अभी भी अगर मुझसे ज़रा सी भी कुछ दिक्कत हो जाए मुझे, तो ये या मैं बीमार पड़ जाऊं तो वो लोग हाजिर हो जाते हैं और मेरे पास आ जाते हैं, और मेरी मम्मी भी शादी के बाद भी ये यही इसी तरह से इनका ध्यान रखती हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे वहाँ भी सब लोग सीख जाएंगे कि ये बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है जिसका ख्याल हम सबको रखना है। बिल्कुल इसी तरह से गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन के बेड़ा गांव से हमारे साथ जुड़े हैं, और कहते हैं, मेरी 3 छोटी बहन और मेरी एक लड़की है जो मेरी बहुत चिंता करती है। अरे, चारों ही लड़कियाँ हैं दोस्त, और चिंता तो करेंगी ही, है ना। माँ का जो स्त्रीत्व है या मातृत्व है वो तो उन सब में ही है। और हमारे पास अगला मैसेज आया है। मैं सोच रही हूँ कि सबके नाम ले लूँ, और मुझे निशा कह रहे हैं जी, मैं नीरजा हूँ और नीरजा नाम की फिल्म भी आ गई है, पता नहीं आपको कैसे लगा। निशा बहुत ही अच्छी प्यारी सी हमारी दोस्त है और सुबह कार्यक्रम कर रही थी। आगे लिखते हैं कि मेरा फिक्र, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी और पुत्र वसुधु और मेरे 3 साल का पोता अंगद है जो उनका ध्यान रखते हैं, और ये कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और चलते चलते ये गीत आपके नाम करती हूँ, और प्रवीण चौहान का मैसेज ले लेती हूँ खरगोन मध्य प्रदेश से। कहते हैं, दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चिंता करते हैं, और उन्हें रोज़ अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। मेरी मम्मी मेरी बहुत फ़िक्र करती हैं, और मेरे पापा, उनको भी मेरी बहुत चिंता रहती है, और हम सबको भी यही कि अगले घंटे आपके लिए कुछ खास लाए हैं तो वहाँ तक आपको ले जाएं, आपकी शाम गुनगुनाए अपने अपनों के साथ। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। आती हूँ 8 बजे फिर से एक बार।

0: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: numbers and information for you. Don't go anywhere. This is the place to be. Because on a gorgeously warm Wednesday evening, where else would you like to be but transported to Sikkim?
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ नीरजा और कार्यक्रम चल रहा है म्यूज़िक मस्ती। और म्यूज़िक आपको समझ आ ही रहा होगा और मस्ती वो तो भर भर के भारतीयों में है ही, है ना। और अगर साथ में अपने हैं तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए शाम। और अगला गाना सोनू निगम और आशीष कौर की आवाज़ में बस आपके लिए। आज तो मैं आपकी नज़र उतारने में लगी हूँ, पता नहीं कैसे लग गई है ना।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं नीरजा के साथ और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, जहां पूरा मौसम हमने रंगों से भर दिया है आपके लिए। और जिंदगी में रंग वो दोस्त आपको ही देखने हैं, भरे तो हुए हैं, छूकर तो देखिए, उनके पास जाकर तो देखिए, एंजॉय कीजिए उस शाम को।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी। और आइए अब एक ऐसे ट्रैक के साथ आपको लिए चलती हूं जहां म्यूजिक भी है और मस्ती भी है और अपनों का साथ बिल्कुल ऐसा है कि जोश से भर जाए। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टिप्पू, फरहान, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाज में ऐसी गल्ला जो आपकी शाम को खुशियों से भर दे।

डांसिंग फॉर्म चेंज होती रहनी चाहिए, एक ग्रुप जाए तो दूसरा ग्रुप आ जाए, और एक बार फास्ट बीट तो एक बार ऐसा तराना जिसमें आपका मन करे कि बॉल डांस कर लिया जाए क्या। बिल्कुल, तो एंजॉय कीजिए ये ट्रैक अपने उनके साथ।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ और प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद के सिलसिले को हम आपसे जोड़ देते हैं। 9 बजे कार्यक्रम होगा आपकी याद आती रही। रेखा चौधरी हमारे साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में और फिर 10:05 पर पूजा आनंद एक बार फिर से हमारे बीच होंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक लेकर और फिर 11:05 पर रंगे महफिल में रेखा एक बार फिर से हमारे साथ बनी रहेंगी। और फिलहाल म्यूजिक मस्ती का ये दौर बिल्कुल दोस्त जारी है। आपके मीठे मीठे एहसास के साथ जुड़ रही हूँ ये तराने और आप उनसे जुड़े रहिएगा।

इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी यूं ही झूमती रहे, गुनगुनाती रहे अपने अपनों के साथ, मैं ले रही हूं आपसे विदा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, ढेर सारी मस्ती आपके बीच लेकर आ रही हूं। फिलहाल सुनिधि चौहान का ये ट्रैक और उसके बाद एक और है आपके लिए। दे रहे हैं ना मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, आपकी दोस्त हाजिर है आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर प्यार के तराने, दिलों के अफसाने और गीतों से भरे पैमाने। जी हाँ, जानती हूँ कि आज आपके सवालों की भी झड़ी लगने वाली है, जिसमें शिकायतों के पानी के साथ घुली होगी आपकी मोहब्बत की मिठास। फिलहाल आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यादों का आपकी याद आती रही और आपकी याद आती रही के पन्ने हम एक एक करके पलटेंगे और जो यादें

आपके सामने आएंगी। सच में दुआ करती हूँ सब सब खुशनुमा हो। तो चलिए इसी बात पर एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। और सच में कब क्या होना है ये क्यों सोचना है, जब जो होना है सो हो ही जाएगा। तो पहले से क्यों क्यों चिंता करें, क्यों ना यादों के खूबसूरत पन्ने पलटकर उन खूबसूरत यादों को याद करें जो दिल में कुछ कुछ हलचल मचाती हैं।

0: जी दोस्तों, एक बात तो है कि इस सॉन्ग को सुनने के बाद कुछ पुरानी और जो फिलहाल इस स्थिति में हैं उनके जो सामने हैं वो कुछ यादें अपने आप ताज़ा हो रही होंगी और लग रहा होगा कि जैसे कल की ही बात है ना। अरे भाई, और मैं अपने सभी लिसनर से ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ठंड रखिए, यानी कि तसल्ली रखिए। आपके मैसेजेस लूँगी, पढ़ूँगी, लेकिन किंतु परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही मैसेज को एक दो तीन चार पांच बार मेरे पास एक मैसेज सेम आया है। तो सौरभ जी, आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सौरभ अनिजा लिखते हैं कि दोस्त वेलकम बैक। तो थैंक यू सो मच सौरभ जी, और आप जानते ही हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के मैसेजेस लूँ, किसी को भी नाराज ना करूँ। हाँ, और अगर ऐसा होता है कि कभी बाई चांस किसी का मैसेज नहीं ले पाई हूँ तो सॉरी बोल ही देती हूँ और मैं अगले प्रोग्राम में उनका मैसेज ले लेती हूँ। दूसरा मैसेज मेरे पास आया है पंकज का, अमरावती महाराष्ट्र से। गुड इवनिंग आरजे रेखा मैडम जी, आपकी याद आती रही। आरजे मैडम जी, मैंने आपका पिछला कार्यक्रम 14 मार्च को 2026 को सुना था। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं आप मैडम जी, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ तक कि आपको देखिए डेट भी याद है, और जबकि मुझे, सच बताऊँ, मुझे डेट बिल्कुल भी याद नहीं थी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, रेखा जी आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, हम आपको ही याद करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, लेकिन आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? आप कितने दिनों के बाद आई हो, क्यों आई हो इतने दिनों के बाद? मुझे ये तो पता था कि आपकी शिकायतें भी शुरू होने वाली हैं, तो इसीलिए पहले ही कह दिया था कि आपकी शिकायतों के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपकी शिकायतें सराखों पर। अच्छा, चलिए अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा सर, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि कब कब आपने परिंदों की तरह ऊंचे नील गगन में उड़ने की कोशिश की थी, या मन में सोचा था कि हम परिंदों की तरह उड़ें, और कब कब बिना चले या बिन दौड़े ही आपकी रफ्तार बढ़ने लगी थी? कब आप खुद ब खुद ये सोचकर हंसने लगे थे कि अरे हम कहाँ हैं, कैसे हैं? या फिर कब आप अकेले होकर भी अकेले नहीं थे? सोचिए सोचिए सोचिए, और अगर सोचने में दिक्कत आए तो कह दीजिएगा, आपकी दोस्त आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

जी दोस्तों, ये देखकर और सुनकर बहुत बहुत बहुत खुशी होती है और मैं ये लफ्ज़ों में इस खुशी को बांधना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप सभी को यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आप बेताब बेचैन रहते हैं मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए, सच में आपके मैसेजेस देखकर पता चल रहा है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। आपकी याद आती रही कार्यक्रम की उन्होंने बहुत तारीफ की है और प्रेजेंटेशन की भी तारीफ की है। ये की है किशन, वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज है, वो लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूँ मैडम जी। और राहुल लिखते हैं ये मैसेज। एक और मेरे पास मैसेज है, वो लिखते हैं, हम दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और सबके नाम लिखे हैं उन्होंने, गीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद आ रहा है और आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज है, चलिए इसको भी ले लेते हैं, कि वो लिखते हैं, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, तो कैसी हैं आप सभी के हाल चाल। देखिए, मैं तो एक हूँ, आप सभी जो आपने लिखा है वो किस लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है मुझे नहीं पता। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल और का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आज कई सालों के बाद आपकी याद आती रही सुन रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये लिखा है गौतम कुमार ने, अररिया बिहार से। तो देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप हमारा प्रोग्राम सुने ना सुने, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। और यही कहूँगी कि डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और सिर्फ हेलो हाय मत लिखकर भेजा करिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा है, ठीक है, छोटे मैसेजेस भेजिए, लेकिन आगे कुछ तो लिखकर भेजा करिए, सिर्फ हाय या हेलो नहीं लिखना है। हाय रेखा जी, आप कैसी हो, नाइस सॉन्ग सेलेक्शन। ये लिखा है शालू ने शादीपुर से। और एक और मेरे पास मैसेज, आपकी याद आती रही, आपका आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज है, गुन्नौर से आदिल कंवर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका लिखते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एक और मैं आपसे बात कहना चाहती थी दोस्तों, वो यही कि जब यादों के पन्ने पलटे जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सी यादें इस तरीके की भी होती हैं कि वो आपको बिल्कुल भी याद करनी अच्छी नहीं लगती। तो भाई, उनको ना तो याद करने की ज़रूरत है और ना ही वो पन्ने पलटकर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो वो दिल की किताब से फाड़ कर फेंक दीजिए वो पन्ने जो आपके दिल को तकलीफ देते हैं। और आपको तकलीफ होगी तो जाहिर सी बात है आपकी ये दोस्त आरसी को भी तकलीफ ज़रूर होगी। तो यही चाहूँगी कि आप हमेशा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और रेनबो इंडिया सुनते रहें। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास, आपके साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों, कहा था ना एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तो चलिए हम भी लौट आए हैं और आप भी लौट आइए हमारे अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी याद आती रही। दोस्तों कभी कभी खामोशियों के मेले भी अच्छे लगने लगते हैं। सवाल सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, जवाब आंखों से ही देना अच्छा लगने लगता है। प्यार मोहब्बत खुशनुमा रंग बहुत अच्छे लगते हैं, पर उन रंगों को, उस मोहब्बत को, प्यार को शब्दों में बांधना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। बस दिल चाहता है महसूस करें, महसूस करें और खुश खुश होते रहें, यही सोच सोच कर कि हमारी बातें लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं आँखों के ज़रिए हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुलाकातों के सिलसिले कम कर दिए जाएं या फिर बंद कर दिए जाएं।
2: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहां मिलती है।

जी हाँ, एक हमारे लिसनर हैं, वो भी बहुत बहुत बहुत बेचैन है, ताकि उनका मैसेज लिया जाए और ऑन एयर किया जाए। अनुभव लिखते हैं, उनको भी हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आ रहा है, और वो लिख रहे हैं कि मैं भी आपको सुन रहा हूँ, और ये मैसेज उन्होंने कई बार लिख डाला है। तो इतनी तकलीफ़ क्यों, मैं तो आपका नंबर लेने ही वाली थी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये आया है गुड्डू धाकड़ का, मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गांव से। प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही शानदार अंदाज से हुआ है। अपनी दुकान पर मैं और मेरे ग्राहक आपका प्रोग्राम बड़े मज़े से सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं तो यही चाहती हूँ कि जब भी आप प्रोग्राम सुने तो दिन भर के जो टेंशन वेशन है वो सब सब भूल जाएं और इसी तरह से इंजॉय करें। गुड इवनिंग रेखा जी, उमेश फ्रॉम सऊदी अरब से लिखते हैं वो, और इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम मैसेज मैं भेज रहा हूँ प्रोग्राम में। नाइस सेलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, आई लाइक इट टू मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मास्टर राधेश्याम जी का भी मैसेज है, रेखा चौधरी जी और आप कैसे हो? तो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ दोस्त, बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में आए हो, लेकिन सॉन्ग सेलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, तो थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आदाब, आप किंतु परंतु आरजे आरसी जी साहिबा जी हैं, तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, वो गुजरे लम्हे याद आते हैं। ये तो एफएम रेनबो आरजे की मेहरबानी है जो कि बेशुमार यादों को ताज़ा कर देते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा लिखते हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं, लोग रूबरू मिलकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम वो हैं जो बगैर देखे हर किसी से प्यार करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। क्या बात कही है, आप शायद शायर हैं। तो चलिए बाकी के मैसेजेस बाद में लिए जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुने आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और हाँ, अब आप हमें सुन सकते हैं ऐप के जरिए भी, कभी भी, कहीं भी। और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, और इस सफर में मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा खुशनुमा सा सॉन्ग हो जाए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेलकम बैक दोस्तों। आप जानते ही हैं कि आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं कोई कोई मैसेज बहुत लंबा है दोस्तों, तो इतना मैसेज लंबा भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम शब्दों में भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो चलिए एक और मेरे पास मैसेज आया है उसको ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, आप बहुत दिनों के बाद आई हो।

मैडम जी, आप कैसी हो? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। और ये लिखा है वीरू बख्शी बोल रहा हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करता हूँ। तो एक और मैसेज ले लेते हैं। ये लिखा है साकिर खान ने, इनको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। विशाल कुमार, राजनगर पालम दिल्ली से। एक और मैसेज मेरे पास, हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम और गीत पसंद आ रहे हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से MS अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार ये प्रोग्राम सुन रहा है। प्रोग्राम अच्छा है, कोलकाता बहुत बारिश हो रहा है और हम वहाँ से सुन रहे हैं। हाय मैम, गुड इवनिंग। प्रीति पल्लू, माफ़ कीजिएगा, प्रीति पॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। एक और मेरे पास मैसेज, चलिए इसको भी ले लेते हैं। वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम हमें पसंद आ रहा है, नाइस प्रोग्राम एंड सॉन्ग्स भी अच्छे लग रहे हैं। ऋतु राज सिंह और सिंह एंड मीरा सिंह, तो सभी हमारा जो ये प्रोग्राम है सुन रहे हैं आसाम से। तो देखिए, दूर दूर से जब आप हमारे प्रोग्राम को सराहते हैं ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कहूँगी कि कभी कभी दिल की माननी चाहिए और दिमाग को एक तरफ रख देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनिए, आप देखिएगा अच्छा लगेगा। माना माना कि साइंस बहुत आगे बढ़ गई है दोस्तों, ज़माना भी टेक्नोलॉजी का है और बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन किंतु परंतु प्यार को मापने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र अभी तक नहीं बन पाया है और शायद शायद कभी बने भी ना। क्योंकि कुछ चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, ना तो उसका इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है और ना ही उसे मापने का कोई तरीका आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई तरीका हो। तो चलिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो एक और अपने सभी लिसनर्स को मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगी, वो ये सॉन्ग है, क्योंकि कभी कभी आंखें बंद करके भी ना कुछ चीज़ें सोचना, समझना या याद करना बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है।

एक मेरे पास मैसेज आया है और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आकाश जी ने अभी तक आपसे बात करना शुरू नहीं किया क्या? और मैंने तो आपका पैचअप करवा दिया था। जी हाँ, मैसेज में मैंने उनको बहुत बोला था कि आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और आज फिर आपका मैसेज आया है कि मैं आकाश जी को ये मैसेज भेजूँ कि वो आपसे बात करें। और क्या कहूँ आपसे, उन्होंने आपने आगे थैंक यू भी लिखा है। तुम्पा का मैसेज है, वो लिखते हैं, रेखा मैम फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग प्रोग्राम, प्लीज़ कन्वे माय मैसेज टू आकाश। हाउ आर यू? ऑलवेज यू थिंकिंग ऑल राउंड मी ओनली यू आकाश। जी आपको वो लव यू भी कह रही हैं, तो भाई बात कर लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आपका चल क्या रहा है, तो भाई एक बार क्लियर कर लीजिए, आमने सामने बैठिए। और हाँ, इस बात का या आप ज़रूर ध्यान रखिए, किसी तीसरे के ज़रिए अपनी बात को पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, आमने सामने बैठकर अपनी बातों को सुलझा लीजिए। रेस्पेक्टेड

रेखा चौधरी साहिबा जी, इस संध्या प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मेरी धर्मपत्नी आशा और पोती सुन रही है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। इकबाल ने लिखा है पीपली, आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है आपने। पीपली से ये मैसेज मेरे पास आया है। नीलम दिल्ली से लिखती हैं, रेखा जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। उन्हें गाने भी पसंद आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी आपने मेरा मैसेज यहाँ पर शामिल किया, थैंक यू सो मच। ये लिखा है ऋतुराज सिंह ने आसाम से, जो मेरे पास मैसेज आया। तो मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ दोस्त कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के मैसेजेस ले सकूँ। और आगे एक और मेरे पास मैसेज आया है, गुड इवनिंग मैम कैसी हैं आप, नाइस सॉन्ग्स। ये लिखा है बिजनौर उत्तर प्रदेश से, धामपुर डिस्ट्रिक्ट से, अफसा खानम ने। तो चलिए आपका मैसेज भी हम ले चुके हैं। एक और मेरे पास मैसेज है लेकिन किंतु परंतु, उन्होंने ना अपना नाम लिखा है और ना ही ये लिखा है कि इस जगह से उन्होंने भेजा है। तो भाई मैं नाराज़ तो नहीं हूँ लेकिन आपका मैसेज नहीं लूँगी क्योंकि आपने सिर्फ हेलो मैम कैसी हैं आप लिखा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वैसे तो बहुत बहुत बहुत सारी बातें होती हैं कहने के लिए, सुनने के लिए। आप कह भी देते हैं अपने दिल की बात और सुन भी लेते हैं सबकी बात। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दिल पर लेनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और क्या कहूँ आपसे, जब ये कहा जाता है कि अल्फाजों को कम इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ आंखों से बात कीजिए और आंखों को पढ़ना सीखिए। अगर आंखों को पढ़ना नहीं आता है तो ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल की किताब के जो पन्ने हैं ना, जब लिखे जाते हैं तो उनमें अल्फाजों को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। और दिल की बात को कैसे, कब, कहाँ, कैसे, किससे कहना है ये कभी कभी समझाना पड़ता है। तो भाई कभी कभी लफ्ज़ों को इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पर जब कोई हमारी बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है और ना ही हमारी आँखों को पढ़ने की कोशिश करता है। तो बस कहना ही पड़ता है कि भाई क्या हमारी जान लेंगे आप।

जी दोस्तों, प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ आप सब से, क्योंकि आप सब भी मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपके मैसेजेस के जरिए पता चल रहा है। और ठीक 11 बजे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब लिए जाएंगे आपके मैसेजेस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि

0: को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
2: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। और खेल में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bobby Wee with More Than I Can Say. If you tuned in live and you're enjoying the music, then hey, this is the Rainbow Classics Love Special only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours, and I'm your love host for today, Pooja Anand. Taking a break? Don't go. Got loads of other tracks on the other side.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर

0: This one was, of course, sung by Boney M. Also, if you remember, "Hey Sunny." Well, that's the same, but this is the version by Cher, and what a way she sang it! I love it. "Yesterday, my life was filled with rain and pain. Sunny, you smiled at me, and then it eased my pain. Now the dark days are gone, and the bright days are here. Feel the music, my dear. Feel the music, 'cause that's where it hurts. It's right in your heart." All these songs making a difference to each and every person who's tuned in. What can I say? This is what life is all about. Good music and loving each and every track. Good evening and welcome to the show, and loads of people messaging in, all enjoying the music. Let's take a break. Stay close. Stay tuned. I'll be back in just a couple of seconds, because this is one place I just can't resist coming back to. This is Akashvani FM Rainbow. 102.6 musically yours.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन

0: डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: We will meet again. We're still together for the next 15 minutes, so don't go anywhere. When I take this short break, I gotta take. Stay close. This is indeed Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. You with me, Pooja Anand, on the Rainbow Classics Love Special.
1: Akashvani, आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन

सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रंग की महफिल में। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम बदला है, ना आप बदले हैं ना मैं बदली हूँ। जी हाँ, आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि इस प्यारे से सफर में जो गजलों और गीतों का प्रोग्राम है, इसमें आप और हम रहेंगे साथ साथ। जी हाँ, फिर हूँ हाजिर आपकी अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है रंग की महफिल। तो चलिए एक खूबसूरत गजल से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सच कहा है, सही कहा है। दिन हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास उससे कभी बात भी होगी, वो प्यार ही इतना प्यारा है, जिंदगी रही तो उससे फिर मुलाकात भी जरूर होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, दूरियाँ कितनी भी बढ़ जाएं, कितने भी दिन महीने साल बीत जाएं, अगर दिल से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, तो दूरियाँ मायने नहीं रखती। न तो वो इश्क प्यार कम होता है और न ही उसे देखने की चाहत कम होती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, कहाँ थी अभी तक आप? बहुत दिनों के बाद आवाज़ सुनाई दी, वरुण इंदौर से। तो वरुण जी, शायद आपने 9 बजे का प्रोग्राम नहीं सुना है, मैं 9 बजे के प्रोग्राम में थी। और रही बात बहुत दिनों की, तो हाँ, जब हम किसी से इतना लगाव रखते हैं ना और उसे सुनना अच्छा लगता है, तो फिर कुछ दिन भी हमें बहुत दिन समझ में आते हैं। तो मैसेज करने के लिए थैंक यू। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी रेखा जी टू हियर यू अगेन, थैंक यू सो मच। और इन्होंने अपना नाम लिखा है एम राजकुमार, तो और ये हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा था ना कितना आसान है, कितना इजी है, आप हमें ऐप के ज़रिए कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं और उसमें हेडफोन वगैरह की भी कोई झंझट नहीं है। कई बार क्या होता था कि हमारे पास हेडफोन नहीं होता था तो हमें कुछ चीज़ें सुनने में दिक्कत आती थी, लेकिन किंतु परंतु अब ऐसा नहीं है। पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, शुभरात्रि रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू योर शो मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल आरजे मैडम जी, आज मेरा जन्मदिन है, दिन हुआ तो रात भी होगी हो। उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा जो मैंने अभी चलाया। मैडम जी, किसी को तेरा इंतज़ार आज भी है, ये गीत भी बहुत प्यारा गीत है और आज मेरा जन्मदिन है। तो भाई, जो आप ये जी जी जी जी लगाते हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और रही बात ये आपके जन्मदिन की, तो आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जी हाँ, आप यूं ही खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही यही दुआ करते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये आया है मुंबई अंधेरी वेस्ट से कनक दीक्षित का, वो भी हमें सुन रहे हैं और उन्हें भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एक और मेरे पास मैसेज है, भाई देखिए, अब तो आप ना मुझे नाराज़ करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप अपना कोई भी मैसेज भेजिए हमें, तब उसमें अपना नाम और जहाँ से भेज रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर भेजें। तो प्लीज़ दोस्तों, नाराज़ मत कीजिए अपनी दोस्त को। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं नाराज़ कभी होती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कभी तो नाराज़ हुआ जाए। तेरे बिना जिंदगी अब लगती अधूरी सी है, तेरे बिना जिंदगी अब लगती अधूरी सी है, साथ मिले जो तेरा हर शाम सिंदूरी बन जाए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और ये प्यारा सा सॉन्ग आप सबके लिए।

अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बहुत दिनों के बाद सुन रही हूँ, लेकिन दोस्त आपने फिर से अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मेरे पास मैसेज आया है। अरे अरे अरे, ये कैसा मैसेज है? देखिए, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो रही है। वो लिखते हैं, कहीं आप हमारी रेखा जी तो नहीं हो? देखिए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किंतु परंतु आप हमें भूलती जा रही हैं, क्या यही आपका प्यार है? और उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी कर दी है। तो भाई देखिए, मैं कभी भी अपने लिसनर्स को भूलती नहीं हूँ। और रही बात आपकी फरमाइश की, तो आप जानते ही हैं कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो फरमाइशें नहीं ली जा सकती। फिर भी कोशिश करती हूँ। अगर आपका ये सॉन्ग हमारी इस प्रोग्राम से तालमेल खाता होगा तो ज़रूर कोशिश करूँगी। एक और मेरे पास मैसेज है। वो उन्होंने लिखा है, पंकज ने, पंकज अमरावती से लिखते हैं, थैंक यू सो मच रेखा मैडम जी, आपने मेरा मैसेज लिया। तो भाई देखिए, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं आप सभी के मैसेजेस लेने की कोशिश करती हूँ। और एक हमारे कोई शायद नए लिसनर हैं, तो दोस्त आपको मैं बता दूँ, शायद आप नए हैं और आपने बाद में लिखा है, हाय रेखा, गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ थी आप, मिस्ड यू अ लॉट। जयंत लिखते हैं पटना से। तो जयंत जी, शायद आपने ही अभी कुछ भेजने की कोशिश की थी, मेरा मतलब है कि वीडियो भेजने की कोशिश की थी, जो यहाँ पर ओपन नहीं हो सकती है। एक सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस लिए जा सकते हैं। बाकी आप कुछ भेजने की कोशिश करें तो हाँ, पता लगता है कि आप वीडियो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु उसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, स्माइली भेजिए, अपने मैसेजेस भेजिए और प्यारे प्यारे गीतों को एंजॉय कीजिए, गजलों को एंजॉय कीजिए। अल्फाजों को समेटे हुए रखना, अल्फाजों को समेटे हुए रखना, लफ्जों में बात बिल्कुल भी ना करना, जो कहना हो कह देना अपनी आंखों के जरिए, जो कहना हो कह देना अपनी आंखों के जरिए, तुम अपनी हर बात को हमने ये भाषा भी सीख ली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।

कितना अच्छा लगता है ना जब हम सब कुछ भूलकर अपने सॉन्ग सुनते हैं या गजलें सुनते हैं या ये कह लीजिए कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ करते हैं, चाहे वो गीत संगीत हो या डांस हो या कुछ भी, क्योंकि यही वक्त तो होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा होता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है आपका प्रोग्राम बहुत

जी दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, जी हाँ जानता हूँ कि ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। पहले उन्होंने ये लाइन लिख दी है, वरुण जी, और आगे लिख रहे हैं अपनी फरमाइश। तो चलिए वरुण जी, कोशिश कोशिश रहेगी, लेकिन किंतु परंतु वादा नहीं करूंगी, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं और वादे टूटकर बिखर जाया करते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने धन्यवाद लिखा है, लेकिन किंतु परंतु मुझे समझ में बात ये नहीं आ रही है कि आप अपना नाम लिखकर क्यों नहीं भेज रहे हैं। उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिखकर भेज रहे हैं। और आगे उन्होंने थैंक यू लिख दिया है। कमाल है भाई, आप तो कहाँ से लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, कुछ तो बताइए। एक और मेरे पास मैसेज आया है अब क्या करूं, मैं पहले हंस लेती हूं। फिलहाल के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूं, अपनी थोड़ी सी हंसी को रोकने की कोशिश करती हूं और फिर ये मैसेज पढ़ लेती हूं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, याद दिला दूं आपको कि प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और आप हमें सुन सकते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और NCR में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक दोस्तों, जानते हूँ आपके मैसेजेस के ज़रिए पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है और बहुत से दिल जोरों से धड़कने लगे होंगे, कुछ नींदें कोसों दूर भाग चुकी होंगी। पर दोस्तों, कभी कभी दिलों को जोरों से धड़क लेना चाहिए और धड़कने देना भी चाहिए। और अगर नींद उड़ गई है तो उसमें फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी नींदें उड़ना भी अच्छी बात होती है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को सुनने पर ये धड़कनें और भी तेज होंगी। ज़रा सुनिएगा अपनी धड़कनों को कानों के ज़रिए, और ये गीत वाकई बहुत ही खूबसूरत है, जो कानों के ज़रिए उतरकर दिल में मिश्री सी घोलेगा और आपको कुछ कहने पर ज़रूर ज़रूर मजबूर करेगा।

जी हाँ दोस्तों, जानती हूँ कि अब दिल थोड़ा और ज़ोरों से धड़कने लगा होगा और जो अरमान सोए थे वो जाग चुके होंगे और दिल की रफ्तार और तेज हो चुकी होगी। जी हाँ, दिल की गाड़ी में प्यार के पहिए कब कहाँ कैसे लग जाएं किसी को कुछ नहीं पता और कहाँ फिट हो जाएं ये भी खुद हम नहीं जानते। और अरमान अगर आपके जाग चुके हैं तो ईंधन खुद ब खुद मोहब्बत का मिल ही जाता है और ये गाड़ी फिर चलती नहीं जनाब, ये तो दौड़ती है बहुत ज़ोरों से, पूरी रफ्तार से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक दोस्तों, आपके ढेर सारे मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले ये मैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी की नाराज़गी को दूर करना ना बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई ये मैसेज मेरे पास आया है जफ़र अर्तुक का, फरहान अंजुम एंड अरीबा सलमान फ्रॉम पूर्णा बिहार से। तो मेरा दोस्त मुझसे, फरहान मुझसे नाराज़ है, कृपया उसको बोल दीजिए कि मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ और उसको मनाने में मेरी मदद कीजिए। तो भाई अगर आप सुन रहे हैं, आपके दोस्त सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई आपस में ये सब चलता रहता है दोस्तों, और जब दोस्ती अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार प्यार से चलती रहे तो फिर मज़ा थोड़ा सा किरकिरा लगने लगता है। तो दोस्ती में थोड़ी सी नोक झोंक होनी बेहद ज़रूरी होती है, एक दूसरे को मनाना भी ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन अगर रूठे हैं तो मान भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा रूठे ही रहें, क्योंकि वक्त निकलने के बाद ना दोस्तों एक दूसरे की बहुत बहुत बहुत याद आती है, और फिर आप यही कहेंगे कि दिमाग अगर प्रिंटर होता तो ख्यालों के प्रिंट आउट निकाल लेते हम, दिमाग अगर प्रिंटर होता तो ख्यालों के प्रिंट आउट निकाल लेते हम, मन अगर ब्लूटूथ होता तो भावनाओं को ट्रांसफर कर देते हम, धड़कन अगर पेन ड्राइव होती तो जिंदगी का बैकअप ले लेते हम, जिंदगी अगर कंप्यूटर होती तो बीते हुए खूबसूरत पलों को रीस्टार्ट कर लेते हम। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि नाराज़गी इतनी लंबी रखें कि दूसरा भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि दोस्ती रखें या ना रखें। राजेश शर्मा जी का मेरे पास मैसेज आया, वो लिखते हैं कि इतने लंबे समय तक कहाँ गायब हो जाती हो, हवाई जहाज लेकर कहीं उड़ जाती हो क्या? बिल्कुल नहीं जनाब, मैं तो यहीं रहती हूँ, आपके आसपास रहती हूँ और आप का इंतज़ार करती हूँ कि कब आपके मैसेजेस आएंगे और मैं कब स्टूडियो में आऊँगी और कब मैं अपना प्रोग्राम करूँगी आपसे, कब मैसेजेस के ज़रिए मुलाकात होगी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश कर डाली है और वो जानते हैं कि ये फरमाइश करना, जी हाँ, बेकार है, क्योंकि टिक टिक करती घड़ी काफ़ी कुछ कह रही है। जिस तरह से मुट्ठी में रेत को हम नहीं पकड़ सकते, उसी तरह टिक टिक करती घड़ी जो है वो हमें बहुत कुछ कह रही है, और टिक टिक करती घड़ी जब कुछ कहती है तो मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, और समझना तो बहुत ज़रूरी है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सबकी नज़र।

0: जी हाँ, एक हमारे लिसनर हैं, वो लिखते हैं कि काश काश ऐसा होता कि जब भी मैं एफएम रेनबो खोलूं और तुम्हारी आवाज सुनाई दे। आप क्या चाहते हैं, बच्ची की जान लेंगे क्या? 24 घंटे कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, पर हाँ कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आने की, और आपके मेल्स हमारे रेनबो तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। और मुझे समझ में आता है कि आप, जी हाँ, कितना कितना बेताबी से इंतज़ार करते हैं मेरे प्रोग्राम का। एक और मेरे पास मैसेज आया है, अनीता मुक्ति सिमरन अनीता मुखी सुदर्शन मुखी सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से, उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए, मैं चाहती थी कि आपका ये मैसेज मैं ले लूं, तो चलते चलते बस यही कहूंगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये एफएम रेनबो सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात जरूर होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: और चलते चलते ये खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान

जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 12:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आनंद लीजिए इन प्यारे प्यारे गीतों का।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

लंकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

बाबा, ऑटो पिला ली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा,
2: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

सजदा है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: क्या है बबल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और

सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे

विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है आधी रात के 3:06 और जैसे कि आप सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और अब मिडनाइट मेलोडीज शो में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज में इस गाने के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज। आधी रात के 3:36 हुए हैं और ऐसे ही नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक का मजा लेते रहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है मिडनाइट मेलोडीज। आधी रात के 3:56 हुए हैं और अब इस शो का ये लास्ट गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के

0: राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को कल 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक आप सुन ही रहे हैं। और अब शुरू होता है सारेगामा, जिसमें अब आप सुनेंगे बिना रुके गाने। और शुरुआत करते हैं यादें मूवी से हरिहरन की आवाज में इस गाने के साथ। तो बस गाने सुनते रहिए और झूमते रहिए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज में आपने रुस्तम मूवी का एक गाना सुना। यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:54 हुए हैं। सारे गाना शो सुन रहे हैं आप और इस शो का ये आखिरी गाना, और फिर सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों के व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब,

सुबह के 5:06 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अभी तक आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक, लेकिन अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में इस भजन के साथ।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज़ ऑन AIRS।